0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सर्वहित के लिए, ताकि सभी मानव जन का कल्याण हो सके, उनके दुखों का विनाश हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसी भावना के साथ में हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं और आज भी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनवाया था। आपने कुमार कार्तिकेय के बारे में उनका वर्णन किया था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति आवश्यक थी और सभी देवताओं के प्रयास से भगवान शिव और पार्वती के द्वारा कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो आपने बताया कि सभी देवता कुमार की स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद किया। तब कार्तिकेय ने कहा कि ये सभी पर्वत आप सभी ऋषियों को, सभी देवताओं को वरदान देंगे, क्योंकि ये सब मेरे माता में हैं, यानी कि मेरे नाना हैं। हम सबको कार्तिकेय की तरह ही आत्मबलि बनना चाहिए। अब फिर कैलाश, सब कैलाश चले गए थे। अब कैलाश में जाके सबने, सारे देवताओं ने भगवान शिव का और कार्तिकेय की उनकी स्तुति की और भगवान शिव ने अपने बेटे का माथा चूमा और स्वागत किया। अब इसके बाद में माँ पार्वती और शिव जी ने भगवान कार्तिकेय का, कुमार कार्तिकेय का स्वागत किया। वो तो सब देवता जो हैं सबको प्रणाम करके, शिव, पार्वती और कार्तिकेय को प्रणाम करके चले गए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय का स्वागत किया और आगे कैसे उनके लिए क्या कहा?
1: हाँ मंजू जी, शिव परिवार की बात चल रही है तो मन आनंदित होता ही है, खुश होता ही है
0: जी।
1: क्योंकि शिव क्या है, शिव सर्जक है, न केवल इस विश्व के अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के। कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में जब भी सृष्टि की पुनर्रचना होती है तो उसमें शिव और शक्ति ही प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा पुनर्रचना होती है। तो अभी जो हम लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं, उस शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 13वें अध्याय की ओर हम लोग हैं, जिसमें कि कुमार की विशेषता बताई गई है। कुमार कौन है? कार्तिकेय, जो शिव पुत्र है और पार्वती की गोद में भी विराजते हैं। तो अब देखिए कि उनके विषय में और क्या कहा जा रहा है। कुमार का जन्म हुआ था तारकासुर के वध के लिए। कहते हैं त्रयोदश अध्याय में कि तारकारे रीति श्रुत्वा वृतम अद्भुतम उत्तमम नारद सुप्रसन्नो अथ पप्रच्छ प्रीति तो विधिम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि कार्तिकेय का वर्णन किया गया कि कार्तिकेय ऐसे हैं, वैसे हैं, अद्भुत तो होंगे ही, क्योंकि अद्भुत परमात्मा, अद्भुत परमेश्वरी के वो पुत्र हैं, तो अद्भुतता तो उनके साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। और जब जन्म हो गया उसके बाद भी अद्भुत कि किस किस तरह से वो जो है कार्तिकेय के रूप में परिणत हुए। वे सन्मुख वाले थे, छह मुख वाले थे और छह कृतिकाएं जो है उनकी माँ थी। तो उनके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं नारद, क्योंकि नारद जी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वो लोक लोकांतर भ्रमण कर कर के भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज के युग में, कलयुग में, एक भक्ति ही ऐसी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भक्ति करें तो कलयुग समाप्त हो सकता है हमारे मन का। हमारे मन में अगर सतयुग आ जाए तो हम यहीं इसी धरा पर स्वर्ग का एहसास करने लगेंगे, क्योंकि मन की धरा पर स्वर्ग का अवतरण होना चाहिए। धरती पर स्वर्ग का अवतरण वो तो अलग बात है, वो सामूहिक रूप से होता है। वो माता है जो अद्भुत कार्य करके यह कार्य करती हैं स्वर्ग के अवतरण का। लेकिन हम और आप अपने जीवन में, अपने मन के धरातल पर अगर स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिव पुराण हमें जो समझा रहा है वह अपने मन के धरातल पर स्वर्ग के अवतरण की बात करता है। अपने मन के धरातल पर हम कैलाश को ला सकते हैं, अपने मन के धरातल पर हम वैकुंठ को ला सकते हैं।
0: एक मिनट, मैं पूछना चाहूंगी बीच में, माफ कीजिएगा, कि अब ये मन के धरातल पर हम कैसे मानसरोवर ला सकते हैं, कैसे कैलाश को ला सकते हैं, ये हमारे श्रोताओं को इसका जरूर थोड़ा खुल के बताइए व्याख्या।
1: अभी देखिए, अभी नारद जी की चर्चा चल रही है। नारद जी सूत जी से पूछते हैं कि आप कार्तिकेय के विषय में और भी बताइए। तो नारद जी क्या है, भक्त हृदय, उनके हृदय में वैकुंठ का वास है। कैसे, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने हृदय में उतार लिया तो वैकुंठ में कौन रहते हैं,
0: भगवान विष्णु,
1: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो उनके हृदय में वैकुंठ का वास हो गया, क्योंकि हृदय में वे भगवान विष्णु और लक्ष्मी को रखते हैं। हनुमान के हृदय में राम बसे हुए हैं और माता जानकी बसी हुई है, तो साकेत उनके हृदय में बसा हुआ है। कैलाश को हम उतारना चाहते हैं तो शिव पार्वती को हम भज ले, और उन वो हमारे हृदय में अगर बस जाते हैं तो क्या होगा कि कैलाश बस जाएगा, कर्पूर गौरम हम सब जानते हैं। तो हृदय रूपी सिंहासन पर हम जिस भी भगवान को बैठा रहे हैं वो भगवान अपने धाम के साथ हमारे यहाँ विराजते हैं। यही कैलाश है, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग का अवतरण है। क्योंकि तो नारद जी जो है वो अपनी जिज्ञासा बस पूछना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप उनके विषय में, कार्तिकेय के विषय में कुछ और बताएं। अब देखते हैं आगे क्या है। नारद उवाच, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सद्वृत्तम अमृताद अपि चोत्तमम्, अधुना श्रोतुम इच्छामि गणेशम वृत्तम उत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से पूछा, हे देव देव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना, अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। अब उनकी इच्छा जो है गणेश जी के दिव्य जन्म के विषय में जानने की है। सूत जी ने कहा, नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके कहा। अब क्या कहा ब्रह्मा जी ने, कल्प भेदात गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात सनिदृष्टम श्रश्चिन्नम संचितम गाजमाननम इदानिम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर सूति कृण मुने साही सर्वाधिप संभुर निर्गुणा सगुनो अपि ही। अब वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं, क्योंकि हर कल्प में गणेश जी आते हैं, हर कल्प में कार्तिकेय आते हैं, हर कल्प में राम आते हैं, हर कल्प में कृष्ण आते हैं, तो हर कल्प में हर कोई आता है। अब कैसे आते हैं, क्योंकि सतयुग है तो सतयुग में शिव पार्वती आते हैं, त्रेता युग है तो राम और सीता आते हैं, द्वापर युग है तो राधा और कृष्ण आते हैं, कलयुग में कल्कि अवतार की चर्चा होती है और कलयुग में बहुत तरह के अवतार भी आते हैं क्योंकि उनके द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, जैसे बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा आए, हजरत आए, तो इनके द्वारा इनके द्वारा क्या हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। लेकिन युग परिवर्तन के समय भगवान जो है युगल रूप में आते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, युग परिवर्तन और धर्म चक्र प्रवर्तन में क्या अंतर है विशेष। तो अब यहाँ पर कहते हैं वो गणेश जी के विषय में कि गणेश जी क्या है, इस समय श्वेत कल्प से में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उनका सिर काटा था। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए, वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी है। हे मुनिवर, उन्हीं की लीला से इस संपूर्ण संसार के सृष्टि पालन तथा विनाश होता है। शिव की ही लीला है जो विष्णु भगवान को हम पालक रूप में देखते हैं और ब्रह्मा जी को है सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। ये सब शिव से ही निकले हैं, क्योंकि शुरुआत में ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है कि अग्नि स्फुरलिंग दोनों के बीच में प्रकट हुआ। कौन दोनों के बीच में? ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में। जब दोनों विवाद करने लगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से निकले थे और वहीं विराजमान हो गए थे कमल के फूल पर, तो वो बोलते थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ। विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है तो मैं बड़ा हूँ। तो बीच में अग्नि स्फुरलिंग आ गया और उसने कहा कि ठीक है, आप हम इसे नाप लीजिए, जो भी मेरे ओर छोर को देख लेगा, आदि और अंत को देख लेगा,
2: वही बड़ा है।
1: तो विष्णु भगवान गए नीचे, ब्रह्मा जी गए ऊपर। ऊपर चलते गए, कहीं और छोर पता ही नहीं चले। विष्णु भगवान नीचे गए, जाते गए, कहीं पता ही नहीं चले। लेकिन विष्णु भगवान सत्यवादी थे और ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। केतकी के पुष्प को प्रकट किया और केतकी का के पुष्प को कह दिए कि तुम जो है झूठ बोल देना कि हाँ हम देख लिए। तो भगवान शिव के पास जब दोनों आए, उस अग्नि स्फुरलिंग का स्वरूप था, शिव का स्वरूप था, तो बोले कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मैं बता सकता हूँ, आप बताइए कि किसने देखा मेरा आदि, किसने देखा मेरा अंत। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं तो नहीं देख पाया आपका अंत, और ब्रह्मा जी बोल दिए कि मैंने देख लिया। तो और इसका इसकी साक्षी जो है केतकी है, केतकी को सामने खड़ा किया गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी ने देखा है। उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान शिव के हृदय हैं, शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णुश्च हृदयम् शिव, कि शिव विष्णु के हृदय हैं और विष्णु शिव के हृदय हैं, तो दोनों एक दूसरे के से लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी निकले शिव से और विष्णु भगवान भी निकले शिव से, और सबको काम बांट दिया गया। शिव क्या है? आदि पुरुष। और शक्ति क्या है? आदि नारी कह सकती हैं और अर्ध नारी स्वरूप दोनों का है। तो इसलिए हमें शिव को समझना पड़ेगा। शिव के रुद्र अवतार अलग है, महाकाल अवतार अलग है, हर रूप में भगवान शिव हैं। लेकिन परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव है, और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जो तीन धाराएं निकली, सत, रज और तम, सतोगुण जो है हमारा वो ब्रह्मा जी और सरस्वती है, रजोगुण जो है वो विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी है, और तमोगुण जो है वो महाकाल और महाकाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे तभी हम शिव को समझ पाएंगे। तो इस शिव पुराण में उन शिव की चर्चा की जा रही है जिन्होंने भिन्न भिन्न रूप धारण किए, लेकिन पर ब्रह्म परमेश्वर जो है उन शिव की चर्चा की जा रही है शिव पुराण में। तो कहते हैं कि श्वेत कल्प में जो है भगवान गणेश का आविर्भाव हुआ और ये सृष्टि पालन और विनाश जो है ये शिव के द्वारा, शिव लीला के द्वारा होता है। शेष आदर से सुनो। अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि उद्वाहिते शिवे चात्र कैलासम च गते सती कियता चैव कालेन जातो गणपतेर भवः एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा अभवत् रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्य आज्ञा परायणा ते सर्वे अपि अस्मदीयाश्च नंदी भृंगी पुरः सराः। कहते हैं कि शिवजी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा पर तत्पर रहते हैं, वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं, असंख्य प्रमथ गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। सब शिवजी की आज्ञा तो मान लेते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन शिव के पीछे पीछे ये ज्यादा रहते हैं, ऐसा जया और विजया ने पार्वती से कहा। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता। और हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। सखियां तो होती ही हैं कि हमेशा अपनी सखी के विषय में सोचना कि मेरी सखी किसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी, और कुछ चापलूसी भी कर लेती हैं, तो बोलती हैं कि ये नंदी प्रमथगण जितने भी हैं सब शिव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक को तुम अपने लिए केवल रख लो जो तुम्हारी आज्ञा में तत्पर हो। तो यह बात जो है, अब देखिए पार्वती किस रूप में इसे लेती है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा करने के लिए वे प्रयत्न करने लगी। पार्वती जी आगे कहते हैं कि उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई, उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की उस बात को उन्होंने सुखद समझा। तो एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी आदि को तो डांट करके शिव जी अंदर आ गए और इनको लज्जा हुई पार्वती मैया को। फिर उन्होंने अपनी सखियों की बात को सोचा कि मेरा कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मेरा हो, ठीक है, क्योंकि नंदी आदि तो शिव जी की आज्ञा मानते ही है, मेरी भी मानते हैं, लेकिन अपना कहने लायक एकदम मेरा ही हो वैसा नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार कुछ समय बीतने पर परामाया परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा। क्या सोचा पार्वती जी ने? कहते हैं, मदीय सेवक कश्चित अद्भुत भवे छुप तरह कृति मद आज्ञया परम नान्य रेखा मात्रम चलेधि विचारयति च सा देवी वपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाढ़्यम महाबल पराक्रमम। अब देखिए पार्वती जी, उन्होंने सोचा पार्वती ने अपने मन में कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित शरीर के सभी अवयवों से सुंदर बड़े आकार का सब प्रकार से शोभा संपन्न महान बली तथा पराक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। माता पार्वती शक्ति संपन्ना तो है ही और उन्होंने जब पुत्र बनाया तो बहुत सारे आशीर्वाद भी उन्हें दिए। कहते हैं कि मत पुत्र त्वम मदियो असि नान्य कश्चित इहास्ति मे एव मुक्ता सा पुरुषो नमस्कृत्य शिवाम जगो। कहते हैं सूत जी कि पार्वती मैया ने उस पुरुष से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। अब गणेश जी ने कहा, वो पुरुष कौन थे? गणेश। उन्होंने कहा, किम कार्यम विद्यते ते अद्य करवानी तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। अब गणेश जी पूछते हैं कि आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं? ऐसा उनके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र पार्वती पुत्र से कहा। अब क्या कहा शिवा ने? हे तात सुनो मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्र त्वम मदियो असि नान्यथा कश्चिद अस्ति में। कि हे पुत्र मेरी बात को सुनो, आज तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश ना करे, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इत्युक्त्वा च तदौ तस्मै यस्तिम चाति दृढ़ं मुने तदीयं रूपम आलोक्यम सुंदरम हर्षम आगता मुखम आचुंब्य सुप्रीत्या आलिंग्य
2: तम कृपया सुतम स्वद्वारी स्थापयामास यस्ति पाणिम गणाधिपम। क्या करती हैं कि हे मुनि, इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गईं। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए हुए था और अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। अब देखिए, सारी लीलाएं माँ है, आदिशक्ति है, तो लीलाएं तो उनके साथ जुड़ी ही हुई है। कौतिक उनके साथ जुड़ा हुआ है, अद्भुतता उनके साथ जुड़ी हुई है, वे अद्वितीय चरित्र वाली है। अब माँ को क्या आवश्यकता थी गणेश जी का को जन्म देने की और यह कहने की केवल तुम ही मेरे हो, जबकि माँ के रोम रोम में भगवान शिव बसे हुए हैं। लेकिन माँ माँ होती, शिव एकांत में भी समाधिस्थ रहते हैं और माँ को चाहिए कोई साथ में रहने वाला। माँ है तो संतान तो चाहिए ही चाहिए। तो कार्तिकेय जो है वो तारकासुर के वध में रह गए और उसके बाद फिर वो भी ध्यान समाधि में चले गए, तो माँ के पास कुछ था नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हम बनाए जो हमेशा मेरे पीछे पीछे करे, मुझे माँ माँ कह करके पुकारे, मेरे साथ खेले। हर कोई चाहता है, क्योंकि शिव समाधिस्थ हो जाते थे तो माँ अकेली पर जाती थी। तो उन्होंने मैल से उत्पन्न किया गणेश जी को और गणेश जी ने जब अपना कार्य पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे द्वारपाल हो और हमेशा के लिए तुम मेरे ही हो, तुम में मैं सब कुछ स्वयं को ही देखती हूँ, तुम मेरे हो। तो अब आगे क्या होता है कि पुत्र को तो रख दिया उन्होंने दरवाजे पर और क्या दे दिया, एक डंडा, बड़ा सा डंडा दे दिया और अपनी शक्ति से संपन्न भी कर दिया। छोटा बालक सारी शक्तियों से संपन्न तो बालक है, अहंकार तो आएगा ही, क्योंकि बालक में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो बाल सुलभ चेष्टा उसके अंदर आ जाती है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है कि इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिवजी दरवाजे पर आ गए। ये तो होना ही था कि भगवान शिव क्या है, पति हैं माता के। अब माता के पति हैं तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन आ गए, भगवान शिव। उवाच च शिवेशम तम अभिज्ञाय गणाधिप मातुराज्ञायां विना देव गम्यताम न त्वया अधुना मज्जनार्थम स्थिता माता क्वप यासितो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकाम तस्य रोधनाय तदाग्रहित। कहते हैं कि गणेश जी जो वहाँ खड़े थे, शिव जी को तो देखे लेकिन वो पहचानते नहीं थे शिव जी कौन है। तो गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए, मेरी माता भीतर स्नान कर रही है, कहाँ जा रहे हो, इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी ने कहा, अब शिव जी उसे देख करके क्या कहते हैं, वो कहते हैं, तम दृष्टुआ तू शिव प्राह कम निषेधसी मूर्धि माम न जानासी अस्य अद्भुदे शिवो अहम इति नान्यथा ताडितस्तेन यष्टया ही गणेशेन महेश्वर प्रत्युवाच सतम पुत्रम बहुलीलश्च कोपितः। कहते हैं कि वो जब लाठी उठा लिए तब शिव जी कहते हैं, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो, हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो, सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिव जी को मारा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, अब क्या कहा शिव जी ने कि तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते हो, मैं गिरजापति शिव हूँ। क्या कहते हैं कि मैं गिरजा का पति हूँ, शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को, हे विप्र, फिर उसने डंडे से मारा। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है, यह क्या करता है, हे गणों, तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी क्रुद्ध होकर घर के बाहर बैठ गए। अब देखिए, गणेश जी चूंकि माता ने उन्हें खड़ा किया था, वो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि शिव कौन है। लेकिन ये रूपक बहुत ही सुंदर है, अगर हम इस रूपक को समझ पाए तो। क्योंकि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से जब हम निकलते हैं, हर मनुष्य माता के गर्भ में आता है, तो जन्म के साथ ही माता पिता का सब कुछ हमें मिल जाता है। अगर हम गरीब घर में जन्म लिए हैं तो गरीबी हमें मिल जाती है, अगर अमीर घर में लिए हैं जन्म तो अमीरी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके घर में जन्म लेते के साथ ही बच्चा जो है अमीर हो जाता है।
0: लीना जी, प्रसंग तो इतना सुंदर चल रहा है कि रोकने का मन नहीं होता है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब यहीं हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे। अभी लीना जी को हम धन्यवाद देते हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, मुझे भी इजाज़त दीजिए क्योंकि इस एपिसोड को समाप्त करने का समय हो चला है। अगले एपिसोड में हम यहीं मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर मिलते हैं। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांगा और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूँ, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ इस प्रोग्राम में।
2: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस अध्यात्म की बातें करते हैं तो और ही वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
1: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
1: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी। इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है जिनको धिकारा जाता है। यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
1: जी,
2: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम, जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं या फिर राक्षस हैं, उन्होंने उनमें बताया। जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं,
4: कोढ़िन
2: को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है, यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारे कोई कमी है तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये है कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के इस श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने।
4: जी, और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है संसार से।
5: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं, जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप, यहाँ दो चीजों की चर्चा हो रही है, तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका आईक्यू लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहाँ इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है। यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है। और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए

0: ये वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है, पर मुंह मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है, पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ, तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है, तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति, वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है। यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है, वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है, वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है।
1: जी, यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी। जी, बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
2: जैसा कि चार राम की बात कही गई है, तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाया कि समझूत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि अखत अनादि सुमा सुसा मुझे साधी।

0: समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
1: हाँ जी,
0: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई, वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर दें किसी को डिनाई करके। तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं,
1: रूप में,
0: रूप में, नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं, जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में, तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
1: उजाले,
0: लेकिन जो उजाला है, जो अंधकार को दूर करने वाला है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
1: जी, हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
2: जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
1: बुलाना कैसे।
2: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए। और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी
2: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महाऋषि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है, यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है, और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़ ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंड सेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मनस्पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ, जो हम करते हैं नॉर्मली, हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस्पटल है, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है
1: बिल्कुल।
2: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है, तो इसके आगे जाना उनके अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया, वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे, वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस और भीमसेन गए थे उस और आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दब कर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूढ़ राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से, अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे, वहाँ उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे, उनका शरीर अत्यंत कृष्ट था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पनव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है, आप लोगों को यही बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नाम कर केवल परम सिद्ध और देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यही निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल से में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख कर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
2: जी।
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही उसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, इसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल, मैथुन, मित्रवर्ती, जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं, ये जो तत्वदर्शी विद्वान है वैशील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वैशील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वह शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकटता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बात ही सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिर्य योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिर्य योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही माया अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। दृष्टि बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर्प ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब श्वेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर मैंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह गुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर्फ होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त मुनि से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, इससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, इस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया। दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना मनु 7.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबादवासियों, बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि डेली आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे। जी हाँ, यहाँ पर आपके साथ रहती हूँ, अपने प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आती हूँ और हम करते हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास है बताने वाली हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ना अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, क्योंकि देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप जल्दी जल्दी से उठ जाइए और अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए और बहुत सारी जानकारी जो मैं लेकर के आ गई हूँ बस उसे सुनिए और गाने एंजॉय कीजिए। जी हाँ, तो चलिए अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का टाइम जो है ये हो चला है और सेगमेंट है दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। ये जो सेगमेंट है उसमें लेकर के आती हूँ बातें हेल्थ और फिटनेस की। देखिए आज बहुत सारी आपकी बात जो है, देखिए आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई। और देखिए हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होनी चाहिए, एक अच्छी नींद होनी चाहिए, उसमें एक अच्छी डाइट में खाना होना चाहिए और साथ ही साथ देखिए आपकी एनर्जी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है अगर नींद पूरी नहीं होती है ना, जो पहला ही है, जो नींद पूरी नहीं होती है तो देखिए आप ना ही खाने में मन कर पाता है और ना ही आपकी बॉडी में रहती है एनर्जी। अब आजकल लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और इस वजह से लोग कई सारी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारी तो जैसे आम हो गई है। अब इसका असर जो है हमारी मेंटल हेल्थ पर दिखने को मिलता है। इस वजह से लोगों में नींद ना आने की समस्या जो है वो भी दिखने को मिलती है। अब बात आ जाती है ऐसे में लोग गलत तरीका जो है अपना लेते हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं वो अलग अलग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, स्लीपिंग पिल्स का जो है सहारा लेते हैं या फिर ड्रिंक तक करने लगते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आप भी नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों में से हैं जो परेशान हो रहे हैं या फिर उन लोगों को जानते हैं जो परेशान हैं, तो आज कुछ आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको जो है ख़ास 7 से 8 घंटे की नींद के लिए आपको ज़रूर करना ही करना है। और वो क्या है, किस तरह से आप इस अनिद्रा की समस्या से परेशान अगर हैं आप तो किस तरह से आप निजात पा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना और 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मैं, मंडे टू संडे। जी हाँ, अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। अब बात एक बहुत ही खास कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही थी जिसे नींद नहीं आती वो क्या करे। तो देखिए, एक बहुत ही खास एक्सरसाइज है जो आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, एक बहुत ही खास तरीका जो है 4-7-8 जो है, ये एक तरीका है। इससे आप जो है अपनी जो नींद है ना उसे आप जो है वापस ला सकते हैं। अब 4-7-8 क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ। 4-7-8 एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे जो है भाई काफ़ी ज़्यादा कारगर माना गया है। ये सांस की गति को कंट्रोल करके शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और इसमें जो है 3 मेन स्टेप होते हैं, यानी कि 4 सेकंड तक सांस लेना, इसके बाद 7 सेकंड तक सांस रोकना और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ना। और इसे जो है कम से कम 4 बार दोहराना होता है, जिससे आपको जो है 1 राउंड इसका मिल जाता है। तो इस तरीके से 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। अब ये 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी कारगर है। अब कैसे, क्योंकि देखिए ये जो काम है, टेक्निक जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जब हम 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हमारी सांस पर होता है, जिससे दिमाग में चल रही जो काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। ये मन को शांत करता है और इसके अलावा ये हार्ट रेट को धीमा करता है, तनाव को और चिंता को ये दूर करता है। और एक बेहतरीन ये एक्सरसाइज है, इससे आपको नींद ना आने की समस्या जो है ना वो दूर हो जाएगी। और इसको करने से आपका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि 4-7-8 जो टेक्निक है ये आप ज़रूर अपनाइए और इससे मिनटों में नींद जो है वो आने लगती है। बहुत ही कारगर ये तरीका है। अब ये एक्सरसाइज आपको जो है वो किस तरह से करनी है, कब करनी है, कितनी बार करनी है और कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है, सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारे 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रश 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। जी हां, बातें हमारी चल रही हैं कि जब नींद नहीं आती है ना, तो किस तरीके से वापस लाया जाए। तो मैंने आपको बताया है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। ये एक्सरसाइज जो है किस तरह से आपको करनी है, सबसे पहले बिस्तर पर आपको लेट जाना है या फिर किसी शांत जगह पर आपको बैठ जाना है। जब आप अपनी आंखों को बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ें, तो देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपको मुंह बंद करके 4 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस लेनी है। याद रहे सिर्फ 4 सेकंड। इसके बाद आपको क्या करना है, मुंह बंद करके जब आप 4 सेकंड धीरे धीरे सांस लेंगे, अब इस सांस को 7 सेकंड के लिए रोक के रखना है। गिनती आप कीजिए मन में, 7 सेकंड के लिए आपको अपनी श्वास को रोक के रखना है। इसके बाद आपको मुंह से धीरे धीरे 8 सेकंड तक सांस छोड़नी है। 4-7-8 यही ये तरीका है, एक्सरसाइज जो है ये ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे आपको नींद आ सकती है। यही जो प्रक्रिया है आपको कम से कम 4 बार दोहरानी है, और 4 बार दोहराने का मतलब है कि आपका 1 राउंड हो चुका है। शुरुआत में अगर सांस रोकने में आपको कठिनाई आ रही है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन आप इतनी जल्दी हड़बड़ाइए मत। आराम आराम से इसको जो है एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। इसे सोने से ठीक पहले आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। चाहे आप 2 चाहे 3 दिन के लिए, देखिए आप अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, थोड़ी मुश्किलात आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत इसको आप बना लीजिए। और देखिए दिन के समस्या में भी, अगर आपको दिन में भी अगर सोने में आपको लग रहा है कि दिन में एक नींद होनी चाहिए, छोटा सा नाप होना चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोई इसमें नहीं है कि आप नहीं करेंगे। तो देखिए नींद जो है, अगर आपको कभी भी चाहिए होती है ना, जैसे मेन होती है रात की नींद, तो रात में ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो एक गहरी आपको नींद ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आपको अभ्यास जो है वो अच्छा हो गया है। इसी के साथ साथ देखिए क्या होता है ना, कि एक क्वालिटी नींद के लिए ना ज़रूरी है कि अपनी श्वास पे, अपने सांस पे आपको ध्यान रखना। तो इससे कोई खराब तो नहीं है। देखिए अगर आप अपने सांसों पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको सुकून ही पहुंचता है, मानसिक रूप से आपको सुकून मिलेगा, तो आपको कुछ बुरा नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है फोकस पार आपका बढ़ेगा, ये प्रैक्टिस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक परफेक्ट तरीका है जिससे आपकी नींद जो है ये आ सकती है। तो अगर आप भी नींद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, आपको भी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब सोचने वाली कोई बात नहीं बची है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है जिसका नाम है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। जी हाँ, 4 मतलब यानी कि 4 सेकंड तक सांसें लेनी है, 7 सेकंड तक रोकनी है, और 8वें सेकंड आपको जो है धीरे धीरे सांस रिलीज कर देनी है। ये आपको 4 बार एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब है 1 राउंड हो गया, 4 का सेट ये बन गया है, 1 सेट हो गया। ऐसे आप जितनी बार करेंगे उतनी बार जैसे आपको नींद आ जाती है, बस आप सो जाइए। तो चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें, क्योंकि अब इसके बाद सेगमेंट ले आती हूँ मैं आपके पास, स्ट्रेच प्लीज। रिया सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज, जिसमें हम बात करते हैं योगा और मेडिटेशन की। आज क्या कुछ खास है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बात करते हैं हम बहुत सारी. देखिए, अभी हमने बात करी सेगमेंट दिल धड़कने दो में, हमने हेल्थ और फिटनेस की हम बात तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब आ जाता है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज. स्ट्रेच प्लीज में मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए कमाल की योगासन. आपको बताती हूँ आज बहुत ही जरूरी योगासन के बारे में आपको बताने वाली हूँ. जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन योगा आसन के बारे में जो कि अभी इस मौसम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जी हाँ, देखिए ऐसे योगा आसन जो कि गर्मियों के सीजन में आपको आराम यानी कि ठंडक दे सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं, और एक बेटर जो ब्रीदिंग है ये भी दे सकते हैं, साथ ही पीसफुल माइंड भी देंगे. अब ऐसे कौन से योगा आसन हैं तो चलिए जल्दी से आपको बताती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं एक ठंडक भरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि शीतल प्राणायाम की. इसमें टंग को स्ट्रॉ जैसे शेप में आपको रोल करना है और उसके बाद इसको जो है आपको हवा को अंदर आपको लेना है. जल्दी से करके देखिए, आपको एक ठंडक एहसास जो होगा ना वो आपको मिलेगा, और गर्मी को आप इससे बाय बोल सकते हैं. और शीतल जो प्राणायाम है ये, इसको जो है आपकी बॉडी से जो फायर है ये बिल्कुल बाहर निकाल देगा, क्योंकि इससे ठंडक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी. तो पहला प्राणायाम है शीतल प्राणायाम, जिससे आपको ये जो कूलिंग इफेक्ट है गर्मी के मौसम में ये मिल सकता है. दूसरा है अनुलोम विलोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, देखिए बात जो है वो अनुलोम विलोम की, एक क्लासिक और पावरफुल प्राणायाम की मैं बात कर रही हूँ. इस ब्रीदिंग टेक्निक से आपके अंदर की जो हीट बैलेंस है ना ये हो जाता है, स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रहता है, और इम्यूनिटी वो भी बूस्ट होती है. तो माइंड को काम करो, गर्मी को शांत करो अनुलोम विलोम के साथ. इसी के साथ साथ तीसरा आसन आ जाता है हमारा, जो है वो है विपरीता जो करानी है, यानी कि लेग्स अप द वॉल पोज. ये जो है काफ़ी ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो अगर आप करेंगे तो ये ज़रूर आपको फ़ायदा देगा. यानी कि अगर थके हुए पैर और हैवी बॉडी फील हो रही है आपको इस गर्मी के मौसम में, तो आप ये जो आसन है ट्राई कर सकते हैं. यानी कि विपरीता जो आसन है, यानी कि करानी है विपरीता करानी आसन जो है ये ट्राई कर सकते हैं. पैर वॉल के ऊपर आपको जो है बैक फ्लोर पर रखना है आपको, यानी कि आपको सपोर्ट जो है वॉल की लेनी है पैरों से, उल्टा आप पैरों को ऊपर रख के बस ऐसे रिलैक्स करना है आपको 5 मिनट तक के लिए. ये जो पोज है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और गर्मी से रिलीफ देता है. रात को अगर आप इसे करते हैं तो ज़बरदस्त नींद आपको मिल सकती है. काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा जो है आसन है, काफ़ी हेल्पफुल आसन है. इसकी मदद से आप अपनी बॉडी की गर्मी को शांत कर सकते हैं. जिस गर्मी की वजह से हम इतना परेशान रहते हैं वो गर्मी जो है वो शांत रह सकती है. तो चलिए यह आसन जो है जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताइए क्या क्या फायदे आपको इससे मिले. लाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैनेवर 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ हफ्ते के 7 दिन। बातें हमारी चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में। योगासन आपको बता रही हूँ गर्मी से किस तरह से राहत पा सकते हैं। देखिए, अगर आप भी कोई बात साझा करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं हमारे सभी लिसनर तक, जल्दी से पहुँचा सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ साथ देखिए, अब आप जो है हमारे और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट रेडियो के साथ आप जुड़ सकते हैं। अब सिर्फ बात फरीदाबाद की नहीं रहेगी, फरीदाबाद शहर से अगर आप बाहर जाते हैं, यानी कि कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कभी भी जाते हैं, तो आप सुन सकेंगे और जुड़ सकेंगे रेडियो मानवरे 107.8 FM के साथ। वो भी कैसे, आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या अपना iOS मोबाइल फोन लेना है, अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, लिखना है रेडियो मानव रचना और हमारी ऐप को यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आप ढेर सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपने फेवरेट आरजेस के, और साथ ही साथ कमाल की जानकारी, एक्सपर्ट एडवाइस जो है ये आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बस मिनटों में, बस एक क्लिक दूर। और आप सोचिए कितनी जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, और बहुत सारे जो देखिए प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मिलेगी। अगर आपका कोई पॉडकास्ट छूट जाता है, हम कहते हैं ना कि अरे क्या बोला अभी समझ नहीं आया, या अच्छा हम भूल गए ना क्या बात हुई थी, तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे हमारी रेडियो मानव रचना की एप्लीकेशन पर पॉडकास्ट सेक्शन में। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, और स्ट्रेच प्लीज में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ आपके पास। गर्मी में ठंडक कैसे मिले ये आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे योगा आसन जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ, देखिए ये हमारा जो समर है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि मजा तो आता है ना, आप जो है गर्मी का ये जो मौसम है ना, हर मौसम अपनी अपनी, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, किसी को सर्दियों का मौसम पसंद है, किसी को पसंद है कि नहीं गर्मियों में जो है भाई हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, जल्दी जल्दी अपने कपड़े जो है रिपीट कर सकते हैं और अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन सर्दियों में हो जाता है कि सेम जैकेट जो है वो हम पहन रहे हैं और बड़ा ही जो है कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करती है, लेकिन गर्मियों में हम काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। अब बात आती है कि अगर एनर्जेटिक ऐसी बने रहना है तो मैं आपको बता रही हूँ इस गर्मी के मौसम में कैसे आप बने रह सकते हैं एनर्जेटिक, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपको चाहिए ठंडक भरे योगासन जिससे आप अपनी बॉडी को ठंडा रख सकें। अब बात मैं कर रही हूँ, देखिए हमने कुछ आसन के बारे में बात करी जिससे कूलिंग इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे पोज जो है चाइल्ड्स पोज, यानी कि बाला आसन। जी हाँ, बाला आसन जो पोज है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, असरदार है और गर्मी से ये जो है आपको बचाता है। किस तरह से बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ और बातें बहुत सारी लेकर के आती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में हम बात करें गर्मी से राहत पाने वाले कुछ ऐसे योगासन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है. जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ बालासन के बारे में अब. और ये जो आसन है इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. जब आप इस पोज में देखिए आप फोल्ड होते हैं तब बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट मोड पर चली जाती है. ये गर्मी में ओवर हीटिंग से आपको बचाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही मेंटल पीस भी बढ़ा देता है. बाला आसन जो है हर स्ट्रेस का फुल स्टॉप है, यानी कि कोई भी अगर स्ट्रेस हो आपको, आप इस पोज में लेट जाइए, चाइल्ड पोज में लेट जाइए और काफी आपको फायदा मिलेगा. इसी के साथ साथ आ जाता है मत्स्य आसन, यानी कि फिश पोज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी यहाँ पर जो गर्मी के पोज के लिए काफ़ी ज़्यादा, गर्मी के इस मौसम के लिए काफ़ी अच्छा है, वो है फिश पोज. यानी कि समझ में अगर थ्रोट या साइनस इश्यूज आपको हैं तो आप जो है ये आसन कीजिए, ये सुपर हेल्पफुल रहेगा फेस और थ्रोट की हीट को कम करने में, साथ ही ब्रीदिंग बेटर करने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और साथ ही फ्रेश ग्लो भी इससे जो है वो मिलता है. मत्स्य आसन जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं, इससे ठंडक मिलती है और वो भी बिना एसी के, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो 5 गर्मियों में करने वाले आसन हैं, यानी कि ये हीरोज़ हैं गर्मियों के समर्स में जो आसन है, शीतल प्राणायाम, इसी के साथ अनुलोम विलोम और विपारिता करानी, इसी के साथ बालासन और मत्स्य आसन, आज इन्हें आप डेली रूटीन में आज से ही इंक्लूड कर लीजिए और देखिए गर्मी जो है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ये आसन करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. चलिए इसी के साथ अब और भी होंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब लेकर के आ रही हूँ सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट का टाइम हो चला है जिसका नाम है पावर प्ले विद RJ साक्षी. जी हाँ, हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की. देखिए, बातें हमारी चल रही है स्पोर्ट्स की, जहाँ पसीना बनता है जुनून और वहाँ हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, और वही है हमारा इंडिया, हमारा भारत. देखिए, आज का भारत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में दुनिया को चैलेंज कर रहा है. एथलीट से लेकर बॉक्सिंग, रेसलिंग से लेकर शूटिंग तक, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ग्लोबल पोडियम पर खुद को साबित कर रहे हैं. और नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स गोल्ड हो, अविनाश सांबले का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेस हो, या फिर अन्नू रानी का जावलिन थ्रो, हर परफॉर्मेंस देश को गर्व से बढ़ा देता है. आपको बता दूं, और सबसे इंस्पायरिंग बात जो है ये क्या है कि हर प्लेयर, ये जो प्लेयर्स हैं, छोटी जगहों से निकलकर लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद इंटरनेशनल स्टार्स बन रहे हैं. उनका जुनून, उनकी मेहनत और उनका विजन, यही है असली भारत का खेल वाला जो रूप है. और देखिए, ऐसे ही होता है ना, छोटी छोटी जगहों से इतने बड़े स्टार्स जो बन गए, और यही जो है आगे आने वाली जनरेशन को प्रेरित करता है. यही लोग हैं आइडियल्स. आजकल हम इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर, लेकिन असली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये लोग हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स जगत में हैं, जो इतने अच्छे से जो है अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, गोल्ड दिलवा रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं, सिल्वर मेडल दिलवा रहे हैं. आज देखिए हम कितने ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. हर एक देश के साथ हम कंपीट कर सकते हैं. आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश पीछे बिल्कुल भी नहीं है. चलिए, इसी के साथ और भी बहुत सारी करूंगी बातें, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइक.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि डेली आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे. और बहुत सारी हम करते हैं बातें. फिलहाल हमारी बातें चल रही हैं स्पोर्ट्स की. जी हाँ, आज के इस टाइम में जहाँ महिलाएं जो हैं भाई वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के साथ, आज के समय में महिला खिलाड़ी सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही हैं, वो स्टीरियोटाइप भी तोड़ रही हैं. पीवी सिंधु बैडमिंटन के कोर्ट में ग्लोबल आइकन है, बल्कि वहीं देखा जाए तो भाई मैरी कॉम बॉक्सिंग रिंग की असली टाइग्रेस है और निखत जरीन नए जमाने की पावरफुल पंच. सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही नहीं, वुमेन्स क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें वो भी दुनिया भर में अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है. हरमनप्रीत कौर की हम बात करें या फिर हम स्मृति मंधाना की बात करें, जैसे ये जो स्टार्स हैं इन्होंने गेम का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बदल कर रख दिया है. और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सफलता से इंस्पायर होकर हजारों लड़कियां गांव से, शहरों से और कस्बों से ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँच रही है. वेमेन स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अ मोमेंट, इट्स अ मूवमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भारत के लिए. आज देखिए, जब हम देखते हैं ना, मतलब हम जब स्पोर्ट्स देखते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, पहले होता था कि सिर्फ मेंस क्रिकेट में ही इंटरेस्ट आता था, लेकिन आजकल आप देखिए कि वेमेन्स क्रिकेट में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना कि मेंस क्रिकेट में आता है. वही जो जोश है वो रहता है, क्योंकि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं. और आप सभी से दरख्वास्त रहेगी कि अपनी टीम को, वुमेन्स क्रिकेट टीम को ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए. सिर्फ क्रिकेट टीम ही नहीं, बल्कि वो हर महिला जो कि देश को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हर महिला जो कि एक नई इंस्पिरेशन बन रही है, उनको सपोर्ट कीजिए. और उनको देखिए, हम जो है आइडियल समझें और ज़्यादा लड़कियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम जो है आगे लेकर बढ़ें. क्योंकि आजकल सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो है कुछ ऐसी डिग्रियों में जो है वो कोर्सेज में जो है सिर्फ और सिर्फ हम जो है कुछ हासिल कर पा रहे हैं, अपना करियर बना पा रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स भी आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है करियर ऑप्शन हो गया है बच्चों के लिए. तो स्पोर्ट्स में आप जो है डरिए मत, अगर बच्चा जो है खेल कूद में आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत स्कोप है. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ हफ्ते के सातों दिन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें. फिलहाल सेगमेंट हमारा चल रहा है पावर प्ले विद RJ साक्षी, जिसमें बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. इसी के साथ ना, क्या हो रहा है आजकल, काफी ज्यादा लोगों में क्रेज है, यानी कि आज की जो जनरेशन है ये सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं है. उनका रील टैलेंट खेल के मैदान में भी चमक रहा है. स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कंपटीशन का क्रेज जो है ये बढ़ गया है. फिटनेस ऐप, ऑनलाइन कोचिंग और स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नए बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं. पेरेंट्स भी आज स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं. चाहे साइकिलिंग हो, मैराथन हो, या फिर स्केटिंग, या हो बास्केटबॉल, हर गेम में नया फेस जो है वो दिखाई, अब नए नए फेसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए खेल रहे हैं. और इसी माइंडसेट से भारत बन रहा है एक सुपर स्पोर्टी नेचर. 21st century का स्पोर्ट सिर्फ मसल का गेम नहीं, माइंड और मशीन का भी कॉम्बो है. आज के एथलीट्स जो हैं वो स्मार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, GPS ट्रैकर से रनिंग एनालाइज जो है ये होती है, AI से वीडियो रिप्लेज और मैच टैक्टिक्स बन रहे हैं, साथ ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में बायो मशीन्स जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पोर्ट साइकोलॉजी और साथ ही न्यूट्रिशन पे भी फोकस किया जा रहा है. इन जो देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें जो हैं आप नोटिस करेंगे कभी, आजकल हम बड़ी सारी चीज़ें सुनते हैं ना कि क्रिकेटर जो है या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, इन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो फिटनेस फ्रीक है या नहीं है, वो जिम में कितना टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो जो डाइट ले रहे हैं वो सही है, पानी कौन सा पी रहे हैं, ये सारी जानकारी जो है बच्चे भी आजकल आप देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. तो ये नया भारत है, ये एक नई तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं. हम AI से लेकर हम जो है बायो मैकेनिक्स तक जो है वो यूज कर रहे हैं, जो इवन फैंस भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि जैसे फैंटेसी लीग्स, लाइव मैचेस, स्टैट्स और वर्चुअल रियलिटी से एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो गया है. इसी के साथ टेक्नोलॉजी ने एक नए टाइप के एथलीट्स को जन्म दिया है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ स्मार्ट डेटा पे भी भरोसा करता है. जी हाँ, तो देखिए ये जो नया भारत है ये तो आपको बता ही रहा है, ये तो एक सभी को जो है संदेशा दे ही रहा है कि अब हम पीछे नहीं रहने वाले हैं, अब हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक. आप देखिए कि अब हर एक एज कैटेगरी में जो है बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं वो खेल रहे हैं, और देखिए जीत भी सामने जो है वो आ रही है, जीत कर भी आ रहे हैं. तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी जो चीज़ें हैं बदलाव जो है वो नज़र आ रही हैं. तो अब ना बच्चों को रोकने या टोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर वो खेल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था, लेकिन आजकल ये बदल गया है. अब हो गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे आगे, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे और ज़्यादा आगे. तो देखिए अब पढ़ाई लिखाई से साथ साथ आपको खेल कूद में बच्चों को आगे बढ़ना है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.

सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि खेल जो है यही से इम्पॉर्टेंट है, जीतना इम्पॉर्टेंट है, नहीं, खेल के साथ साथ एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आजकल के इस दौर में बन गया है। इसी के साथ साथ तो देखिए, याद रखिए, चाहे दिन हो या रात, खेल हमेशा आपको एक नई बात सिखाएगा। बात बस दिल में जो जुनून है इसकी हो या हाथों में कोई गेम हो, तो सफलता जो है आपके नेक्स्ट डोर पर होती ही होती है। तो अगर कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको ये गेम जो है सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि भाई अपने लिए खेलना है, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस के लिए, अपने माइंड सेट के लिए, अपने देश के लिए खेलना है, ज़रूरी है। आगे चलकर बच्चों को आपको जो है यही आपको समझाना है कि आगे चल के इसमें भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ये ना कहें उनसे कि आगे तो इसमें कोई मतलब फ्यूचर है ही नहीं, बच्चा ऐसा डर जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि आजकल फ्यूचर है इसमें और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो उनको इनकरेज करें, उनको जो है डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद, क्योंकि एक बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के मैं आ रही हूँ आपके पास, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें बात करती हूँ आपके साथ, कमाल की जानकारी तो लेकर के आती हूँ लेकिन क्विज आपसे पूछती हूँ। चलिए, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगी। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही खास एक्सपर्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट मानव रचना से जुड़े हुए हैं डॉक्टर वंदना गर्ग, जो की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर वंदना, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू साक्षी फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन। सो वी आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस to actually enhance the exclusive breastfeeding.
0: बिल्कुल मैम, क्योंकि ये पूरा एक हफ्ता जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो नई माएँ जो हैं अभी बनी हैं, और सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का क्या महत्व है और इस साल की थीम क्या है?
1: साक्षी, ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम वैसे तो हमें अवेयरनेस पूरे साल ही क्रिएट करनी चाहिए, पर इस वीक में स्पेशल ये रहता है कि सब कोई बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग लेता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं टू इंक्रीज द अवेयरनेस। सो इस बार का ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम हमारा है कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो सस्टेनेबल है, राइट? और अगर हमारा अगर बच्चा बॉर्न करता है और वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ उसको ब्रेस्ट फीड दिया जाता है, सो दैट इज अ सस्टेनेबल स्टार्ट फॉर हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ। एंड हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दिस, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया, सो दैट इज एंड द ग्लोबली ऑल्सो, सो दैट इज वट इज द थीम इन दिस ईयर। सो
0: मैम, ये बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग को न्यू बॉर्न के लिए बेस्ट फर्स्ट फूड क्यों कहा जाता है?
1: ब्रेस्ट फीडिंग को न्यू बॉर्न के लिए बेस्ट फूड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक तो जो इट्स अ गॉड मेड गिफ्ट टू द चाइल्ड, इसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि उस बच्चे की ग्रोथ के लिए उस समय के लिए उसे चाहिए। उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में ही वो जितना भी टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम फीड करेगा, द चाइल्ड विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट। सो द ब्रेस्ट मिल्क इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन कॉल्ड एज अ बेस्ट फूड फॉर द न्यूबॉर्न।
0: बिल्कुल।
1: सेकेंडली इट्स सेफ बिकॉज हाइजीनिकली एंड इकोनॉमिकली इट्स सेफ फॉर द चाइल्ड, राइट? तो अगर आप बोलेंगे कि मैं टॉप फीड भी दे सकता हूँ, तो टॉप फीड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ब्रेस्ट मिल्क जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो वो इन्फेक्शन के चांसेस को आप ख़त्म कर देते हैं, सो वो भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो इसलिए भी ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड, स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट 6 months।
0: डॉक्टर, अभी आपने कहा 6 months के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और पहले 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देने की सलाह क्यों दी जाती है?
1: सो फर्स्ट 6 months इज़ द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ में इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। अगर बच्चे में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, रिकरेंट होगा, तो वो उसकी ग्रोथ को रोकेगा। और अगर ग्रोथ रुक जाती है, उसका कारण ये है कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है बच्चा बीमार होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, एंड देयर बाय इन अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंडली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि गर्मी है तो बच्चे को प्यास लगी होगी, राइट? ये बहुत बड़ा मिथ है, तो थोड़ा पानी पिला देते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर द 6 months बच्चे को ना ऊपर के पानी की, ना किसी मीठे की, ना नमकीन की, या किसी भी तरह की लिक्विड की, या किसी भी चीज़ की फॉर दैट मैटर ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क इज इनफ फॉर द चाइल्ड टू एक्चुअली सफाइस ऑल द नीड ऑफ द न्यू बॉर्न, राइट? सो दैट इज वॉट इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देयर फॉर इट इज बीन ऑलवेज बी सेड कि सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, ऊपर से टॉप में कुछ नहीं देना है, सो दैट वी कैन अवॉइड द इन्फेक्शन। दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग, दैट टू अवॉइड द इन्फेक्शन।
0: जी, तो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर कि कैसे पता चले कि बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं।
1: सो ब्रेस्ट मिल्क इज अ स्टैंडर्ड फूड जो कि किस ऐसा नहीं है कि एक मदर अगर मैल नरिश्ड है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क कम नरिश्ड होगा, और जो एक फुली नरिश्ड मदर है उसका जो मदर है ना वो सब चीज़ें अपने ऊपर लेती है। सो ब्रेस्ट मिल्क का जो कॉम्पोजिशन बॉडी क्रिएट करती है वो एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है। सो वो चाहे उसको मदर की नरिश्ड मदर से कम्प्लीटली मिल रहा है या फिर वो मैल नरिश्ड मदर से मिल रहा है, पर वो कॉम्पोजिशन उतना ही लेता है। क्वांटिटी ऑफ द मिल्क डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स। इफ अ मदर इज फुली नरिश्ड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज कम्प्लीट, बट इफ द मदर इज इटसेल्फ इज नॉट अ नरिश्ड मदर, इन दैट केस समटाइम द मदर मिल्क क्वांटिटी इज नॉट कम्प्लीट। इन दैट केस द मदर हैज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, द फैमिली शुड सपोर्ट हर सो दैट शी कैन प्रोड्यूस इनफ ऑफ मिल्क फॉर द चाइल्ड। जहाँ तक बात रही कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को क्वांटिटी कंप्लीट मिल रही है कि नहीं, वो बच्चे की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत आराम से खेल रहा है और टाइम टू टाइम फीड ले रहा है सो दैट मीन्स ही इज़ फुल, ही इज़ नॉट हैविंग एनी ट्रबल इन कंज्यूमिंग द मिल्क ऑल्सो एंड ऑल्सो डाइजेस्टिंग इट ऑल्सो, सो दैट इज़ हाउ वी कैन गेट टू नो।
0: डॉक्टर एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि कितने टाइम तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई महिलाएं जो होती हैं वो 6 महीने बाद ही जैसे ही आहार नॉर्मल खाना शुरू कराते हैं वो छोड़ देती हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर?
1: सो जो ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ एक्सक्लूसिव, आपको ऊपर से कुछ नहीं देना है। 6 मंथ के बाद अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड यू कैन फीड द चाइल्ड टाइम टू टाइम, यू कैन शेड्यूल द उसका जो मील पैटर्न है वो आप बना लें कि आपको कब उसको ब्रेस्ट फीड कराना है और कब आपको उसको फीड टॉप फीड मीन्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फूड खिलाना है। सो अप टिल द 1 ईयर और अप टिल द 2 ईयर यू कैन फीड द चाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑल्सो कि आप कितना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहे हो, पर 1 ईयर तक एटलीस्ट यू शुड गिव द ब्रेस्ट मिल्क टू द चाइल्ड। आफ्टर द 1 ईयर द चाइल्ड इज ऑन टू द नॉर्मल फूड पैटर्न। सो नॉर्मल फूड पैटर्न मीन्स जैसे एक बड़ा आदमी हम लोग खाते हैं एडल्ट फूड है वो उस पैटर्न पे आप उसको ला सकते हो। सो फॉर द 1 ईयर डेफिनेटली यू कैन फीड हर विद द ब्रेस्ट मिल्क, आफ्टर द 1 ईयर यू कैन स्टॉप। बट इफ द वर्किंग मदर इज देयर फॉर देम इट इज रियली डिफिकल्ट इवन टू फीड देम फॉर द 6 मंथ एक्सक्लूसिवली, इन दैट केस एट लीस्ट फॉर द 6 मंथ डेफिनेटली दे फीड देयर चाइल्ड एंड आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट विद द वीनिंग फूड एंड whenever they get the time maybe in the evening or in the night they can feed once or twice in a day also that is fine।
0: डॉक्टर वंदना अभी आपने कहा कि जो वर्किंग जो वुमेन है अब मैं इनकी बात करूंगी कि आजकल क्योंकि काम है सब कुछ है हर चीज देखनी होती है तो इसमें बात आ जाती है कि उन महिलाओं की जो कि अभी काम कर रही हैं उनको ऑफिस जाना है लेकिन बच्चे उनके काफी छोटे हैं जो छोटा बच्चा है बेबी है घर पे है तो ऐसे में क्या ब्रेस्ट मिल्क को क्या उसे किसी कंटेनर में रखा जा सकता है क्या वो सेफ है बच्चे के लिए?
1: राइट, सो देर आर अ पर्टिकुलर कंडीशंस इन विच यू कैन एक्चुअली पंप आउट योर ब्रेस्ट मिल्क एंड यू कैन कीप इट सेफ। देर इज अ प्रोविजन दैट यू कैन इवन पंप आउट फॉर लाइक 5 to 6 times एंड यू कैन कीप इट इन द सेपरेट मीन्स लाइक इफ यू हैव टू गिव लाइक से अबाउट 20 ml और 30 ml इन अ टाइम सो जस्ट मेक अ डिफरेंट कंटेनर्स फॉर 20 ml सो that every time you can take a fresh container to feed the child to avoid the infections. So this is how you can easily keep it up at the refrigerator temperature. So not in the in the freezing temperature but in the normal refrigerator temperature you can keep the containers and you can feed the child with that breast milk. That can easily be done.
0: डॉक्टर अब मैं जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर बात करें कि ब्रेस्ट पर भी कितना ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि उस पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या बच्चा ढंग से अच्छे से नहीं फीड कर पा रहा है तो ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि नॉर्मली हम सिर्फ जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमेशा इस बात पे करते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, पर उसके साथ साथ मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने खाने पीने के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखे, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि किस पॉस्चर में बैठ करके फीड करवाया जा रहा है। सेकेंडली डेफिनेटली ब्रेस्ट को चेक करते रहना है, फीड करवाने से पहले भी ब्रेस्ट को क्लीन करना है और फीड करवाने के बाद भी ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करना है, सो दैट उस पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। ब्रेस्ट को आपको प्रेस करके चेक भी करना है कि कोई लंप फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। समटाइम इट हैपन्स कि जब आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है और बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं कर रहा है, इन दैट केस देर आर चांसेस ऑफ लंप क्रिएशन इनसाइड द ब्रेस्ट एंड दैट विल बी वेरी पेनफुल ऑल्सो, सो द मदर नीड टू टेक केयर। अगर फिर भी उसे लगता है और कोई लिक्विड उसके निप्पल से बाहर तो नहीं आ रहा है विच इज अदर देन द मिल्क, अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीजिएटली शी शुड सीक आउट द डॉक्टर्स हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर वंदना कि कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि आज आप बर्स्ट करना चाहेंगी, जो कि आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं लेकिन अब ज़रूरत है सबको जान लेने की कि सारे मिथ्स हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए, और अब की जो नई माएँ हैं वो इन नई चीज़ों को देखें, अपनाएं और अवेयर हो जाएं सभी पुरानी चीज़ों से।
1: सबसे पहला मिथ, जैसा ही बच्चा बॉर्न होता है विद इन एन आवर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम, एंड दैट मिल्क अभी भी बहुत सारी जगह पे, अगर हम गांव की बात करें या कुछ और बहुत सारी भारत में ऐसी जगह है जहाँ पे कोलेस्ट्रम को डर्टी मिल्क बोला जाता है और फेंक दिया जाता है। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रम इज़ अ फर्स्ट वैक्सीन फॉर द बेबी, सो ये आपको बच्चे को ज़रूर पिलाना है। सेकंड सबसे बड़ा मिथ जो बहुत कॉमन आजकल सुनने में आता है और यंगस्टर्स काफ़ी इस बात के लिए कॉन्शियस भी रहते हैं कि स्मॉल ब्रेस्ट अगर है तो उसमें मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा या कम मिल्क प्रोड्यूस होगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट साइज से मिल्क प्रोडक्शन का कोई लिंक नहीं है। थर्ड इज़ कि जैसे मैंने आपको कहा कि बेबीज नीड वाटर इन द समर, तो बेबी को 6 मंथ तक कोई भी एक्सटर्नल फूड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मदर बीमार है, फॉर एग्जांपल उसे फीवर है या कोल्ड है, तो नॉर्मली एक मिथ आता है कि इस कंडीशन में मदर को फीड नहीं कराना चाहिए। सो इन दैट कंडीशन फीड नहीं करवाना इज़ अ बिगेस्ट मिथ, बट येस मदर नीड टू बी कवर हर सेल्फ सो दैट इन्फेक्शन शुड नॉट ट्रांसफर थ्रू द एक्सटर्नल मीडियम टू द चाइल्ड। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को कभी इन्फेक्शन नहीं होगा इवन इफ द मदर इज हैविंग कोल्ड और अ फीवर, राइट? शी शुड कवर हर नोज एंड माउथ सो दैट, एंड द क्लोथ शुड बी क्लीन। जब आप उसको फीड कराने जाओगे तो मेक श्योर कि आप चेंज कर लो, और आपको लगता है कि आप इंटरवल में फीडिंग करा सकते हो तो आप इंटरवल में फीडिंग कराओ। शुड क्लीन योर हैंड प्रॉपरली वंस यू आर पिकिंग अप द चाइल्ड, फीडिंग द चाइल्ड। सो आपको प्रिकॉशन रखना है फॉर योर हाइजीन प्रैक्टिसेस व्हेनेवर यू आर सिक, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंट मिथ इज द फॉर्मूला मिल्क इज इक्वल टू द मदर्स मिल्क। नो, इट इज नॉट। कॉम्पोजिशन बहुत सारी कंपनी कोशिश करती हैं कि उतना ही प्रोटीन, उतना ही कैल्शियम, सब चीज़ें, उतना ही न्यूट्रिएंट उसमें से आए, बट देर आर सर्टेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स विच इज़ ओनली अवेलेबल इन द ब्रेस्ट मिल्क, नॉट अवेलेबल इन द। देन देर इज़ अनदर की फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीड क्या होना चाहिए।

0: वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बहुत बार बार उसको फीड करा रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, पर ऐसा नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड नीड, समटाइम अ चाइल्ड नीड्स इन एन आवर ऑल्सो. सो ऐसा कोई 6 मंथ में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. येस, अगर 2 आवर्स तक भी द चाइल्ड इज नॉट आस्किंग फॉर द फीड, देन यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट कि विद इन 2 आवर्स यू शुड गिव अ फीड टू द चाइल्ड. बट इवन इफ द चाइल्ड इज आस्किंग विद इन अ 1 आवर ऑल्सो, दैट इज फाइन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड डजेंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इनसफिशियंसी ऑफ द मिल्क और देर इज एनी प्रॉब्लम इन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. सो समटाइम द मदर इज टेकिंग अप द सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग और टेकिंग अप एनी मेडिसन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम. सो इट इज बीन सेड दैट मदर को कोई भी तरह का सप्लीमेंट या फिर कोई भी मेडिसन नहीं लेनी चाहिए. एट सम प्लेसेस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ. सो द ब्रेस्ट मिल्क कॉम्पोजिशन इज फिक्स, इट्स नॉट दैट कि आप क्या खा रहे हैं. येस द न्यूट्रिशियस फूड इज इम्पॉर्टेंट, बट देर इज अ मिथ लाइक आपको बहुत गैस्ट्रिक चीजें नहीं खानी है बिकॉज दैट विल हार्म द बेबी. बट दिस इज अ कम्प्लीट मिथ बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिल्क इज फिक्स, राइट. इट इज नॉट ऑल्टर्ड बाय वट एवर यू आर टेकिंग अप. येस योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, देयर फॉर द न्यूट्रिशियस फूड इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो देर इज द लास्ट एंड द बिगेस्ट मिथ इज दैट दैट द ब्रेस्ट फीडिंग स्पॉइल योर बॉडी शेप, राइट. सो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग is helping out in losing up the weight, right?
1: Okay.
0: And making up you into the shape. Secondly, it is important how you are feeding up the child. So there are some mother who is lying and then feeding. So it will, or sometime they will be tilting more and they are not taking up the child properly. And फिर उनका जो बैक है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है. सो उनका पोस्चर स्ट्रेट रहने की बजाय थोड़ा सा बेंडिंग पोस्चर आ जाता है. दैट इज बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पोस्चर. इट इज नॉट फॉर बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, राइट. सो वेन एवर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड, मेक श्योर दैट योर पोस्चर इज करेक्ट. यू आर सिटिंग स्ट्रेट, टेक अ पिलो विद यू वेन यू आर होल्डिंग द चाइल्ड near to your breast. So that is important so that you are not bending too much towards the child, right? And try to avoid when you are lying and feeding is need to be avoided. So basically, and also you should practice some sort of light activity or exercise to make your posture and to make your body active.
1: Bilkul.
0: So that is important.
1: देखिए बहुत सारी जानकारी आज हमने प्राप्त करी है और आई होप कि ये सारी जानकारी है जो आप अवेयर तो हो और सभी और जो लोग हैं जो नई माएँ हैं उनको भी बताएं, जो लोग कई सारे मिथ्स में बिलीव करते हैं आज वो भी बर्स्ट हुए हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर वंदना. बस जाते जाते मैं एक और आखिरी सवाल यही आपसे जानना चाहूँगी, क्या वो ख़ास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगी आज?
0: इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में मैं सभी माताओं को जो कि अपने बच्चों को फीड कराती हैं, अब जितना आप अपने बच्चों के करीब रहेंगे उतना ही आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा. फॉर अ हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर अ हेल्दी मदरहुड, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी कनेक्टेड टू योर चाइल्ड एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फीडिंग योर चाइल्ड.
1: बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम कि आप आए हमारे स्टूडियो, इतनी सारी जानकारी दी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ.
0: थैंक यू साक्षी.
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही भी आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है, जो बहुत ब्रूटल है, वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी। एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को केटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहाँ पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है। छोटे शहरों में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है। बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज़ को आवाज़ दी। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एन एनुअल पॉलिसी ऑफ ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्मॉल टिकट इंश्योरेंस बनाया, कॉन्टेक्चुअल इंश्योरेंस बनाया, इजी ऑनबोर्डिंग करी, लो एनुअल प्रीमियम्स रखे, ठीक है, जहां पर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने केटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी। That is the thing. फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की। कौन है फाउंडर? We'll talk about it, but इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। So stay tuned with us. Feel good, feel live.

बिना वक्त गंवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं या फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कारक्यू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है। जहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, जीएसएफ एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। And he got just one point that distribution is everything. अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि IIT ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं। देन इसके अलावा खुद ने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या समहाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की USP की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और वक्त हुआ है आप ही के बारे में कुछ खास बातें करने का। बदलती दुनिया और दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो हुई है अब तक वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम सब जुड़ गए हैं। कुछ साल पहले हमारे घर में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था। जब बजता था तो बच्चे खास तौर पर भागते थे उस फोन को उठाने के लिए। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, और साथ ही हुआ करते थे टेलीविजन। धीरे धीरे समय बदला, जगह ले ली कंप्यूटर्स ने, कंप्यूटर्स के साथ बदलाव आए तो आ गया फोन। जी हाँ, फोन, वो भी सेल फोन जो आपकी जेब में समा जाता है। और ये फोन अब आपका टीवी भी बन चुका है, आपका कंप्यूटर भी बन चुका है, और फोन तो है ही, लेकिन इसके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आज जिस चीज से हमें डर लगता है वो है अपराध, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी हाँ, साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम आपके फोन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, 5 से 50 हजार या फिर 1.5 लाख तक की कीमत का भी अवेलेबल है बाजार में, और हर किसी के हाथ में है। जितनी आबादी उतने ही फोन कनेक्शंस, लेकिन इन फोन कनेक्शंस के जरिए बढ़ते अपराधों ने हर किसी की नींद खराब कर रखी है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार जी, ACP साइबर क्राइम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: जी, थैंक यू।
0: सबसे पहले सर, मैं जानना चाहती हूँ, हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे दर्शकों को और साथ ही रेडियो पर अपने श्रोताओं को आज साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहते हैं
1: जी।
0: लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, और हमारी जिंदगियों को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है आज की तारीख में।
1: साइबर क्राइम को आप अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे अपराध जो साइबर के माध्यम से होते हैं, फोन, लैपटॉप, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आपके फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से आपको चोट पहुंचाई जाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, तो ऐसे सभी अपराध साइबर क्राइम में आते हैं
0: जी। यानी हम जो फोन इस्तेमाल करें, हम जो लैपटॉप का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर्स हमारे घरों में हैं, उनके थ्रू जो अपराध हो रहे हैं और हमारी जिंदगियों को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं
1: जी।
0: जी, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर इसका यही देखा कि फाइनेंशियली आपको इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पैसों पर इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या साइबर अपराधियों का कोई और उद्देश्य भी होता है?
1: जी देखिए, फाइनेंशियल के अलावा आपका पर्सनल डाटा वो चुरा लेते हैं
0: जी,
1: आपकी पर्सनल फोटोज आपको डिफेम करने के लिए यूज हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं इससे ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा परिवार भी खतरे में आ सकता है
0: जी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं
1: जी,
0: डेटा हैक करना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल, और वो डेटा आगे सेल किया जाता है, तो वो कंपनीज अपना जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अलग चीज हो जाती है। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, और ये मैं चाहूंगी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताएं, कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं जो सबसे ज्यादा आजकल चलन में है, और कौन से ऐसे हैं जो हुआ करते थे या फिर भी आगे भी कुछ पॉसिबिलिटी है उनके होने की?
1: देखिए, सबसे पहले जब साइबर क्राइम हुआ था तो सिंपल आपके पिन नंबर से और आपके अकाउंट नंबर से पैसे एक्सेस होने शुरू हुए थे
0: जी।
1: उसके बाद बैंकों ने सेफ्टी बढ़ाई और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दी। उसमें 2 स्तर पर जो है ना आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की जाती है
0: जी।
1: और उसके लिए आपको पिन नंबर के साथ साथ आपके पास एक OTP भी आता है, तो उस OTP को लेने के लिए उसको आपसे संपर्क करना पड़ता है
0: जी।
1: हर तरीके से, तो वो फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो किसी तरह से भी उनको वो OTP चाहिए
0: जी।
1: वो आपको बहका के, फुसला के कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, हम आपकी KYC पूरी कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है, या आपका जो फोन नंबर है वो बंद होने वाला है, उसकी KYC कराइए, उसके लिए आपके फोन पे OTP आया वो बता दीजिए, तो किसी भी तरह से आपसे OTP लेंगे। तो किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना OTP शेयर ना करें जब तक कि आपने कोई ऐसा प्रोसेस शुरू ना कर रखा
0: जी। जी,
1: रैंडमली आपके फोन पे कोई कॉल आती है और वो ये कहता है कि जी आपके फोन की हमें केवाईसी करनी है या आपके अकाउंट की केवाईसी करनी है, और वो आपसे ये कहता है कि भाई हम एक लिंक भेज रहे हैं वो क्लिक करिए, या हम एक ओटीपी भेज रहे हैं वो हमें ओटीपी बता दे, तो ऐसा कतई ना करिए, उनकी बातों पे यकीन मत करिए। जब तक आपने बैंक में, बैंक के किसी व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपको फोन नहीं कर रहा है, कभी भी बैंक आपसे फोन पे ओटीपी या इस तरह के यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगते,
0: यानी पासवर्ड्स कभी भी कोई बैंक नहीं मांगता।
1: दूसरा फ्रॉड आजकल चला हुआ है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है घर बैठे पैसे कमाए, सस्ते छोटे पैसे लगा के मोटा मुनाफा कमाए। उसमें क्या करते हैं कि आपको ये कहते हैं कि हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, वो कई गुना हो जाएगा। वो आपको एक टेलीग्राम पेज पे ले जाते हैं और शुरू में आपसे बात करेंगे, फिर टेलीग्राम पेज पे ले जाएंगे। कई फ्रॉड इस तरह के हैं, आपको शुरू में प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल भी देते हैं ताकि आपको उन पे यकीन हो जाए। जब आपको छोटा प्रॉफिट दे देंगे आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप उसमें बड़ा इन्वेस्ट कर दोगे।
0: बिल्कुल,
1: कई बार आपका प्रॉफिट वो दिखाते रहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, लेकिन वो ये कहेंगे निकालने से पहले आपको इतने चार्जेस जमा कराने पड़ेंगे, इतना और खेलिए आप, इतना स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करिए। वो आपको सिर्फ पेज पे दिखाते रहेंगे, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होगी। और जिस दिन आप उनको फोर्स करोगे कि हमारा पैसा वापस दो, तो वो अपने फोन नंबर, वो टेलीग्राम पेज, वो सब कुछ आपका बंद कर देंगे।
0: ओके, तो इस तरह के फ्रॉड कर देंगे और अपना अकाउंट जो है वो आपसे, मतलब आप रीच नहीं कर पाएंगे
1: जी। तीसरा फ्रॉड आजकल इंश्योरेंस के नाम पे चल रहा है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा उनके पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो आपको कॉल करते हैं कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप इतने पैसे और सबमिट करा दें तो आपको इतने का प्रॉफिट और हो जाएगा। तो वो आपको पॉलिसी का अकाउंट ना देके कोई और अकाउंट देते हैं। आप यकीन करके उसमें पॉलिसी के पैसे जमा करा देते हो, लेकिन उसका उस पॉलिसी से कोई संपर्क नहीं होता, सिर्फ वो आपके डेटा से आपको एक्सेस करते हैं, फोन पे आपको बात करते हैं और आप उनके दिए हुए अकाउंट में पैसा जमा करा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आजकल एक नई चलन की बात जो चली हुई है, डिजिटल अरेस्ट, हर जगह इसकी बात चल रही है। तो डिजिटल अरेस्ट में आपके डेटा से ही आपको मूर्ख बनाया जाता है कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, फोन में वीडियो कॉल होगी आपकी, वीडियो कॉल में ये दिखाया जाएगा कोई वकील बोल रहा है या कोई जज साहब बोल रहे हैं या कोई पुलिस से कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है या कोई आईजी बोल रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है। और वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल करता है कि ये हो गया है, वो हो गया है, आपका एक पार्सल था उसमें एनडीपीएस मिला है, ड्रग्स मिली है, आपने ऐसा अपराध किया है, तो आप डर जाते हो, आपका एक पार्सल आने वाला था, हमने उसमें खोला, उसमें ये पैसा मिला है। तो वो उसको बिल्कुल ऐसे डरा के उसका दिमाग ब्लॉक कर देते हैं कि वो कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं रहता। फिर नेक्स्ट जो सामने वाला बंदा है जो कमांड करता है, फिर वो इस हिसाब से डील करने लग जाता है।
0: डर जाता है
1: आप इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ तब जाके आपको हम रिलीज करेंगे, ये बेल बॉन्ड है या और कुछ है, टेक्निकल टर्म में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं।
0: ओके, लेकिन सर ये भी जानना चाहूँगी आपसे, डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो चुका है आज की तारीख में, फरीदाबाद शहर की बात करें तो हर हफ्ते या हर महीने में कहूँगी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए तक अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर दी, अपनी गाड़ियाँ तक सेल कर दी हैं। सो डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो रहा है, फ़ोन पर सरकार के मैसेजेस भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसी कमी हो रही है, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज़।
1: देखिए ऐसा है कि हर चीज़ को हर इंसान तक पहुंचने में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं लेकिन हम इन बातों से अवेयर नहीं होते कि भाई उसके लोग मिसयूज़ कितना कर सकते हैं, आपके साथ उसके मार्फत कितना मतलब धोखा हो सकता है, कितना फाइनेंशियल ठगी हो सकती है और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आप देखते हैं जैसे ही हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो होम मिनिस्ट्री ने एक कॉलर ट्यून बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो हर लेवल पे हम हर स्तर के बच्चे को, बुजुर्ग को, मीडियम एज को, फीमेल्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और जो एक कॉमन एरिया है वहाँ पे जाके भी लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे अभी सूरजकुंड मेला लगा था, हमने बहुत सारे लोगों को जितने वहाँ आए सबको अवेयर किया। हमारा एक फरीदाबाद पुलिस में ट्रैफिक ताऊ करके है
0: जी, जी।
1: वो जो 1930 हमारी हेल्पलाइन है, हमने उसकी पब्लिसिटी की है, सबको हम बता रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इस चीज से दूरी बनाए हुए,
0: उनको नहीं पता है,
1: उनको नहीं पता है, इसलिए वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं। जबकि नेट पे कई सारे पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके अवेयरनेस ले सकते हो, लेकिन बस वही बात है कि जब तक हम खुद से इस चीज को पहल नहीं करेंगे,
0: हाँ,
1: तब तक हम इस चीज के बारे में जागरूक नहीं हो सकते।
0: जी।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ।
1: सर, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा मात्रा में फंस रहे हैं?
2: अभी प्रेजेंट स्टेज में तो इन्वेस्टमेंट का ही चल रहा है। Okay. जो स्टॉक मार्केट के नाम पे
1: थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको डबल प्रॉफिट देंगे।
2: सबसे ज्यादा केस एट प्रेजेंट ही नहीं क्या आ रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट के आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से जब से डिजिटल युग जो है ना और तेजी से बढ़ा है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो ऑनलाइन हम ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो उस चीज की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कोरोना से पहले हार्ड मनी चलती थी, कैश चलता था।
1: बिल्कुल।
2: आजकल हर कोई फोन पे, पेटीएम, हर कोई यूज करता है। हर रेडी वाला, हर आम आदमी, मजदूर, हर कोई यूज करने लग गया। तो अब वो बंदे जो इतना पैसा जो हम डिजिटल युग में यूज कर रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में जो यूज किया जा रहा है, फिर उसमें अपराध होने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग हर जगह स्कैन कर लेते हैं, अमाउंट देने के लिए स्कैनर लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ हमने

0: भी सुना है कि ऐसे स्कैन करके आपका अपना अकाउंट भी खाली हो जाता है अगर कोई स्कैनर ऐसा आ गया तो सामने, क्या ऐसा भी पॉसिबल है?
1: नहीं देखिए, ऐसा है स्कैन में ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या और कुछ नहीं देते। स्कैन करके जैसे जितना अमाउंट आपने फीड किया, जब तक आपके फोन में कोई ऐसा ऐप नहीं है जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख पाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड फोन हैं, हम उसमें जितनी भी एप्स डाउनलोड करते हैं तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमें हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन अलाउ करने है कि नहीं है, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जब आप उसको बिना पढ़े लिखे हर चीज़ से एग्री करोगे तो वो जो ऐप है फिर उन सब चीज़ों का एक्सेस है उसके पास, आपके कॉन्टैक्ट का भी है, आपकी गैलरी का भी है, आपकी गैलरी में पासबुक भी होती है,
0: बिल्कुल,
1: चेक की भी फोटोकॉपी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, उसकी भी फोटो खींच के रख लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो सारी चीजें उनके पास एक्सेस हो गया तो उनके लिए बड़ा इजी है। दूसरी बात ये है कि पासवर्ड हम बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि जो हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े।
0: बिल्कुल,
1: 1 2 3 4 मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरी शादी की डेट ऑफ बर्थ,
0: मतलब कुछ
1: शादी की डेट, जो हमारी कॉमन चीजें हैं, तो उन कॉमन चीजों को अगर आपका फोन एक्सेस होता है इजीली उनको वो सारी चीजें पता लग जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी मार्कशीट है तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी शादी की डेट की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या और कुछ है वो सेलिब्रेशन कर रखा तो वो भी उसमें डेट है, तो उनके लिए बड़ा इजी होता पासवर्ड क्रैक करना।
0: सर एक और टर्म हमने सुनी है, फिशिंग एंड विशिंग, ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आम इंसान को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगी आज आप हमारे श्रोताओं को बताएं, समझाएं कि ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली क्या हैं।
1: देखिए फिशिंग जैसे कि मछली पकड़ी जाती है उसी की सिमिलर टर्म है ये, कांटा फेंका जाता है किसी को फंसाने के लिए,
0: पूरा जाल बिछाया जाता
1: है, जाल बिछाया जाता है कि आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे या कोई ऐसा लुभावना चीज भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करवाएंगे, ये सारा फिशिंग में आता है। और विशिंग होता है कि जब आपको मैसेज मेल एटसेट्रा ना करके आपको कॉल से लोग चीट करने की कोशिश करें, कॉल करेंगे कि भाई आपकी ये पॉलिसी चल रही है या आपको इतने पैसे के इतने कर देंगे, इस तरह की सारे फ्रॉड जो है ना वो विशिंग में आते हैं।
0: ओके, यानी मतलब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और दोनों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को फंसा कर उससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना है।
1: बिल्कुल।
0: बात करते हैं सर सोशल मीडिया पर हो रहे बहुत सारे अपराधों की, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादा युवा दिखते हैं और एक्स पर जो है ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या कोई सीनियर लोग दिखाई देते हैं, या फिर कहें कि थोड़े जो एक अलग जो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं या फिर जर्नलिज्म या इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं एलीट क्लास जो है वो एक्स पर है, लेकिन बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर्स वो सब इंस्टाग्राम पर हैं। और इंस्टाग्राम पर एक सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि शॉपिंग भी हो रही है
1: जी,
0: फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, कुछ आप बात करें कि आपको एक फ़ोन ख़रीदना है तो आपके पास 10 नोटिफिकेशंस और 10 नए एड्स और मैसेजेस आ जाते हैं कि आप यहाँ से फ़ोन ख़रीदें, इसका प्राइस ऐसा है, इस ऐप पे ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, सो इसमें युवा बहुत ज़्यादा फंस जाता है
1: जी,
0: तो कैसे उनको बचाया जाए?
1: देखिए ऐसा है सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप भी सोशल मीडिया ही है, टेलीग्राम, ये सारे वो स्टेज हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को साइबर वर्ल्ड में जानते हैं फिजिकली ना जानते हुए
0: जी जी,
1: तो इसमें फाइनेंशियल और ब्लैकमेलिंग दोनों तरह के ऑफेंस होते हैं। पहले हम फाइनेंशियल पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि भाई एक चीज़ है, कंपनी की चीज़ है और उस पर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 1 रुपये में खरीदें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसके लिए कुछ नहीं आप

0: तो इस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फ्रॉड हैं, लेकिन जो फ्रॉड हैं वो इस तरीके से करते हैं
1: जी।
0: तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से किसी को शेयर ना करें। आपका कार्ड नंबर है, एटीएम कार्ड नंबर या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है, उसका सीवीवी नंबर, अपना पिन नंबर, इस तरह से किसी भी अननोन पेज पे जाके उसको फिल ना करें
1: जी। और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, यंगस्टर्स जो होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स खास तौर पर से, जब डिस्काउंट मिलता है चीज़ों पर, गर्ल्स को बैग्स या कपड़ों पर डिस्काउंट मिल रहा है, बॉयज़ को कुछ गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कुछ ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से
0: जी।
1: और ये जो फिशिंग कह सकते हैं वो यहाँ पर
0: सक्सेसफुल होती है
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन बंदे की एक्सेप्ट की, हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आता है फीमेल्स को। जो लड़कियां हैं वो उन पे इतना यकीन कर बैठती हैं कि कुछ पर्सनल फोटोज या कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे शेयर कर देती हैं, फिर वो उन्हीं फ़ोटो का फ़ायदा उठा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। और उसी के तहत उनके मदर फादर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज करके, और वो फाइनेंशियल फ्रॉड फिर करते हैं। तो किसी भी ऐसे अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें और उससे नजदीकियां ना बढ़ाएं जब तक आप उसको पर्सनल रूप से नहीं जानते
1: जी, बिल्कुल।
0: और अपने अकाउंट को पूरी तरह से पर्सनल रखें, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को एक्सेप्ट ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इन्फ्लुएंसर बनने की जो एक भीड़ लगी हुई है आजकल कि लाखों में फॉलोअर्स होने चाहिए, हमारा जो चाहे तो हमारा चैनल है, चाहे हमारा अकाउंट है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, वो सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपराध जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और अगर आप कोई ऐसा पेज यूज़ भी करते हैं तो उसकी लिमिटेशन जानिए आप, उसमें किसी से इतनी नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, फैमिली की फोटो शेयर करें तो उसमें उनका एक्सेस उन्हीं दोस्तों के पास हो जिनको आप पर्सनली जानते हैं, हर किसी के लिए वो नहीं होने चाहिए। तो उससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर वो व्यक्ति देख सकता है जो आपकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में है
1: जी। बिल्कुल। और यानी वो आप स्टॉक कर सकते हैं इजीली किसी को,
0: एक टर्म है साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में किसी को जब हम पीछा करते हैं तो आईपीसी में अपराध कवर होता है कि किसी फीमेल को ऐसे पीछा नहीं किया जा सकता, उसी तरह से साइबर वर्ल्ड में जब किसी का पीछा करते हैं तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता
1: है। और ये अपराध है,
0: ये अपराध है। इसी तरह से फीमेल को जब कोई साइबर वर्ल्ड में पीछा करता है तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आपने किसी बंदे के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और आप फिर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको इंस्टाग्राम जिस आईडी पे वो दोस्त है आपको उस पर मैसेज करेगा, आपने उस पर ब्लॉक कर दिया, फिर वो आपके फोन पे फोन करेगा, आपने फोन नहीं उठाया, फिर वो आपके व्हाट्सएप मैसेज करेगा, फिर आपने व्हाट्सएप नहीं उठाया या उसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो कंटिन्यू इस तरह से आपको पीछा कर रहा है तो वो एक अपराध है, वो साइबर स्टॉकिंग में कवर होता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं।
1: यानी अगर कोई व्यक्ति, खास तौर पर से मैं लड़कियों को और लेडीज को कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पे बार बार आपको मैसेज करके तंग कर रहा है और फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देती हैं उसको और फिर वो आपके अपने फोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आपको परेशान कर रहा है, तो ये साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है और एक अपराध है जिसकी कंप्लेंट आप इजिली कर सकते हैं
0: जी। इसके अलावा एक और टर्म है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। जो व्यक्ति, जैसे बुली होता है एक दबंग टाइप का व्यक्ति, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको परेशान करता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये दबंग है और ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। इसी तरह से जो ये साइबर स्टॉकिंग है ये मेल के अगेंस्ट भी हो सकती है।
1: यानी पुरुषों को भी ऐसे दबाया जा सकता है
0: जी जी। वो जैसे बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो आपको पर्सनल लोन देती हैं ऑनलाइन, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भारी होता है। वो क्या करते हैं कि आपसे जब आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स उनके पास कॉपी हो जाते हैं और आप उनसे लोन लेते हो ऑनलाइन, फिर आप उनका भर भी देते हो, हाई रेट से भर देते हो, लेकिन फिर वो आपसे और पैसे की डिमांड करते हैं,
1: मतलब वो खत्म ही नहीं होता।
0: हाँ, तो जब आप उनको मना करते हो कि भाई मैं आपके पूरे पैसे दे चुका फिर भी आप क्यों मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो अगर आप नहीं देते हो तो वो उन कॉन्टैक्ट्स पे आपको डिफेम करना शुरू कर देते हैं, आपके सभी रिश्तेदारों में दोस्तों में मैसेज शुरू कर देते हैं कि इसने मुझसे लोन लिया था ये दे नहीं रहा है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो भी एक तरह का अपराध।
1: बिल्कुल, ऐसे केसेस काफी हाईलाइट भी हुए हैं हाल ही में। यानी पुराने जमाने में जो हम फिल्मों में देखा करते थे कि जमींदारी में आपने जो

0: चीज है अपनी गिरवी रख दी है और आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं, वो चीज आजकल साइबर वर्ल्ड में भी होने लगी है। सर, वाईफाई पर काम करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम मॉल में भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, यहाँ तक कि स्टेशन पर और बस स्टॉप पर भी अब वाईफाई की फैसिलिटी शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्शन पूछते हैं। अब वाईफाई पर काम करते हुए बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के बिना शायद मुझे लगता है आधा घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इसमें क्या ध्यान रखें?
1: जैसे जब हम वाईफाई से किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो हमारा फोन उससे कनेक्ट होता है, और फोन से जुड़ी हुई कई बार चीजें जिन पे हमने एक्सेस नहीं लिया हुआ, मतलब लिमिट नहीं लगाई हुई, तो वो उनके पास वो चीजें चली जाती हैं। तो इसलिए हम सिंपल वाईफाई यूज ना करके वीपीएन के थ्रू ही किसी का हम वाईफाई कनेक्ट करें, और कोशिश करें कि इसकी जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी में
0: अपने ही जो डेटा चल रहा है आपका,
1: फोन के डेटा से ही हमें अपना काम करना चाहिए, या हमारे ऑफिस का जो पर्सनल हमारा वाईफाई है या घर का है वही यूज करें, बाहर से यूज ना करें। इमरजेंसी में करना भी पड़ जाता है तो वो वीपीएन के थ्रू करें, सिंपल ब्राउजर से हम उनसे ना जुड़े।
0: ओके, यानी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है
1: जी।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। एक बहुत जरूरी चीज है सर, बच्चे बहुत ज्यादा पेरेंट्स का फोन इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से 10, 12, 14 साल तक के बच्चे जिनको अभी तक फोन का एक्सेस नहीं दिया गया है अलग से मोबाइल फोन्स, उनको साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता। माता पिता का फोन उठाते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में माता पिता को पता भी नहीं होता है, और फिर खेलते रहते हैं और फिर उसके बाद लाखों रुपए हार भी जाते हैं। कैसे वो ये सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा बच्चों को जरूर गाइड कीजिए।
1: देखिए, ऐसा है कि कई गेमिंग साइट ऐसी हैं कि जो कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते उनको उनका जो हीरो है उस गेम में उसको कुछ गैजेट्स चाहिए, उसको कुछ ड्रेस चाहिए, तो वो परचेज की जाती है। तो वो बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को बताए बगैर जो ATM है या उनकी जो क्रेडिट कार्ड है या बैंक की जो डिटेल है वो उसके साथ शेयर कर देते हैं, उससे ये फ्रॉड होते हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों को जब फोन दें तो उनको बताएं कि बेटा इस तरह की कोई चीजें नहीं करनी है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल या कोई और चीज, कोई गैजेट अगर आपको लेना है तो आप हमें बताओ, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही उसमें फिल कर दो। और कोशिश ये करें कि घर के वाईफाई पे या फोन पे चाइल्ड का लॉक लगा के रखें, कि कुछ साइट ऐसी हैं जिन पे बच्चे ना जा पाए।
0: जी, यानी लॉक लगाना बेहद जरूरी है।
1: लॉक लगाना बहुत जरूरी है।
0: प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत सारे पेरेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और बच्चे जो हैं, हमने हाल ही में देखे केसेस, 14-15 साल के बच्चे हैं, लेवल्स खेलते खेलते पैसे जमा कराने लग गए, या फिर कुछ और चीज हो गई वहां पर, उनको उन्होंने ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे टारगेट्स देने शुरू कर दिए। सो ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आजकल तो स्कूलों में भी इसमें काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, हमारी टीम जाती है स्कूलों में, जो खासकर यंगस्टर हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बच्चे हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं इन चीजों के, क्योंकि वो नए नए गैजेट्स चलाना सीखते हैं और घर वालों की नज़र में भी ये होता है, क्योंकि बच्चा ट्यूशन पे भी जाता है, उनको फोन देना भी जरूरी है। आजकल तो आप देखते हैं टैब वैब जितनी ऑनलाइन क्लासेज भी होने लगी, खासकर कोरोना के बाद, जो मैं पहले ही बता चुका आपको, तो इन चीजों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता, देने पड़ेंगे, मजबूरी है आज के टाइम में। लेकिन हमें उनको देने के साथ साथ उनकी जिम्मेवारी भी उनको बतानी है, उनको अवेयर करना है। तो स्कूल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये ड्यूटी निभानी चाहिए। अपने बच्चों को कोई चीज हाथ में देने से पहले, जैसे बाइक देते हैं तो पहले बाइक को चलाना सिखाते हैं, आप 18 साल के हो जाओगे तब बाइक चलाओगे और बाइक के लिए लाइसेंस भी बनवाओगे। तो इसी तरह से अगर कोई फोन दे रहे हैं तो उसके ये बताना चाहिए कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है।
0: जी। सर, अब ये साइबर अपराध किसी के साथ हो जाता है और वो व्यक्ति अचानक से समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया, वो पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज कराने, कई बार वो सहम भी जाता है कि वहाँ जाकर मुझे बताना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ कुछ, वो मेरी रिपोर्ट दर्ज करें ना करें, या फिर घर वालों को बताएंगे तो घबरा जाते हैं लोग, इस वजह से बदनामी से भी कुछ लोग डरते हैं, खासतौर पर से डिजिटल अरेस्ट की जैसे हमने बात करी। सो सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी साइबर क्राइम होता है तो कहाँ कॉल करना है, कैसे कंप्लेंट करनी है?
1: देखिए, अब आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 की एक हेल्पलाइन है जो कि सेंट्रल लेवल से पूरे इंडिया में वर्क करती है। तो सिंपल सा आपको उस पर कॉल करना है, और जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी आरोपी तक हम पहुंच सकते हैं।
0: जी,
1: सपोज करिए अभी आपके साथ कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो आप तुरंत, आपको कुछ नहीं करना, 1930 पे कॉल करें।
0: ओके।
1: वो जो जानकारी मांगते हैं उनको प्रोवाइड कराएं। उससे क्या होता है कि जो पैसा आपके अकाउंट से गया है, होता क्या है कि जैसे पैसा आपके अकाउंट से कहीं सेकंड अकाउंट में जाता है, उससे थर्ड में जाता है, उससे फोर्थ में जाता है।
0: ओके।
1: तो इस प्रोसेस में उनका थोड़ा सा टाइम लगता है।
0: ओके।
1: तो हम जितना जल्दी उस क्राइम को रिपोर्ट करेंगे 1930 पे, 1930 में एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, एक पूरी बैकअप टीम है, वो उस पैसे को वहीं फ्रीज कर देती है, उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है ऑटोमेटिक।
0: जी,
1: तो जैसे ही वो फोन कॉल हुई, वो पैसा फर्स्ट अकाउंट में या सेकंड अकाउंट में है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा,
0: यानी आगे वो बट नहीं पाएगा,
1: बट नहीं पाएगा ना उसकी ट्रांजेक्शन हो पाएगी। उस अकाउंट की जमा करना और निकालना दोनों तरह से वो फ्रीज कर दिया जाता है।
0: ओके।
1: तो वो पैसा आपका फ्रीज हो गया। उसके बाद वो जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है वो आपका जो जुरिडिक्शन है, जहां आप रहते हो, जहां से आपने कॉल की है, उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली।
0: ओके।
1: फिर वो पुलिस स्टेशन उस पर काम करता है, वो पुलिस स्टेशन आपसे संपर्क करेगा फोन करके और फिर आपके पैसे आपको वापस करवाए जाएंगे।
0: ओके।
1: अगर आपने वो कॉल करने में देरी कर दी, 1930 को कॉल करने में देरी कर दी, तो वो उतने ही आगे अकाउंटों में चला जाएगा और हो सकता है कि जो चीटिंग करने वाला है वो पैसे को विड्रॉ भी कर ले।
0: जी जी।
1: फिर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराने का सिर्फ इतना फायदा होगा कि हम आरोपियों को पकड़ तो सकते हैं, कोशिश भी करेंगे कि पैसा आपका रिकवर हो जाए, लेकिन वो अकाउंट में फ्रीज नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक ट्रांजेक्शन के लिए ये भी हो सकता है कि हम 15-20 अकाउंट फ्रीज कर दें, क्योंकि वो मल्टी लेवल में जाता है अकाउंटों में। एक अकाउंट से 10 अकाउंट में चला गया, 10 से फिर 15 में चला गया, तो वो सारे अकाउंट उसी तरह से फ्रीज कर दिए जाते
0: हैं। जी, बहुत सारे युवाओं को सर लालच दिया जाता है कि आप हमारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए और हम आपको उसके बेस पे कमीशन देते रहेंगे। क्या ये अकाउंट्स जो यंगस्टर्स को, कॉलेज और स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, जो 18 साल से बड़े जिनके अपने अकाउंट्स हैं, उनको जो ये लालच दिया जाता है, क्या ये इसी पैसे को ट्रांसफर करने के लिए होता है?
1: बिल्कुल, ये एक नए तरह का मतलब फ्रॉड है। अगर चीटर अपने अकाउंट को यूज करेंगे तो डायरेक्ट लायबिलिटी उन पे है, वो फंस जाएंगे। वो क्या करते हैं कि किसी से रेंट आउट करते हैं उसका अकाउंट, कि भाई आपका अकाउंट भी हम खुलवाएंगे और आपको 10,000 रुपए भी देंगे, आप ये अकाउंट हमें दे दीजिए। फिर उस अकाउंट का एक्सेस वो चीटर संभालते हैं। कल को जो फ्रॉड अमाउंट है या जो चीट मनी है वो उस अकाउंट में आती है, तो वो जिसने वो अकाउंट बेचा है वो भी उतना ही भागीदार है जितना जिसने ये अकाउंट उसमें यूज किया। तो हम उसको भी अरेस्ट करते हैं और उसकी जिंदगी उस 10,000 रुपए के ऊपर खराब हो जाती है। तो सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना अकाउंट खुलवा के किसी अननोन बंदे को सिर्फ थोड़े से लालच में ना बेचें, उससे आपका भी करियर खराब होगा और किसी न किसी को उस अकाउंट के मार्फत चीट किया जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्री में कहीं से पैसे आते हैं ना, तो वो फ्री में नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है।
1: साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्री नहीं है। इवन आपको नेट एक्सेस करने के लिए 1 GB डाटा फ्री दे रहे हैं, तो उसके बदले में भी कुछ न कुछ आपसे ले रहे हैं। तो ध्यान रखें कि साइबर में कुछ भी फ्री नहीं है और ना कुछ फ्री लेने की आदत डालें।
0: जी बिल्कुल, यानी फ्री की जो आदत है ना, उस आदत से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सर, क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स दी जाती हैं आम इंसान को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जिससे कि उनको ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां मिल सकें और वो खुद को और बाकी लोगों को बचा सकें?
1: जी, पोर्टल हैं हमारे बहुत सारे, उन पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर दोस्त करके भी है।
0: जी जी।
1: तो अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, आप उस पे लॉगिन करेंगे तो उस पे बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आप जान के अपने आप को सेव कर सकते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं। गूगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता, आप उससे काम की चीजें भी सर्च कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी विस्तार से थोड़ा सा आप सर हमें साइबर दोस्त के बारे में भी जरूर बताएं और क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं आपकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लोगों तक किस तरीके से जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं?
1: देखिए, एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, तो इस पोर्टल को हम जगह जगह बता भी रहे हैं। आप इस पोर्टल को खोलिए, इस पे अपने आप को रजिस्टर करिए

0: और इस पे जो नवीनतम जितने भी फ्रॉड हैं या जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी आपको उस पे पढ़ने को मिलेंगी
1: जी।
0: और आपको अपना अकाउंट किस तरह से बचाना है, किस तरह से साइबर के प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, उसको खोलिए और उससे अपने आप को अवेयर करिए
1: जी। और एक और पोर्टल है संचार साथी, ये भी बहुत काम का है, इसके बारे में भी हमें जरूर।
0: ये भी इसी तरह का है, मतलब अलग अलग लेवल्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं, आप इन सब पे अपने बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या साइबर वर्ल्ड का जो भी है, उस पे सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। आप एक बार देखिए, गूगल पे जाके इनको सर्च करिए तो ये मिलेंगे आपको, और आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करके इससे जानकारी लेके और अपने आप को अवेयर कर सकते हैं
1: जी। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जिनसे बहुत जगह कुछ जो लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत किया जाता है, या फिर दंगे भड़काए जाते हैं, या फिर लोगों में कुछ पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। उसको रोकें कैसे, उसको समझें कैसे, क्योंकि हम बहुत सारे बुज़ुर्गों के साथ जब कभी बैठते हैं या फिर बच्चों के साथ बैठते हैं तो व्हाट्सएप पर आई हुई जो न्यूज़ होती है ना, उनको लगता है यही एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। किसी ने अगर कोई एक पिक्चर बना के उसमें किसी चैनल का एक फेक लोगो लगा के भेज दिया तो लोगों को लगता है ये सच है
0: जी।
1: इस चीज से कैसे बचे, क्योंकि ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
0: देखिए, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, उनका एक ही मकसद होता है कि पर डे हमें 1.5 GB या 1 GB मिला है, वो शाम तक हमें खत्म करना है
1: जी।
0: इस आदत से बचिए, जो भी चीज आपके पास आती है उन सबको फॉरवर्ड करना वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, बगैर सोचे समझे इस तरह के आचरण से आप बचें। पहले आपके पास जो मैसेज आता है वो पढ़िए ध्यान से, उसकी पुष्टि जब तक आपको नहीं हो जाती उस चीज़ को आगे मत बढ़ाइए। जब भी कहीं दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो एक मैसेज बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया जाता है लोगों को, जो चीज़ एक छोटी सी थी उसको बेवजह सांप्रदायिक रूप देके उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और जो मैसेज हमारे पास आते हैं पहले उसको पढ़ें समझें। अगर आपको पुष्टि हो जाती है ये है, तो भी अगर उससे कोई सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, अपने तक सीमित रखें और सरकार को शांति बनाए रखने में सहयोग करें
1: जी। बिल्कुल,
0: जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार वहां का नेट एक्सेस बंद कर देती है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि लोग जो है ना बेकार की चीजें, बेकार के भ्रामक संदेश एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, ताकि सरकार वहां पे अमन शांति लॉ एंड ऑर्डर दोबारा कायम कर सके। तो एक साइबर उसमें ये जो क्रांति आई है उसमें ये एक हमारा मतलब फेलियर भी है कि हम बगैर चीजों को जाने परखे फॉरवर्ड कर देते हैं और हमारी अमन शांति भाईचारा उस चीज से बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और इसी वजह से कई बार कोई लड़की हुई, कोई मतलब विक्टिम हुई, उसकी जानकारी भी हमें ऐसे नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के साथ।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कई बार होता है कि भाई वो घटना हुई नहीं होती लेकिन वो फॉरवर्ड होने लग जाती है और लड़की की फोटो के साथ होने लग जाती है,
1: वो बहुत खतरनाक होता है।
0: कई बार आप देखते हैं कि फेसबुक पे ऐसे भद्दे कमेंट हो जाते हैं कि भाई किसी लड़की की फोटो लगा के उसके नीचे फोन नंबर लिख दिया जाता है कि आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो ये करेगी वो करेगी, बड़े बुरे कमेंट होते हैं। तो इमेजिन करिए, जिस लड़की का वो फोटो है आपके फॉरवर्ड करने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से उस लड़की के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह का काम ना करिए और साइबर के यूजेज पे जाइए, मिस यूजेज पे मत जाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई अपराध आप देख रहे हैं या हो रहा है तो 1930 पे कॉल करना सबसे सटीक तरीका है इस परेशानी को रोकने के लिए और इस अपराध को कंट्रोल करने के लिए
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी आपने बहुत सरल शब्दों में दी किस तरीके से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक आम इंसान को भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है, जगह जगह पर आपको कॉलर ट्यून्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, पोर्टल्स के जरिए जागरूक कर रही है, अखबारों में हर रोज़ खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जान रहे हैं कि साइबर अपराध कितना बढ़ रहा है और इसे कैसे रोका जाए। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो इसे जल्दी रोका जा सकेगा और आपके आसपास रहने वाले लोग इस परेशानी से बच पाएंगे और उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो इमेज है, जो उनकी मानसिकता है, जो भी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ करना चाह रहे हैं उस पर कहीं कुछ लगाम ना लगे ना, इसलिए आपको जरूर साइबर अपराध को रोकने के लिए खुद को जागरूक करना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। और अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद कर रहे हैं और इसे किसी के साथ भी साझा करना चाहते हैं तो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।

शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां हैं ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
0: जसमीत जी, सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, कहाँ और कैसे का ये है कि थोड़ा इट्स एंड बिट्स है। 2016-17 में मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता। एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंडलॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों है। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें इंडिया काफी नाम आगे है और हीट में भी हम बहुत आगे हैं। तो जो एक्चुअली फील करता था मैं, एंड जब देखा कि लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो देखता कि लोग मीटिंग्स करते हैं इंटेलेक्चुअली साउंड करने के लिए ना, कप ऑफ टीज एंड इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, एनवायरमेंटल समिट्स, वहाँ बातें होती हैं, हाँ बहुत गर्मी है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वर्ड बोलते हैं, तो जस्ट साउंड इंटेलेक्चुअल, बट द मोमेंट द कप ऑफ टी, द डिनर, द लंच इज ओवर, या मे बी वो समिट इज ओवर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का तो होता पता नहीं दिखा मुझे। तो सारा कुछ मिला के मुझे लगा कि शायद मे बी इंटेंशन की बात तो एक तरफ है, मे बी शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किधर करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के पास चले जाता हूँ। एंड बच्चों से जब मैंने बातें की कि भी स्कूल के बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण के बारे में, किसान के बारे में, भी किसान के आम अगर पेड़ लगा दें, तो बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो नीम के पेड़, जामुन के पेड़, तो बच्चे कहते भी नो, ठीक है पेड़, बट नीम जामुन इज नॉट देयर सब्जेक्ट। एंड जब मुझे बताना पड़ा उनको कि डिफॉरेस्टेशन में आम के पेड़ भी कट रहे हैं और आम का भी आने वाले दिनों में आपके प्लेट पे आम कम हो सकता है, देन दे वेर वेरी कंसर्न्ड कि भी मेरे आम के साथ क्यों ऐसा खतरा हो सकता है। तो वहां से पूरा मिशन का एक जन्म हुआ कि किसान राजी था मैंगो पेड़ लगाने के लिए, वो दूसरा कोई पेड़ लगाने के लिए रेडी नहीं था अपनी जमीन पर। पर्यावरण कहता था कि मुझे एक पेड़ ऐसा दे दो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, मैंगो पेड़ इज अ पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करता है। एंड बच्चा कह रहा था कि कुछ मेरे सब्जेक्ट का लाओ तभी तो मैं एंट्री लूँ इस पूरे मिशन में, तो मैंगो इज अगेन द सब्जेक्ट। तो वहां से मैंने बातें लोगों को चालू की कि मुद्दा तो था पर्यावरण और किसान का भला करना, लेकिन सब्जेक्ट मैंने बना दिया गुठली को, एंड लोगों से कहना चालू किया भी मैंगो खाइए, गुठलियां दीजिए, मैं उसका पौधा बनाऊंगा, पौधा बना के मैं किसानों को फ्री में दे दूंगा। अब लोगों ने बोला कि

0: सरदार पागल हो गया भाई, ये गुठलियां मांग रहा है, लोग आम मांगते हैं ये गुठलियां मांग रहा है। तो किसी ने गुठली मैन, किसी ने गुठली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने गर्बेज सिंह, अलग अलग अलग नाम दिए। वो करते करते करते गुठली मैन का सफर कोविड आ गया, कोविड तक लोग गुठलियां उतनी दे नहीं रहे थे। देन फिर सोशल मीडिया का अपना प्लस पॉइंट 2021-22 के करीब स्लोली एंड स्टेडली सोशल मीडिया ने बस इस चीज को बहुत आगे बढ़ा दिया। एंड मोर देन 130 स्कूल्स अभी तक दे हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस। वो मेरे इस पूरे मिशन के साथ हैं, वो मुझे गुटियां भेजते हैं, मुझे भी अपने स्कूल में बुलाते हैं। मिलिट्रीज अ पार्ट, एनसीसी इज अ पार्ट, प्रीटी जिंटा इज अ पार्ट, रवि शास्त्री जी इज अ पार्ट। तो इस तरीके से मेरे पे फिर एक बस डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम ही गुटली मैन है। वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर सत्येंद्र रे फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शूट की गई है, एंड विच हैज वॉन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो एज द बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म। के एक गार्बेज से कैसे एनवायरनमेंट का कुछ काम हो सकता है इन द लैंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सो यहाँ से ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं 16-17 से शुरू हुआ और अभी हम 26 में हैं।
1: वाओ, कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद बहुत ही कम शब्दों में जसमीत जी आपने अपना गुटली मैन का सफर सुनाया। सुनने में सच बताऊं बिल्कुल वैसा ही उन मीटिंग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगा, बट आई एम डैम श्योर कि ये सफर बहुत मुश्किल था। तो ये सफर कैसा था दोस्तों, ये हम जानेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले लेने वाली एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज आप बिंदास भावना के साथ नहीं, आप गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ हैं, जो बहुत ही फेमस भी कहलाते हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया। जसमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, दरअसल मुझे इस प्रोसेस से लेकर जाइए ना, जहां आपके पास बहुत सारे आम की गुठलियां आती है और उसके बाद वो पौधा बनकर किसानों तक जाती है, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस?
1: देखिए, ऐसा है कि ये गुठलियों का सफर जो ऐसा है कि पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसने मुझे गुठलियां नहीं दी है, चाहे दो, चाहे बीस, कोई 20,000, कोई 200, कोई 1,00,000 गुठली मुझे भेजते हैं, वो बाय पार्सल्स भेजते हैं एंड कोई बाय हैंड भी दे जाते हैं। अभी जैसे आज की डेट बात करते करते तंजानिया से किसी ने मुझे आम भेज दिए, बोलते आम खा लीजिएगा, उसकी गुठलियां आप रख लीजिएगा। सो दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड मैं उनको

0: गुठलियां मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनको अंकुरित करने के लिए जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन प्रोसेस में डालता हूँ. एंड ये जर्मिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months. उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग होती है. ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया से मिक्स मेरे को गुठलियां आती हैं. टोटल गुठलियां जो है किसी अलग अलग ब्रीड की हैं. तो जब भी हम किसान को कोई पेड़ देते हैं तो किसान के लिए ब्रीड जानना बहुत जरूरी है. जस्ट रैंडमली मैं कोई पौधा उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंगो का पेड़ 10 से 15 साल लेता बड़ा होने में. एंड इसीलिए इसी रीजन से किसान उसको लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है. तो मैं उसको ग्राफ्टिंग जब कर देता हूँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको हैंडओवर करता हूँ. दैट इज अ लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री विच टेक्स अराउंड 3 इयर्स टू ग्रो. 3 साल में वो फ्रूट देना चालू कर देता है. तो इस तरीके से ये प्रोसेस है. प्रोसेस में काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में उनको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, मल्चिंग के बारे में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की. तो उस आदत से उनको निकालना, उस सॉइल को भी उस पूरी कंडीशन से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है. मतलब जस्ट रैंडमली हमने कल तक उस पैडी फार्मिंग में थे और आज हम पेड़ लगा लेंगे, वो नहीं है. देयर इज अ प्रोसेस.
1: तो भाई देखिए, आज हमने ये प्रोसेस समझ लिया. और एक्चुअली जब जसमीत जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी कि 10-15 साल एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखते थे. इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर के गार्डन में आम के पेड़ होते थे, और जब वो लगाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इन पेड़ के फलों को खाओगे. बट अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में हम वो फल खरीद कर खा रहे हैं. जसमीत जी, वाकई ये सफर और ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सारे किसानों के लिए ये आसान बना दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हैं. दोस्तों, मुझे जसमीत सिंह जी से बहुत बातें करनी है, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. एक छोटा सा प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना. फील गुड, फील लाइफ.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी यानी गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ। भाई देखिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आम खाता है, और आम आदमी भी आम खाता है और खास आदमी भी आम खाता है, और आम तो सबका फेवरेट होता है। सो जसमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और खास तौर पर हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए तो आपको पूरे विश्व में लोग सुनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आपकी ही इस मुहिम को कहीं और भी आगे ले जाया जा सकता है?
1: जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने, और समहाउ पता नहीं आज मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं सुबह ही आज इसके बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये मिशन जो है मैंने डूएबल है, ये मैंने बता दिया भाई, ये डूएबल है, ये हो सकता है। नाउ अगर हमें देखिए, आज की डेट में मोर देन मतलब पता नहीं कितने करोड़ मैंगोज ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड खाए जाते हैं, और उसकी गुटलियां हम रॉट करने के लिए फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना ही ह्यूमिलेशन, इतना ही गिल्ट फील होता है। बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अपने दिमाग में ड्रामा करते हैं, कभी अर्थ डे कभी इन्वायरमेंट डे। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे जो मना रहे, दैट इज अ फार्स, कि एक दिन हम इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं जिसके कारण हम आजू बाजू जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस भरी गर्मियों में कॉर्पोरेट के मेमोज आते हैं कि आप पेड़ लगाइए। अरे पेड़ लगाइए, पेड़ जिंदा रहेगा क्या इतनी गर्मी में? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो गुठलियां हम भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं रॉट करने के लिए, उससे प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस, एंड दैट इज अगेन हीट। मतलब हमने और हीट प्रोड्यूस करने के लिए गुठलियों को रॉट करने के लिए दे दिया। तो उससे बेटर है कि आप या तो उस गुठलियों को आप पौधे बनाइए अपने एंड पे पौधे बनाकर आप किसी को वो दान कर दीजिए। एक दूसरा, आपसे नहीं हो रहा, आप किसी भी क्या बोलते हैं ना, किसी जगह पर जाके इसको रोपण कराइए गुठलियों को, वो भी नहीं हो रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम खाइए, कोई भी ब्रीड का आम खाइए, उसकी पल्प साफ करिए, उसको सुखाइए, 2 से 1 दिन लगता है छाव में धूप में, सुखा के 9831459390 मुझे कॉल करके कनेक्ट करिए और मुझे गुठलियां भेज दीजिए, मैं इनसे पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के किसानों को दे दूंगा। ये तो हो गया मेरा हिस्सा। अब मैं चाहता हूं कि आपके श्रोतागण सुने और इसको थोड़ा सा गौर भी करें कि मुझे ऑल इंडिया में कम से कम 100 से 200 नर्सरीज बनानी है। अगर कोई सोशल माइंड के बंदे जिनकी कुछ जमीनों पे भी थोड़ा सा होल्ड हो कोई, वो जमीनें मुझे सोशली चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिससे कि हम जैसे पंजाब में पंजाब की गुठलियां वहीं इकट्ठी करके वहीं पे लोकल किसानों को गाइड करके उनकी टीम बनाकर उनको सारा कुछ नेचुरल फार्मिंग के बताकर हम ये हैंडओवर कर दें उनको, उसी तरीके से गुजरात, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से अलग अलग जगहें। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये बहुत जल्दी रेप्लीकेट हो जाएगा। और मुझे रेप्लीकेट क्यों करना है मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में अगर हमने इंडिया को ही 2000 करोड़ पेड़ नहीं दिए तो इंडिया का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ने के पूरे आसार हैं, और 3 से 5% जीडीपी डाउन होने के पूरे आसार हैं। अब कोई बोले कि एनवायरमेंट और जीडीपी का क्या लेना देना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आज की डेट में क्लाइमेट एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट बन चुका है, कभी भी हीट वेव, कभी भी बाढ़, कभी भी कुछ, तो उससे क्रॉप साइकिल्स पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है। अचानक कहीं पे भी पानी आ जाने से डिस्टर्बेंस

0: जाएगी। अब गरीब जो है सबसे पहले असर करेगा, क्योंकि वो गांव में है, उसकी क्रॉप खराब हो गई। शहर वाला गरीब भी सबसे पहले असर में आ जाएगा। मिडिल क्लास का बंदा इन्फ्लेशन की मार में आएगा। गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ कैलमिटीज, सडन फोर्स मेजर कॉज जो अचानक से फ्लड आ गया उसको, तो उस जो फंड उनका रीएलोकेट हुआ जो सही जगह पर जाना था, उसके कारण जो जीडीपी पे असर आना है आने वाले दिनों पे, वो एक असर है। एंड द रिच क्लास जो बोलता है सानू की मैनू की, मैं तो एसी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है गर्म है तो गर्म है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ही तो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में, आप ही तो इंडस्ट्रियस्ट हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वर्क फोर्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, अगर साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना शूट अप करेगा, तो आज प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, और प्रोडक्टिविटी डाउन मतलब आपकी प्रॉफिट डाउन, आपकी प्रॉफिट डाउन मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क। सो थिंग इज, अगर कोई बोलता है एनवायरमेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, एवरी क्लास एवरी स्टार्टअप हैज अ कनेक्शन विथ एनवायरमेंट, एंड इसको रेप्लीकेट होना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए गुटली ऑल अक्रॉस इंडिया में पाई जाती है, और हमें ऑल अक्रॉस इंडिया में एक पेड़ चाहिए, नॉट इन दी पॉकेट्स, मुझे किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपका ऑडियंस के थ्रू ही मैं कहूँ कि मेरे को अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं इधर उधर भी कहते आया हूँ, मैं भारत सरकार को मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडियन बोर्ड्स क्लास 10 में हम अगर 10 पेड़ के लिए क्लास 10 में 3 से 5 नंबर दे दे बच्चों को, तो माँ बाप भी मिलके ये पेड़ बढ़ाएंगे। कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। नहीं मतलब अगर किसी ने मजाक में बोला तो तुम संभालोगे क्या मिनिस्ट्री, अगर ये सेवा मुझे करनी पड़ी तो ये सेवा करने को भी मैं तैयार हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। तो वहां से क्या है कि पूरे ऑल इंडिया अक्रॉस इंडिया में ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट पूरा क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा, हम कहते हैं ना, इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया हीटेड है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। दिल्ली का पोल्यूशन हटाने से इंडिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, या चेन्नई की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इंडिया है, तो इंडिया को एज अ होल देखना पड़ेगा। सो ये आपने जैसे कहा, ये रेप्लीकेबल पूरा है अपने अपने लेवल पे, बंदा माइक्रो लेवल पे 4 गुटलियां 5 गुटलियां, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझे दे दे, एंड स्कूल्स की गुटलियां जो है 20,000 25,000 50,000 लाख वो मुझे भेज दे। So this is the way we have to do it.
1: मैं देखो, मैंने बचपन में ना एक कहावत सुनी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आज मुझे उन गुठलियों के दाम नजर आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो ये गुठलियाँ वाकई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए पहला कदम आप सबको उठाना पड़ेगा हमारे साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ। जसमीत जी, अब एक बड़ा दिल को लगता हुआ सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, सुन तो लिया, समझ तो लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। मैं समझ पाती हूँ जब हम कोई काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे रियल टाइम चैलेंजेस बताइए कि क्या आते हैं।
1: रियल टाइम चैलेंजेस देखिए कि सबसे पहले तो जो आया था मेरे साथ के भी मेरे पे लोगों ने बिलीव ही नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीधा ही मुझे ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक मेरे दोस्त यार मुझे मतलब कहीं पहले गुटली गुटली होगा, गुटली पता नहीं, चलो चलो चलो कमरे छोड़ के चले जाते, बात ही नहीं सुनते गुटलियां देने में, क्योंकि गुटलियां उनको हैंड ओवर करनी है। आम खा लिया, गुटलियां तो फेंकने की आदत है, उस आदत से निकलना है, मुझे गुटलियां देनी है। तो ये आदत, ये पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये दिक्कत आ रही थी। करते करते कोविड तक तो मेरे हाथ में लोग गुटली देते थे, समझ लीजिए 20-25-50, वो भी दया करके कि अच्छा तू मांग रहा है रख ले। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मैंगो गुटली के एक जेनेटिक इशू है, आप अगर 1000 गुटली मुझे देंगे तो 10-15% ही गुटली अंकुरित होगी। दिस इज वन जेनेटिक इशू ऑफ मैंगो। वन सेकेंड, हमें आदत पड़ गई है अप्रैल के महीने में मैंगो खाने की। उस टाइम अभी भी आप देखिएगा कई पेड़ों में जो मैंगो है वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में आपको एकदम येलो ब्यूटीफुल मैंगो मिलेगा। ये सारा कार्बाइड का आर्टिफिशियल रैपन मैंगो है। ये आर्टिफिशियल मैंगो क्या कर रहा है, पल्प को आपके खाने लायक बना दे रहा है, लेकिन जो गुटली है वो जर्मिनेशन लायक तो बनी नहीं अभी तक, अभी भी वो कच्ची है, तो कच्ची गुटली जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो लोगों को इतना टेक्निकली तो मालूम नहीं, लोग बस बाजार में जाते हैं आम खा लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि प्लीज कार्बाइड का मैंगो मत खाइए। कार्बाइड को हटाने के लिए कितना धोना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, और लेकिन हो क्या क्या सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको कैंसर के कोई रोग हो सकते हैं, आपको पेट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड ईटिंग मैंगो आउट ऑफ द साइकिल। आप थोड़ा सा वक्त देखें, जैसे अब जो टाइम आ रहा है ये टाइम मतलब मैंगो के पकने का टाइम है, तो यहाँ से मैंगो जो मिलेगा वो आर्टिफिशियल राइपन नहीं है, लेकिन अभी तक जो आप खा चुके हैं आपके पेट में, और आप कई बंदा बोलता भी होगा भाई मैंने मैंगो खाया मेरा पेट क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बाइड जो है उसके पेट को खराब कर रहा है। अब रह गया कि ये सारा कनेक्ट करना, इतनी गुटली कट्टी कहाँ से करूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो स्कूल्स को बोलता, स्कूल्स ने भी नहीं सुना। करते करते एक दिन अपनी बिटिया को मैंने बोला कि मेरी एक रील बनाओ, एंड रील बस मैंने फ्लोट की तो वो कई बंदे उसमें से जुड़ने लगे, फोन आना चालू हुआ। वहां से करते करते करते थोड़ा सा सूथिंग आउट हुआ है। अभी तक मुझे 21 लाख गुटलियां मिली हैं। मेरा टारगेट समझ लीजिए 200 करोड़ गुटलियां का है, टारगेट मेरा 20 करोड़ पेड़ लगाने का है। अभी तक मैंने 8 लाख पेड़ जो है वितरण किए हैं अंडर ट्री का लंगर। मैं ट्री के लंगर लगाता हूं जिसमें कि मैं उसमें वितरण कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इच्छा है कि मैं 20 करोड़ पेड़ लगाऊं, क्योंकि भारत को चाहिए 2000 करोड़ पेड़, लेकिन 2000 करोड़ का टारगेट लेना इज इम्प्रैक्टिकल, बिना मतलब की बेवकूफ वाली बातें करनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उसको पहले के एक स्टेप को लेके करें, एंड अगर ये रेप्लिकेट हो गया, मेरी बात किसी ने सही बंदे ने सुन ली, या मेरे को एक कोई सही पावरफुल पोजिशन मिल गई, तो उसको आराम से मैं उसको रेप्लिकेट कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। और स्कूल में अगर ये चालू हो गया तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो दिक्कतें नाम की थी, दिक्कतें जैसे मेरी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि भाई क्या आम के घर घर में गुटली गुटली पूरी बदबू बहल गई, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, दोस्तों यारों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विजन मेरे अंदर क्लियर थी। तो उससे यू नो जिन्होंने 2-4 बंदे जो साथ चले थे स्टार्टिंग में वो छोड़ गए, बोलते नहीं नहीं ये मतलब पता नहीं कचरा उठाता है, कहाँ कहाँ कचरा क्या करेगा। तो सारा कुछ मिला के दोज वर हिकअप्स, लेकिन मैं उन हिकअप्स को ना ज्यादा आप दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहता। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, अमृतसर से वो कैलकटा आई, मेरे फादर 30 थे, शी वॉज जस्ट क्लास 8 पास, सिर्फ गुरमुखी जानती थी। कैलकटा आके उन्होंने हिंदी बंगला इंग्लिश सीखी, क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, एक स्कूल की स्थापना की। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। सो मैं उस माँ का बेटा हूँ, एंड देन शी डाइड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन डिजीज बाय द एज ऑफ 54। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने क्या ना कोई लिमिट देखी नहीं, जब मुझे लगता था कि और नहीं पढ़ेगी और पढ़ूंगी, जब मुझे लगता था कि और कुछ नहीं करूंगी मैं स्कूल की स्थापना करूंगी। तो एक लिमिटलेस सा पन मेरे अंदर है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, ठीक है, सी कोई भी मिशन में अगर चैलेंज नहीं रहेगा पागलपंथ ही नहीं रहेगी तो किस बात का मिशन है वो? अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है, हिकअप्स ही नहीं है, तो वो मिशन मतलब कैसे बनेगा? वो तो फिर कोई बिजनेस है, वो तो कोई धंधा है, उसमें भी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से जसमीत जी आपने समझाया है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने का जो कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन है वो भी नहीं आएगा। एंड आज जसमीत जी एक सफर लेकर चल रहे हैं जहां ये कह रहे हैं भाई मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है 2,000 करोड़ पेड़ों का, लेकिन भाई अगर रियल टाइम की हम बात करें तो हम इसे सच कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है आप और मैं, हम सब एक साथ आ जाएं और हम अपना अपना शेयर ले लें तो शायद हम इस पूरी सच्चाई को एक रियल सच बना सकते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बस करिएगा सिर्फ इस गाने का इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रहता 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ, जो कि गुटली मैन ऑफ इंडिया हैं। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे बताइए कि कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो आपके साथ, चाहे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपके इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
1: देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि खुले हाथ से आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप मेरी पोस्ट को आगे बढ़ाइए जितनी दूर तक। आप अगर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज देख रहे हैं जितनी दूर तक भेज दीजिए। जैसे आप मीडिया जगत में है तो मैं सारे मीडिया जगत को कहूंगा कि हर मीडिया जगत अगर हर लैंग्वेज में इसको मतलब रिले करे, आगे एयर करे, तो बहुत जल्दी ये बात आएंगी। एंड लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले वो गुटलियां मुझे दे सकते हैं। उनको और भी आगे बढ़ना है तो मैंने जैसे बताया, उनके पास अगर कोई लैंड है, कोई अगर उनके पास सोशल बैंड ऑफ माइंड है, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक नर्सरी बनाना, नर्सरी कन्वर्ट करके मैं उस इलाके को कवर करना चाहूंगा। उसके बाद अगर कोई स्कूल ओनर सुन रहा है अगर, तो मैं चाहूंगा स्कूल ओनर को कि मुझे अपने स्कूल में मुझे बुलाइए, मैं इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं और गुटली मिशन के साथ बनिए। अगर मिलिट्री है, एनसीसी कैडेट्स हैं, गवर्नमेंटल डिप्लोमेट्स हैं, तो अपनी अपनी पावर्स के साथ हर बंदा जुड़ सकता है। मैं तो किसी से कह रहा हूं कि जो कचरा आप फेंक दे रहे हो वो कचरा मुझे दे दो, बस साफ सुथरा करके गुटली को, अगर ब्लैक हो गई तो मुझे मत भेजिए सफेद करके, क्योंकि ब्लैक गुटली फंगस लग गई, सफेद गुटली जो है वो जर्मिनेट होगी। तो मेरे साथ जुड़ना इज अ वेरी इजी टास्क। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सफर नहीं है। मेरा नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9831459390। मुझे कॉल करिए एंड बस हम जुड़ जाए, एक सेकंड की तो बात है।
0: वाकई जसमीत जी, आपके साथ अब हमारे सभी लिसनर्स जुड़ गए हैं और आपके इस इनिशिएटिव में वो हाथ मिलाने वाले हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी को?
1: बस जाते जाते मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि एलपीजी की सिलेंडर्स की लाइनें और

0: उसकी सिस्टम्स, उसकी तकलीफें तो शायद हम थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं, और कब खत्म होगी मैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा है कि ये जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए दो बातें बोलूंगा। किसी को लग रहा है ना कि अगर इन्फ्लेशन जो होता है वो मॉनेटरी होता है, तो मैं आने वाले दिन में बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वायरमेंटल भी है। जैसे कि हमारे कानों में जाता होगा कि 150 रुपए का सेट डॉलर हो जाएगा, तो रुपए पे प्रेशर कौन देगा? रुपए पे प्रेशर जिसने जो देना देगा, इन्वायरमेंट भी देगा। इन्वायरमेंट के अपने प्रेशर्स उस पे आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आज अगर हम स्पेकुलेटिव क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा दुविधा देने वाला है। वन सेकेंड, एलपीजी के साथ ही वापस बोलता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर पे हमने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं ये बात उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि एलपीजी से तो 1000 आदमी का खाना बन सकता है, खिचड़ी बन जाएगी, एलपीजी का काम हो गया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है एक हाथ में है, माँ बाबू जी, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, उस टाइम में वो सेल्फिश पना सॉल्व किसके साथ करेंगे? पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? जिसके पास इसका आंसर हो मुझे जरूर कॉल करें 9831459390 पे कि हाँ इस सेल्फिश पने को ना मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बस ये मेरा एक लास्ट लोगों को कहना है, नहीं तो खाइए गुठलियां मुझे भेज दीजिए।
1: भाई कितना आसान है, आई मीन एज सिंपल एज दैट, आम खाइए, गुटलियां गुटली मैन को भेज दीजिए और वो आपकी गुटलियों को पेड़ बना के वापस आप ही के देश में, आप ही के पर्यावरण में भेज रहे हैं, फिर और आम खाइए। सो जरूरी ये है कि आप इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली फायदा है। तहे दिल से धन्यवाद जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि अब हम आपके मिशन का एक हिस्सा है। जरूर जरूर जरूर।
0: देखिए ये पूरा पर्यावरण का काम मैं कर रहा हूँ किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि किसान के बारे में मुझे क्यों सोचना है, मैं तो सिटी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूँ कि इंडिया एज अ कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ जनता जो है वो रूरल इकोनॉमी पे बिलोंग करती है, एंड हमारे शहर में जो वेजिटेबल और फ्रूट आप खा रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ विलेज नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो दिमाग में ये बंदे बात रखें कि किसान का कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में।
1: वाकई दोस्तों, अगर हम आज अपनी प्लेट में खाना देख रहे हैं और जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप हेल्दी कहते हैं ना, अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो आ कहाँ से रहा है? तो अगर इस खाने को आप खाना चाहते हैं, यू वांट टू लिव हैप्पीली, तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन्स की नहीं लेकिन किसानों की जरूरत होगी। तो ये अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच जसमीत जी, हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू
1: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानवरचना 107.8 FM का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
2: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
1: जी,
2: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में, अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
1: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है, लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। छुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनके सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीशन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीशन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को, उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई। प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। हाँ, आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ के रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना। तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वलिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूं वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
0: वाकई,
1: तो जहां पर हमें अगर ऐसा ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वालिटी तो है ही, अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल तो सैलरी भी डिफरेंट
0: जी,
1: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं, अपने परिवार में हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
0: वाकई,
1: है ना।
0: सो भाई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब

0: जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं, लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: Yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिएं, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं, इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना, तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ, मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना, कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें, सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से, और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो अनवरेष्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ, आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम बात करते हैं जो आज भी ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चल रहे हैं और ढेर सारा काम आज भी हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं प्रीता सक्सेना जी। प्रीता सक्सेना जी प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास की। तो ये खास एनजीओ है जो बहुत सारे नेकी के काम कर रहा है और प्रीता जी इस राह पर चल चुकी हैं। तो आज इनसे करेंगे बात, करेंगे मुलाकात। इसके लिए करेंगे स्वागत प्रीता जी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीता जी।
3: थैंक यू भावना जी। सभी प्यारे मित्रों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अध्यक्ष हूँ उपज एक प्रयास एनजीओ की।
2: जी प्रीता जी, पहला सवाल, उपज एक प्रयास एक खास एनजीओ है, बहुत निरंतर मेहनत कर रहा है, एक लंबे समय से काम कर रहा है, मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है और किस प्रकार से आपको ख्याल आया कि उपज एक प्रयास एक एनजीओ चलाया जाए।
3: पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं अकेली ही थी, जानी है मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
2: जी
3: तो मैंने ये शुरुआत की थी 2016 में।
2: जी
3: बट रजिस्ट्रेशन जो हमारा 2020 में हुआ
2: जी
3: किन्हीं कारणों की वजह से, तो पहले तो हमारा ये था कि काफी हम लोग कुछ लोग थे, लोग जुड़ना नहीं चाहते थे कि क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे निस्वार्थ लोग भी होते हैं जो जुड़ जाते हैं
2: जी
3: साथ में। और वो फिर हुआ ऐसे था कि मैं एक बार अपने बेटे से हरिद्वार मिलने जा रही थी दिल्ली से, तो मुझे रास्ते में एक बच्ची दिखाई थी जहाँ मैं चाय पीने रुकी, उसको काफी ब्लड लॉस हो रहा था और मतलब जो मंथली प्रॉब्लम, और उसको लोग देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। बच्ची थी, उसे खाने का था बस, उसे कि मुझे खाना दे दे कोई। तो मुझे देखा, मेरे पास गाड़ी में कुछ भी नहीं था, एक पुराना कुर्ता जिससे गाड़ी साफ करते हैं वो पड़ा था, तो मैंने पहले तो उसको वो पहनाया और उसके बाद उसको थोड़ा सा खाने वाने का दिया। उस दिन से मेरे दिमाग में चीज टाइप थी कि नहीं, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए
2: जी।
3: तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया अपने सर्कल में, तो तब हमने इस एनजीओ के बारे में सोचा कि हम इसको बड़े रूप में करते हैं कि कुछ हम जैसे लोग इसमें जुड़े हमारे साथ।
2: देखिए भाई, हर एनजीओ के साथ में अगर बात करूं तो उसकी कहानी हमेशा एक किसी इंसिडेंट से होती है। कोई एक ऐसी चीज आपके साथ होगी जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएगी, कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर करेगी कि आज भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर मानवता है, तो हम ये हमारी वो मानवता जगा कर चली जाएगी। एक छोटी सी बच्ची एक ढाबे पर शायद अपनी भूख मिटाने के लिए खाना मांग रही थी, लेकिन उस भूख ने और या फिर उन छोटी सी प्यारी सी आंखों ने प्रीता जी के दिल को छू लिया और उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि उपज एक प्रयास एक ऐसी पहल होगी जिसमें शायद कोई भी ऐसी बच्ची सड़क पर भूखी या फिर सड़क पर खाना नहीं मांगेगी। ऐसी कोई भी बच्ची जो इस महामारी के दौर से गुजर रही होगी वो ऐसी कंडीशन पर सड़क पर नहीं होगी जहां उसे किसी भी प्रकार की कोई सहायता ना मिले। और उपज एक प्रयास की शुरुआत वहां से हुई, 2016 से लेकर 2020 और आज पूरे 10 साल बाद अगर आप देखें तो ये सफर बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। करेंगे इसके बारे में भी बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम प्रीता सक्सेना जी के साथ चल रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास एनजीओ की। प्रीता जी, आप मुझे बताइए, जब आप बहुत सारे दोस्त मिले, परिवार जुड़ा, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जुड़े और सबने सोचा कि अब इस कारवां को आगे लेकर जाया जाए, तो किस प्रकार के नेकी के काम कर रहे हैं आप उपज एक प्रयास में?
1: मैम, हमने शुरू तो गरीब बच्चियों से ही किया था, जो स्कूल तो जा सकती है लेकिन उनको फिर कोई आगे पढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा बुराड़ी में जगह है हमारे पास, उसमें हमने इवनिंग क्लासेस रखी हुई हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे पढ़ने नहीं आना चाहते तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनको पेंसिल्स वगैरह देते हैं, मंथली एक कॉम्पिटिशन वगैरह टाइप कराते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने, पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह, उसमें भी

0: जो है हम लोग सामूहिक विवाह भी कन्याओं का कराते हैं
1: जी।
0: तो जो भी गरीब बच्चे हैं उनका 11-21 जितने भी जोड़े होते हैं उनका निःशुल्क हम लोग विवाह करवाते हैं साल में 2 बार। और एक हम भागवत कथा रखवाते हैं जिससे कि हर लोग बड़े बड़े जगह कराते हैं तो छोटा जो वर्ग होता है वो जाने में झिझकता है, शर्माता है
1: जी।
0: उस 7 दिनों में हम उस कथा के बाद 1 घंटे की क्लास रखते हैं जिसमें हम उन्हें स्वच्छता अभियान और भीख ना मांगे कमाने से कितना आत्मसम्मान मिलता है आप बिल्कुल, और वो सब चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाते हैं, सफाई कैसे रखें और समय समय पर खाना कैसे है, मतलब उन चीजों पे हम उनको 1 घंटे की क्लास देते हैं। तो वो इसलिए आते हैं कि उसके बाद जो भंडारा होता है थोड़ा सा तो उनका लालच होता है, थोड़ी वो झांकियां वाकियां देखते हैं, उनसे वो कोई प्रोत्साहित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम कर रहे हैं।
1: देखिए भाई, जीवन में जब आप अपने जीवन का निर्वाह इस प्रकार के स्ट्रगल से करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी चीजों पर से विश्वास उठ चुका होता है। मान लीजिए कि आप गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि न जाने पढ़ाई कितना आपका भविष्य बदल देगी उस समय। और जो माइंडसेट होता है वो ये होता है, ये 2 हाथ हैं और इन 2 हाथों से आप जो कमा सकते हैं या मांग सकते हैं या जहां कहीं से कुछ प्रोक्योर कर सकते हैं उससे हमारा जीवन यापन हो। लेकिन अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए, एक नई राह, एक ऐसा पाथ जिससे कि उनका पूरा भविष्य सुधर जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रीता जी, ऐसे ही स्लम्स के बच्चे, ऐसे ही डाउनट्रोडन बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है, ऐसी बच्चियों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके माता पिता के पास इस प्रकार के पैसे नहीं है, उन्हें एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही खूबसूरत विवाह का मौका दे रही है, जहां पर कि वो एक शादी भी कर रही है लेकिन वो वैसी ही शादी है जैसे शायद आम जन की होती है और एक यादगार मोमेंट बन सकती है। सो इस प्रकार के बहुत सारे नेकी के काम किए जाते हैं उपज एक प्रयास में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रीता जी से करेंगे। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, अब अगला अहम सवाल, विकलांगों के लिए आप ढेर सारा काम करती हैं और परेशानी ये है कि विकलांगों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्हें कैसे प्रोत्साहित करते हैं आप?
1: मैम, विकलांगों को और कोढ़ियों को, दो जनों को ऐसा है कि जिनको आप मोटिवेट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है
0: जी,
1: तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा नुक्कड़ नाटक कहानियां उनको सुनाना मोटिवेशन की, और उनके शौक, जैसे छोटा सा ही होता है कि किसी से आप ये पूछ लीजिए कि आपको पसंद क्या है खाने में, उसके साथ बैठ के जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि लोग अक्सर पूरी हलवा तो लोग खिलाते हैं, भंडारा करते हैं ये, मगर कभी शौक के लिए उनको गोलगप्पे नहीं खिलाते या रसमलाई नहीं खिलाते
0: जी।
1: तो हम लोग उनके शौक और ऐसी चीजें उनके साथ करते हैं क्रिएटिव कि उनको लगता है कि हाँ, हमारी कोई मन की बात सुनने वाला है। आजकल इवन दैट कि विकलांग या कोड़ियों की बात तो छोड़िए, आप आम घरों में पेरेंट्स के लिए बच्चों को टाइम नहीं होता
0: जी,
1: तो वहाँ उन बेचारों की कौन सुनेगा
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़े से जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं, थोड़ा सा हम जब वो जुड़ जाते हैं हमसे लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं कि कुछ कॉम्पिटिशन थोड़ा सा उनमें करा दें। अब जैसे कोड़ी होंगे वो किसी के सामने भी अपनी बिरादरी में तो रहेंगे, लेकिन किसी और के साथ खिलने जुलने में उनको हेजिटेशन होती है
0: जी,
1: तो उनके साथ खुलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है बनिस्पत की अंधे व्यक्तियों के साथ या जो हम अंधी बच्चियाँ रखते हैं उनके साथ खुलने में फिर भी टाइम होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें फिर भी समाज, हम पढ़ लिख लेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इन जो सबसे निम्न वर्ग कोड़ियों का आता है उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता
0: जी।
1: यहाँ तक कि उनको कोई छूना या बैठ के खाना, जबकि अब की ये ऐसी हो गई कि छूती बीमारी नहीं रही है, इसका इलाज बहुत अच्छा हो गया है, बट फिर भी लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं तो उनको इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि वो फिर हमसे खुल जाते हैं। जैसे दिलशाद गार्डन में भी एक कोड़ियों का मंदिर बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पे लोग खाना बांटने तो जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे कोड़ियों को खिलाने से ही होगा, मगर उनके मन की बात सुनने या कोई उनसे बैठकर बात नहीं करना चाहता कि आपको किसी दवाई की जरूरत है या कुछ है, तो उनको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है अपने साथ, लेकिन जब वो हमारे साथ खुल जाते हैं तो वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उनको समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है कि आप भीख ना मांगे, आप शिक्षित हो जो आपके नई परिवार में बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाई दें।
0: वाकई प्रीता जी, एक बड़ा खूबसूरत सा काम कर रही हैं, जहाँ पर कि आप देखिए माइंडसेट बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़ी परेशानी है। आप एक तरीके की विचारधारा की तरफ चलते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा जीवन तो ऐसे ही यापन हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से देखें तो इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है आपका अपना पैरों पे खड़े होने का, और वो कॉम्पोनेंट कई बार गरीबी के नीचे की जो रेखा है इन सभी लोगों के साथ मिस हो जाता है। और बहुत सारे लोग आप देखिए जीवन में, क्योंकि वो विकलांग हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है या फिर गरीबी एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये अपने आप में एक अभिशाप है, इससे वो बच ही नहीं पाते हैं या फिर उससे उबर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता लग जाए कि शिक्षा की रोशनी से इस अंधकार को भी दूर किया जा सकता है, तो बहुत आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही नेकी का काम कर रही हैं प्रीता सक्सेना जी उपज एक प्रयास एनजीओ के साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम प्रीता सक्सेना जी के साथ चल रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, एजुकेशन तो चलिए आपने कहा कि बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसके अलावा स्वावलंबी बनाने के लिए किस प्रकार से आप इन बच्चियों की, महिलाओं की और इन सभी विकलांगों की, कोड़ियों की, रोगियों की मदद करती हैं?
1: मैम, हमने इसके लिए कुछ थोड़े से जैसे थैला बनाना है, कुछ गरीब महिलाओं को वो देते हैं, वो घर से बनाए, और कुछ जो थोड़ी सी शिक्षित है वो हमारी एनजीओ में पढ़ाती है, उनको भी हम थोड़ा सा उसी तरह से पे करते हैं। और जो लड़के हैं जो अनएजुकेटेड है और टेंथ के बाद उनको काम नहीं मिलता, उनको सर्वे वगैरह के काम थोड़े से प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। हमारी कोशिश रहती है कि जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं आम परिवारों के, उनको भी थोड़ा सा सहयोग किया जाए, तो उसमें भी हमारा प्रयास रहता है। लेकिन बहुत कंपनीज और वो बड़ा, मतलब उसके लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, मतलब समाज आज भी जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है
0: जी।
1: तो और एक संस्था चलाना बहुत बहुत ज्यादा टफ काम है, जिससे कि हमें कोई सरकारी वो नहीं मिलती, ग्रांट नहीं मिलती ना, हम लेते हैं, हम जितने भी मेंबर हैं हम सब अपने उससे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोविड में भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी किया। और आम दिनों में भी अभी जैसे किसी को बीपी शुगर हो जाता है या ये सब मशीनें प्रोवाइड कराना, व्हील चेयर, जो आम फैमिली भी है, गरीब तो छोड़िए, जो आम फैमिली भी है वो कई बार बच्चे अपने माँ को चश्मा तक बनाने के लिए उनके पास नहीं होता, इतनी इनकम नहीं है डेली बेसिस पे काम करने, तो हमें स्ट्रगल काफी करना पड़ता है कि कहाँ से फंडिंग आए। और हमारे पास जो कोई ऐसा नेता या अभिनेता हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल है, हमारी कोशिश रहती है कि फिर भी हम उन्हें काम दें
0: जी,
1: पर कहीं ना कहीं थोड़े से असफल हो जाते हैं उस पे आपके, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपके, क्योंकि थोड़ा सा हमें उसकी सपोर्ट चाहिए होती है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए हम ज्यादा कुछ कर पाए, वहाँ पे हम थोड़े से असफल है, अभी नहीं कर पा रहे।
0: वाकई, तो भाई चुनौतियों की हम बात करेंगे, बस उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मचाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो कि अध्यक्ष हैं उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, चुनौतियों की बात करते हैं। आपने एक चुनौती की बात की कि फंड्स बहुत बड़ी चुनौती है। भाई, जब आप नेकी का काम करने जाते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि चलिए हमारी झोली में जितना कुछ है हम उसे दे आएंगे, फिर बहुत सारी झोलियां इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा करते हैं। आपने खुद ही कहा कि मैं चली थी अकेली जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन अब कारवां की झोली भी खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 10 साल का लंबा समय आ गया है। तो मुझे बताइए कि और किस प्रकार की चुनौतियां हैं। चलिए, फंड्स आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके अलावा और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आप करती हैं?
1: मैम, सबसे बड़ी मेडिकल जो इक्विपमेंट देने होते हैं या जो अंधे बच्चे हैं उनकी ब्रेल शीट और सब चीजों के लिए जो पढ़ाई करा रहे हैं
0: जी,
1: उनकी प्रॉब्लम आती है कई बार। उनको जो ब्लाइंड है उन बच्चों को इंस्टीट्यूट तक ले जाना लाना, गाड़ी की दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे जहाँ रख रहे हैं वहाँ तो वो इतने परफेक्ट है कि उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: बट जहाँ तक उन्हें ले जाना होता है। तो इसके लिए मैं नाम नहीं लूंगी, एक नेताजी से मिली थी मैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से शुरू में जब मुझे कोई नहीं जानता था तो खातिरदारी की, चाय वाय पिलाई। 2 दिन बाद उनका फोन आया, मैम हम आपकी NGO के लिए अगर कुछ कराएंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगी? तो मैंने कहा सर समाज सेवा कर रहे हैं, जब मैं कोई उम्मीद नहीं रखती समाज से कि कुछ देना ही है तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा ही गलत मेरे आगे प्रपोजल रखा जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं किया। उसके कारण मेरे जो एक NGO के सदस्य थे वो कहने लगे मैम अगर आप प्योर सोना रहेंगी ना तो आपके गहने नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ी मिलावट तो करनी पड़ेगी। वहां मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया
0: जी,
1: और आज भी नहीं करती हूँ। तो जिस हाल में है संस्था थोड़ा ही कर पा रही हूँ, लेकिन करती हूँ। तो समस्याएं बहुत हैं क्योंकि मानसिकता जो लोगों की है, पहली तो यह है कि NGO के पास तो बहुत कुछ होता है, और दूसरी मानसिकता ये आ जाती है कि गिव एंड टेक वाली, कि अगर कोई बड़ा सदस्य आज तक हमारी संस्था से इसलिए कोई चेयरपर्सन या कोई नहीं जुड़ता है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
0: वाकई
1: तो वहाँ एक समस्या है। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज में हमें दिक्कत आती है, जैसे कुछ पीछे 2 कैंसर के पेशेंट आए थे
0: जी,
1: तो एम्स में बहुत लंबा टाइम लगा उनको, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं कि दिखाने जाते हैं तो नहीं मिलता, या कोई एक्सीडेंट लाता तो ब्लड की दिक्कत होती है।
0: वाकई
1: तो मतलब बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं।
0: देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम अपने घरों में बैठे होते हैं हम न अपनी सहूलियतों को देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे ऐशो आराम, हमारी लग्जरी, हमारी सहूलियतें हम और कैसे बढ़ा सकें। बट क्या हम कभी ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे ही अपने देश में, जिन्हें बेसिक चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं, और जो हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं, हमारे लिए शायद बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा कोई शायद यू नो मनी लॉस या फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, पर हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम क्यों। मानवता हम इंसानों की ही ट्रेट है, और अगर हम इसे जिंदा रखेंगे तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं आप आगे बढ़ सकते हैं और इन सबके साथ जुड़कर किसी का जीवन सुधार सकते हैं। कैसे जानेंगे प्रीता जी से, बस जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रेष्टा 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रेष्टा 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ, जो की प्रेसिडेंट है उपज एक प्रयास की। प्रीता जी, बहुत सारे लोग फिलहाल आपको रेडियो मानव रेष्टा के जरिए सुन रहे हैं। हमारे इंटरनेट रेडियो के थ्रू आप पूरे विश्व में अपनी आवाज को पहुंचा सकती हैं। मुझे बताइए, कोई अगर आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एसोसिएट होना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि आज के जमाने में परेशानी है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हाँ पर उनके पास धन है, तो किस प्रकार से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं?
1: मैम, उसके लिए हमारा वेबसाइट पेज है, प्लस मैं आपको अपने दो नंबर है, फोन नंबर वो बोल देती हूँ
0: जी,
1: 9310852877 एंड दूसरा है 9310815366।
0: देखिए दोस्तों, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उपज upajngo.com पर जा सकते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पर जाना, आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली आप में से कोई शायद उस एरिया के आसपास भी बिलोंग करता होगा जहाँ पर उपज एनजीओ काम करता है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप उनके लिए छोटी सी सहायता बन सकते हैं। किसी दिन, एक दिन आप थोड़ा सा समय निकालिए और जाकर इनके बच्चों के साथ ना सिर्फ आप थोड़ा समय निकालें लेकिन उन्हें मोटिवेट करें। इसी के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को आप किसी को सिखा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप दे सकते हैं, और अगर आप अपनी किसी एक लग्जरी को थोड़ा सा कम कर दें एक दिन के लिए, तो उससे भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपना कीमती सलाह और समय आप इन्हें दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप किसी के जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये प्रयास जरूर करिएगा, मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। उपज एक प्रयास एक खास प्रयास है, एक खास पहल है, इस पहल के साथ जरूर जुड़िए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लव।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रीता सक्सेना जी के साथ। ढेर सारी बातें हमने इनसे की, प्रीता सक्सेना जी जो कि प्रेसिडेंट है उपज एक प्रयास NGO की। प्रीता जी मुझे बताइए, जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहती हैं?
1: मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आज जोड़ के, आप जरूरी नहीं है कि हमारी संस्था में डोनेट करें। आसपास जो भी लोग आपको दिखाई देते हैं, आप गाड़ियों में जाते हैं, कुछ साबुन, कुछ जो आपके ये होते हैं शैम्पू पाउच होते हैं, कुछ शैम्पू, कुछ खाने की चीजें, बहुत से लोग हैं वीकली आपके पास झुकी झोपड़ी बस्ती है उनमें ले जाके एक बार्बर को उनकी कटिंग करा सकते हैं, बालों की दाढ़ी बनवा सकते हैं। कुछ ऐसे पुल के नीचे बैठे होते हैं लोग जिनको आप हफ्ते में एक बार खाने के कुछ पैकेट बना के दे सकते हैं। और बाकी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।
0: तो भाई अपने सपनों को बुलंद करिए। लेकिन जैसे प्रीता जी ने एक छोटे से इंसिडेंट के बाद अपने जीवन को बदल लिया, मैं ये नहीं कहती आप पूरा जीवन बदलिए और एक NGO स्टार्ट करिए, लेकिन किसी न किसी की मदद जरूर करिए। और इस प्रकार से जब आप ऐसी मोटिवेटिंग कहानियां सुनते हैं, मानवता को जिंदा रखने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करिएगा। अगर हम सभी लोग मिलकर अपने आसपास के मात्र 10 लोगों का भी ख्याल रख लें, तो मुझे नहीं लगता किसी NGO को ऑपरेट करने की जरूरत है। उन्हें ना फंडिंग के चैलेंजेस होंगे, ना उन्हें वॉलंटियर के चैलेंजेस होंगे, ना उन्हें एसोसिएशंस के चैलेंजेस होंगे। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रीता जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़ी, तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका और लेकर के आ चुकी हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें के साथ साथ सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से गाने और आपके मैसेज जो मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। बस ऐसे ही मैसेज आप भेजते रहें, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई गाना आपको इंजॉय करना है, आप मुझे 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं तो बात करूँ ही, लेकिन साथ में आप भी बातें करें, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले आपको नंबर देती हूँ ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुँचा दें। और आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बिजी होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए आप हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि अभी हम बड़ा बिजी हैं, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। और आप जब मैसेज करेंगे तो ना केवल हम आपके बातों का जवाब देंगे बल्कि आप के फरमाइश के गाने भी आपको सुनाएंगे, तो बस आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो चलिए गाना आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ कि आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

यो मानव रेश 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स आपको बताऊंगी। भाई आज है सैटरडे और आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और किचन के बारे में मैं ज़्यादा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि किचन का काम ना अपने आप में इतना सारा होता है कि अगर आप एक बार किचन में गए और आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भी काम किया, करते करते आपको इतना टाइम हो जाएगा कि आपको सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा कि आपने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर से लंच की तैयारी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है। अब ऐसे में हमें चाहिए होती है हेल्प, तो देखिए अगर घर में बाकी सदस्य हैं तो ज़रूर हेल्प करते होंगे, है ना। और अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई और नहीं है हेल्प कराने वाला, तो यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए घर में जो भी किचन में उस वक्त काम कर रहा है तो सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है वो भी फ्री हो जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि करने वाला सिर्फ एक ही होता है किचन में काम, ना तो अब क्या करें। तो ऐसे में हैक्स काम आते हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए सैटरडे, हर सैटरडे आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे ना बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मिक्सी। अच्छा, मिक्सी से तकलीफ तब हो जाती है जब मिक्सी ख़राब हो जाती है, जार के ब्लेड घिस जाते हैं, किसी भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, अब यही दिमाग में रहता है कि अब हमें नई मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, है ना। और मशीन बाहर ख़रीदना मतलब अपना खर्चा करवाना, राइट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि छुट्टी आए तो हम मिक्सी वाले के पास लेकर के जाएं इसे ठीक कराने के लिए, इसके जो ब्लेड है उसको चेंज करवाएं, अब उसमें भी खर्च है ना। तो एक बार जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिक्सी लेनी है, उसमें जार लगाना है, जार में कुछ डालना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ डालनी है और वो है सॉल्ट। जी हाँ, जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आपको ढेर सारा जो जार है मिक्सी का जिसमें ब्लेड है, राइट, उसमें आप डाल दीजिए और फिर आप खूब सारा नमक डाल करके इसको चला दीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको नमक को पीसना है। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक पीसा उसके बाद ब्लेड जो है वो काफ़ी हद तक काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं उसकी धार को एकदम शार्प करने का ये तरीका, आप ये से नुस्खा कह सकते हैं, ये एक बेहतरीन सा नुस्खा है। तो आप इसे करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना वर्क किया। बट मैंने अपने घर में किया था तो मुझे तो बड़ा सही लगा। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही नमक को मिक्सी में डाल करके पीस देते हैं तो उससे आपके ब्लेड शार्प रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिक्सी में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं और साथ के साथ ये हैक्स आप अपने किचन में इस्तेमाल करके आप किचन को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये वाला हैक बताया, एक और बहुत ही गजब का हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुनाने वाली हूँ गाने जो कि हैं बेहद खूबसूरत। तो चलिए दो गाने एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांगा आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है एवरग्रीन लम्हे। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स। और किचन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है, किचन में वो सारी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है उसको हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं या उससे काम हल्का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और आपको हैक्स बताती हूँ। साथ ही बाहर जो खाने का अब ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक घर में हो गया है, यानी कि पहले हम बाहर जाकर एंजॉय करते थे लेकिन अब वही चीज़ें घर में भी हम बनाकर एंजॉय कर पाते हैं। फिर चाहे कुछ भी फास्ट फूड हो या कोई भी ऐसा खाना जो आप बाहर पहले एंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है या इस तरह से इसको बनाकर तैयार करना है, वो फिर हम घर पर ट्राई करते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ जो एक काफ़ी अच्छी है क्योंकि जब कोई चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर में क्या डाल रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम जब भी छुट्टी पर होते हैं यानी कि वीकेंड होता है तो या तो राजमा या कढ़ी खाने का मन करता है या फिर दाल मखनी और उसके साथ में तंदूरी नान हो जाए तो ओहो क्या कहने, है ना। नान जो है घर में आजकल काफ़ी बनाने लगे हैं लोग। पहले का वक्त होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे बनाना है, सिर्फ कुछ एक लोग ही जानते थे बनाना, लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी नान बना सकते हैं। और ये तरीका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी नान के लिए तंदूर का इस्तेमाल पहले किया जाता था लेकिन अब घर में भी आप बना सकते हैं। आप उल्टे तवे पर सेक कर तंदूरी नान बना सकते हैं जी हाँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको तंदूरी नान कैसे बनानी, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नान बनाने जा रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, जैसे होता है कि रिलेटिव कोई आ गए हैं या फिर एकदम से इंस्टेंट कुछ खाने का मन हुआ, दाल मखनी तंदूरी नान या कुछ तंदूरी नान के साथ कुछ खाने का मन हुआ और टाइम उतना है नहीं, प्लान एकदम से बना है ना, तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा जब आप उसका गूंथे उसमें बेकिंग पाउडर की जगह इनो जो है आप वो डाल दीजिए, इनो सॉल्ट जो होता है, इससे नान का आटा जल्दी तैयार हो जाएगा और नान बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वही वाला टेस्ट आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही यम्मी ऑसम टेस्ट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, अभी तक आप जैसे भी नान बनाते थे आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आटा वाकई में बड़ा सॉफ्ट गूंथेगा और उसकी नान भी काफ़ी अच्छी बनेगी। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स आपके लिए अभी और हैं, साथ के साथ चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: कोई तो जरा ओढ़ो हो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको मैं बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स और किचन से जुड़े ये जो हैक्स हैं जो वाकई में काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। ऐसे ही आपका एक और काम आसान कराई देती हूं। अच्छा, कुकर में खाना बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, और ये भी एक तरह से हमारे ही लिए सही है ना कि कम समय में खाना बन रहा है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब अचानक से हमें पता लगता है समय हमारे पास कम है खाना बनाने के लिए, और एकदम से हम किचन में गए हैं और कुकर जैसी देखा, और कुकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब नोटिस किया तो कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपने ऐसे तैसे एडजस्टमेंट किया और आपने रबड़ लगा करके खाना चढ़ा दिया, कोई दाल या जो भी आपको बनाना है वो आपने चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, दाल के अंदर का जो कुकर के अंदर जो दाल है उसमें पानी है, वो पानी सारा बाहर झलक रहा है क्योंकि रबड़ ढीली है। अब क्या करें, अब एकदम से भागना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता या दुकान काफ़ी दूर होती है, अब क्या करें उसके लिए। तो यहीं पर अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो काम आ जाए, यही तो स्मार्ट हैक है, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अगर कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है तो आप उसको लीजिए और फ्रीजर में डाल दीजिए, जहाँ बर्फ रखी हो बस वहीं कोने में आप रख दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप एकदम तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रखिए, यहाँ तक कि आप जो खाना है उसको इतना, जो आपने खाना चढ़ाने के लिए कुकर में डाला हुआ है सामान, उसको आप इतना गर्म कर लें कि वो उबालने वाली स्टेज पर आ जाए। अब तुरंत आप रबड़ निकालिए फ्रीजर से और उसको लगा दीजिए कुकर के ढक्कन पे, और तुरंत तुरंत आप उसको बंद कर दीजिए, सीटी तुरंत लग जाएगी और आपका खाना आसानी से पक जाएगा और कुकर के जो रबड़ है वो आपको परेशान भी नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका खाना तो बन जाएगा बट ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रबड़ तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका वो खाना उस टाइम समय पर कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना कि आप कोई काम होगा तो वो वीकेंड में होगा क्योंकि छुट्टी मिलती है भाई, और छुट्टी में ही फिर सारे काम जो बचे होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं ना। तो अब अगर बीच में ही यानी कि वीकडेज में ही अगर ऐसा हो गया है और वीकेंड का आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। कितना स्मार्ट तरीका चीज़ों को ठीक करने का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और बताती हूँ। सुबह के वक्त में हम सभी चाहते हैं कि कुछ हल्का हेल्दी टेस्टी हो, है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं रेसिपी डिश की बात करूं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए जो हेल्दी है, कुछ खाने में जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कई लोगों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं। लेकिन पोहा जो है वो सबको पसंद आता है ना, पोहा, क्योंकि जल्दी बन जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। देखिए, जब भी आप पोहा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भिगोने के बाद स्टीम करके आप इसे बनाएं। स्टीम करने से पोहा नरम और मुलायम रहता है और अपनी शेप में रहता है और बनाने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अब आप स्टीम करके पोहा बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा 8010781078 रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानवरश 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आपको स्मार्ट हैक्स और टिप्स दे रही हूं. तो हैक्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं अपनी यानी कि हमारी सेहत की. दादी नानी के नुस्खे बड़े ही कमाल के होते हैं. दादी जी नानी जी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बता जाती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी काम आने वाली होती हैं. ऐसे ही कुछ नुस्खे आप लोगों के लिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हैं बेहद कमाल के. अच्छा, पानी में नींबू निचोड़कर पीने से हमारा फैट लॉस होता है ना, और शरीर में फुर्ती आती है. तो हम सभी जानते हैं कितने लोग वेट लॉस के लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और उनका पेट सही रहे और साथ के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. और वेट लॉस तो होता ही उससे, है ना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी जो नहाने वाला पानी है जिससे आप थोड़ी देर में नहाने वाले हैं, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उससे आप नहाएं तो स्किन सॉफ्ट रहती है, काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है. जी हाँ, क्या ये आपको पता था? ये भी दादी नानी का नुस्खा है जो कि मुझे लगता है ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. भाई स्किन सॉफ्ट तो हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन मुलायम रहे और टेक्सचर बड़ा स्मूथ रहे. तो बस यही वाली चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को अप्लाई कर ही लेनी चाहिए और इससे कोई नुकसान भी नहीं है. दादी नानी का नुस्खा है, आराम से इस्तेमाल कीजिए. और नींबू पानी तो हम पीते ही हैं, तो अब नहाने के पानी में भी हल्का सा नींबू निचोड़ करके क्यों ना इस नुस्खे को आजमाया जाए, है ना. तो ये नुस्खा जब आप आजमाएं तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. कुछ दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और साथ के साथ नंबर आप ले लीजिए 8010781078. ये हमारा नंबर है. चलिए अब आपको अगला नुस्खा बताती हूँ और अगला नुस्खा भी हमारी दादी नानी का ही है. काले खजूर जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, है ना. क्या आप जानते हैं काले खजूर जो हैं वो खाने से कमर मजबूत होती है और इससे कमर दर्द जो कि बहुत जल्दी आज के टाइम पे लोगों को होने लगा है. कमर में दर्द रहता है और ठीक से चला भी नहीं जाता. कई बार तो मैंने देखा है कि एक एज के बाद कमर दर्द इतना रहता है कि बहुत परेशान रहते हैं और कई लोग तो झुक कर चलते क्योंकि वो ठीक से कमर सपोर्ट ही नहीं कर पाती उनको, है ना. तो काले खजूर खाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं और कमर को और हड्डी को मजबूत करते हैं. तो मुझे तो लगता है अब देखो दादी नानी का नुस्खा है और खजूर खाने भी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं खजूर कितनी हेल्दी होते हैं हमारे लिए. तो काले खजूर आप अपने घर पे ला के रख लीजिए और जब भी मन करे, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा. और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप एक या दो से ज़्यादा मत लीजिएगा. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हेल्दी है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दादी नानी के नुस्खे अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे आपको बताने हैं. लेकिन उससे पहले चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

प्रांगी मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और मैंने आपको किचन हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और अब मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के बेहतरीन नुस्खे, जो कि इसमें से कितने सारे नुस्खे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन नुस्खों को आप कितना अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ अप्लाई तो हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि ये जो नुस्खे हैं जो हम सब जानते हैं इसको हम अप्लाई भी करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो जो फ़ायदा जो पहले के लोग उठाया करते थे वो हम भी उठा पाएँ। इतनी नायाब चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बता कर गए हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कुछ लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और ये भी हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा प्याज है वो खाना चाहिए। कच्चा प्याज या सब्जी में डाल करके इसको हमें खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। और आपने घर में अगर बड़े हैं आपके तो आपने उनको देखा होगा कि जब भी वो लू में बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में प्याज की एक गांठ यानी कि छोटी प्याज अपने साथ ज़रूर रखते हैं या फिर बैग में रखते हैं, और प्याज का सेवन ज़्यादा कर देते हैं लू के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर। वो क्यों होता है? क्योंकि ये लू से बचाता है। प्याज लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है, इसलिए ऐसा आपने अपने बड़ों को भी डेफिनेटली करते देखा ही होगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बचाता है? जी हाँ, इसलिए प्याज का इस्तेमाल जो है हमें करना ही चाहिए अपनी डाइट में। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बस यही मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दादी नानी के नुस्खों को एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। वहीं मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल, काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अगर मोबाइल ना भी चलाएं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, जरी सी आँख लगती है तो फिर से आँख खुल जाती है और उसके बाद हम कई कई घंटों तक जागते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात पता है कब होती है? जब अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें ऑफिस के लिए निकलना है। छुट्टी के टाइम पर तो फिर भी एक दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे समय निकाल के, लेकिन अगर अगला दिन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी दादी नानी का घरेलू नुस्खा है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हल्का सा नींबू चाट लीजिए, कहते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है। तो मैंने तो ये अभी तक नहीं आजमाया क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है आप ये कीजिए। और ये जो नुस्खा है आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना। नंबर हमारा 8010781078। तो देखा, हमारे जो समाधान हैं वो घर में ही हैं, लेकिन घर में समाधान होने के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि हम दादी नानी के नुस्खों से अब काफ़ी दूर हो चुके हैं और जो पास है भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, क्योंकि आज के बच्चे ना उनको पता है और ना वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, है ना। समय की कमी है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाधान घर में ही मौजूद है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में बता रही हूँ आपको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताती हूँ और ये उनके लिए है जिनको खट्टी डकारी बहुत आती है। आज के टाइम पर हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी भूख से ज़रा सा भी ऊपर खा लें तो हमें खट्टी डकारी आने लगती है, या कुछ तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लें तो हमें ये दिक्कत होती है, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक है, खाना भी हमारा हल्का है, लेकिन उसके बाद भी खट्टी डकारों की जो समस्या है कई लोगों के साथ में ये रहती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको इन सारी चीज़ों को करते हुए, यानी कि खाना खाते वक्त या तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया तब ऐसे हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपको खट्टी डकारे सिंपल खाने से भी हो जाती है, तो दादी नानी जी कहती थी कि अगर आप एक चुटकी भर जीरा खा लें तो खट्टी डकारे आना बंद हो जाएगी। तो ये आप करके देखिए। वैसे सौंफ के लिए भी कहते हैं कि सौंफ जो है वो खट्टी डकारों को ख़त्म करता है, पेट को ठंडा करता है, लेकिन ज़ीरा वाला जो है ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। ज़ीरा अगर आप एक चुटकी थोड़ा सा, मतलब आप ज़ीरा अगर आप खा लेते हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो दिक्कत कहते हैं ठीक हो जाएगी। तो आपके साथ अब ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़ीरा को बिल्कुल मत भूलना, याद रखना, और इसको खाना, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी खट्टी डकारे थोड़ी देर में जा चुकी है। तो है ना कितना कमाल का ये नुस्खा। ऐसे ही सेंधा नमक खाने की हिदायत हमेशा दी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है खाने में डालने के लिए। वही क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक शरीर के दर्द को कम करता है? जी हाँ, आपने सिकाई करते हुए तो सुना ही होगा, और आप करते भी होंगे, देखा भी होगा आपने सिकाई करते हुए कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके खूब सारा अगर आप अपने पैर डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाती है पैरों की। आपके जो पेन होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पैर में है, जॉइंट्स में है, तो वो गर्म पानी में सेंधा नमक डालने से दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको खाने में से इसका सेवन करते हैं तो ये कमाल का फ़ायदा जो है देता है बाकी नमक के मुकाबले। तो कैसा लगा ये नुस्खा, है ना कमाल का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपको भी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप पहली चीज़ तो कम खाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है या और जो प्रॉब्लम खाने के बाद होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि खाना खा के कई बार क्या होता है कि हम बैठे रह जाते हैं और बैठने से ही काम ख़राब हो जाता है। इसलिए खाना खाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए, वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे धीरे वॉक कीजिए, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप वॉक शुरू करें। और वज्रासन ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद होता है, तो वज्रासन में आप ज़रूर बैठें। इससे खाना ना केवल डाइजेस्ट होगा बल्कि आपको जो ये प्रॉब्लम है जो आपके खाने के बाद शुरू होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं प्रांका।

प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, जहाँ आपको न केवल मैंने किचन हैक्स बताए बल्कि दादी नानी के ढेर सारे नुस्खे भी बताए। जी हाँ, तो चलिए अगला नुस्खा आपको बताती हूँ। और हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जोड़ों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इससे खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, इसलिए रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप दही को रात में अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दही खाने का मन कर ही रहा है, तो आप अपने मन को समझा लें कि अगर आप खाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं और दही आपको बहुत अच्छी लगती है, तो पूरे दिन खाइए, लेकिन रात में पूरी तरह से दही को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, लेकिन रात में आप अवॉइड कर दीजिए। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं कि कई बार हम सभी को ही क्रेविंग हो जाती है चाय पीने की, और कई बार तो रात में भी बड़ी क्रेविंग होती है चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता और पेट में सड़ने लगता है, और ऐसा हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। इसीलिए रात में चाय पीने की हिदायत नहीं दी जाती है। कोई नहीं कहता कि रात में चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय जो चाय लवर है ना, उनकी क्रेविंग रात में ही सबसे ज़्यादा होती है, जब ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं दिमाग में, या कोई बात चल रही है, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे मन का हो रहा है, तो उस टाइम पर बातें करते करते चाय का प्याला मिल जाए, आह क्या कहना। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको चाय जो है बहुत अच्छी लगती है। मेरे को भी बहुत पसंद है चाय पीना, लेकिन रात में तो मैं भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जी कहती है रात में चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, इससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो मैंने तो ये सालों पहले समझ लिया था, तो आप भी समझ जाइए और चाय पीना रात में बंद कर दीजिए। तो है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही औसम बात हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए। वो हमेशा कहते हैं कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति, उसका मान भी होता है और आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले जो लोग हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। जी हाँ, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। तो भाई, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, हमेशा कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा बोले, प्यार से बोले, सम्मान के साथ बोले, शब्दों को ध्यान में रख कर बोले, है ना। कितनी बढ़िया बात जो हमारे बुजुर्ग कह गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ढेर सारी बातें मैंने आपसे की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा है 8010781078। तो चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे तो चाहते थे कि बेटा भी यही बने, मगर ऐसा हुआ नहीं। हॉकी के दीवाने अखलाक मोहम्मद खान ने जब कलम थामी तो वो शहरयार हो गए। शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं, और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। उनके लिखे को पढ़ना हमेशा चैन देता है तो ठटकने पर मजबूर भी करता है। बहुत सारी बातें आज करूंगा मैं शहरयार के बारे में, और दोस्तों शहरयार की उन गजलों को याद करेंगे जो कि इतनी मशहूर हैं, सुनने के बाद एकदम आप चौंक जाते हैं कि अच्छा, ये शहरयार साहब की लिखी हुई हैं। कराऊंगा उन गजलों से भी आपका तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, शहरयार का जिक्र करते ही कोई भी पूछ सकता है कौन शहरयार, और जब कहें कि उमराओ जान के गीत, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, लिखने वाले शहरयार, तब सामने वाला कहेगा अच्छा वो शहरयार जिन्होंने लिखा है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वो शहरयार जो कम बोलते थे मगर उनकी शायरी जनता के सिर चढ़कर बोलती थी, जिनकी शायरी को साहित्य एकेडमी ज्ञानपीठ सम्मानों से भी नवाजा गया, वो शहरयार वो उर्दू के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। उनके पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्तुल एन हैदर और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वो शहरयार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के बीच का पुल कहा जाता है, आज उन्हीं शहरयार के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अखलाक मोहम्मद खान यानी शहरयार साहब की बात हो रही है आज, और शहरयार साहब के हम पैदाइश की बात करें तो 16 जून 1936 को अलोनी जिला जो कि बरेली में पड़ता है, 1948 में उनके बड़े भाई का तबादला अलीगढ़ हुआ तो वो अलीगढ़ आ गए और वहीं के होकर रह गए। घर परिवार में कोई शायर नहीं था, पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे और जाहिर है बेटे को भी पुलिस डिपार्टमेंट में देखना चाहते थे। अखलाक खान को पढ़ाई के दौरान हॉकी से जुनून की हद तक लगाव था। हॉकी बहुत पसंद थी शहरयार साहब को, मगर जिंदगी में कोई आया और शायरी भी दाखिल हो गई। शहरयार ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि अलीगढ़ में उनकी मुलाकात खलीलुर रहमान आजमी से हुई। आजमी की दोस्ती ने उन्हें शायरी से मिलवाया। खलीलुर रहमान के ही कहने पर अखलाक खान ने बतौर शायर शहरयार नाम अपनाया। ये तो है उनके नाम की दास्तान, लेकिन दोस्तों शहरयार साहब की एक से बढ़कर एक गजलें, नज़में और वो गीत जो हमारे भारतीय सिनेमा में आज भी गूंजते हैं, उन सब की बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, चुनिंदा मंचों पर अपनी शायरी से मुखर रहने वाले शहरयार निजी जीवन में खामोश इंसान थे, बातचीत थोड़ी सी कम करते थे, मुशायरों में भी कम ही जाया करते थे। उमराव जान जैसी फिल्म के गाने लिखकर रातों रात चर्चित हुए, लेकिन शहरयार को धुन पर गीत लिखना रास नहीं आया और वो अदब की दुनिया में ही रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार की किताब बातों मुलाकातों में शहरयार ने अपने जीवन के कुछ राज खोले हैं। लेखन के शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं कि जब मैंने तय किया कि मुझे थानेदार नहीं बनना है तो घर से अलग होना पड़ा। तब मैं खलीलुर रहमान के साथ रहने लगा। शुरू में मेरी जो चीजें छपी एक्चुअली वो मेरी नहीं है, बाद में अचानक कोई मेरी जिंदगी में आया। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। कहते हुए शहरयार उस व्यक्ति के बारे में अपनी बात को छुपा जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता इस कहने में झलकती है कि इस उम्र में मैं कितना ही रुसवा हो जाऊं, किसी और को रुसवा नहीं होने दूंगा। ऐसा मिजाज था शहरयार साहब का और सबका सम्मान करते थे और लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनका कलाम जो कि लोगों के सिर चढ़ करके बोलता था, उसी कलाम से उनको हर जगह इज्जत मिलती थी। शहरयार साहब के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, शहरयार साहब का जब कोई इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी से संबंधित कर रहे थे, लेकिन एकदम अचानक किसी एक जगह पर आकर के ठहर गए और कहने लगे, नहीं भाई, कुछ बातों पर अगर पर्दा पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी को बदनाम करने से, रुसवा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो किसी का राज है, उस राज को राज रहने दो। वो इस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि तब दुनिया मुझे अजीब लगने लगी और फिर मैं शायरी करने लगा। बीए के आखिरी साल में शेर लिखने की रफ्तार तेज हो गई। एमए में साइकोलॉजी में दाखिला लिया और जल्दी ही एहसास हुआ कि फैसला गलत लिया है। दिसंबर में नाम कटा लिया, फिर 4-6 महीने केवल शायरी ही शायरी की, और ऊपर वाला भी मुझ पर रहम करता रहा। कोई बड़ी ताकत है जो मेरी चीजों को तय करती रही है। उर्दू की बहुत अच्छी मैगजीन में मेरी चीजें छपने लगी। तेज रफ्तारी से सामने आया, फिर एमए उर्दू में ज्वाइन किया। दोस्तों, साफ गोई देखिए कि शहरयार जोर देकर स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, मगर एक परम सत्ता पर भरोसा करते हैं। शहरयार निजी जीवन के मामले में कम ही बोले हैं। शहरयार की अपनी बेगम यानी कि नजमा के साथ मन नहीं मिला था। उनके एकांत और खामोश मिजाजी के पीछे इसे भी एक कारण माना जाता है। पत्नी नजमा के लिए वो क्या सोचा करते थे, उनकी नज्म नजमा के लिए में दिखाई देता है। अब वो जो नज्म है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी का जिक्र किया है शायराना अंदाज में, वो अंदाज भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि शहरयार साहब ने एक नज्म लिखी थी जिसका नाम था नजमा, और वो नजमा के लिए यानी कि उनकी पत्नी के लिए थी। उसमें वो लिखते हैं, क्या सोचती हो, क्या सोचती हो, दीवारे फरामोशी से उधर क्या देखती हो, आईनाए ख्वाब में आने वाले लम्हों के मंजर देखो, आंगन में पुराने नीम के पेड़ के साये में भैयू की जहाज में बैठी हुई नन्ही चिड़िया क्यों उड़ती नहीं, जंगल की तरफ जाने वाली वो एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं, टूटी जंजीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं, एक सुर्ख गुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो। दोस्तों, शहरयार के मिजाज पर कमलेश्वर ने लिखा है, उन्होंने अपनी शायरी में मानवीय मूल्यों को सबसे आगे रखा। शायरी हो या अफसाना, शहरयार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लिखना है जम कर लिखो और इतना लिखो कि अपने लिखे को भी जी भर के खारिज कर सको, जिससे साहित्य जो सामने आए तो खूबसूरत और असरदार बन सके। इसके साथ ही वो बहसों में ना हिस्सा लेते हैं और ना शरीक होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना सुकून खोना नहीं चाहते। ऐसे थे शहरयार साहब। जब फिल्मों में गाने खासकर उमराव जान का जिक्र हुआ तो शहरयार ने डॉक्टर प्रेम कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे जिंदगी में बहुत सी चीजें फिल्म के गानों की मकबूलियत से मिली। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो जब इलाज के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाते थे तो उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था, वहां डॉक्टर बिना कार्ड ही उनकी जांच कर लिया करते थे, बहुत खुशी से जांच करते थे। ट्रेन या हवाई जहाज में रिजर्वेशन करवाना हो या एमयू की एग्जीक्यूटिव या कोर्ट के इलेक्शन का मसला हो, उमराव जान के गानों ने हमेशा मदद की है। मुशायरा चाहे देश का हो या विदेश का, शहरयार का सिर्फ एक ही परिचय काफी होता था, उमराव जान के गीतकार। लेकिन दोस्तों, फिल्म उमराव जान के अलावा भी उन्होंने गीत लिखे हैं, गजलें लिखी हैं, नज्में लिखी हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं उस शहर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। फिल्म उमराव जान में एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने लिखे। बाद में दामन, फासले, द नेमसेक, इन फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे, मगर मन फिल्मी दुनिया में रमा नहीं। इसका कारण शहरयार ने यूं बताया कि मेरा एक उसूल है, मैं किसी ऐसी फिल्म में गाने नहीं लिख सकता जिसमें गाना कहानी का पार्ट ना हो और जिसमें पोएट्री की गुंजाइश ना हो। हम दनादन धुन पर तुरंत नहीं लिख सकते। उन्होंने बताया था कि पिता का कहना था कि ये तो आदमी को मालूम नहीं हो पाता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि वो क्या नहीं कर सकता। जब ये मालूम हो जाए तो ऐसा काम करने के बाद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। और आज उसी बादशाह के बारे में आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, पर वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए अब आपका दोस्त फहीम चाहता है आपसे आज्ञा। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: ay, Cholito, ay, Cholito, ay, Cholito.
1: Boom, मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी।

Nein!

चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किसान के बारे में बात करूंगा जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मेघ गांव के किसान वैज्ञानिक यानी रोशन लाल विश्वकर्मा अपनी गन्ना उत्पादक मशीनों के कारण देश विदेश में सुपरिचित हैं। उन्हें इनके लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। अलग अलग दौर में हुई बातचीत में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और शोध के अनुभवों को साझा किया है। वही सारी बातें आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस किसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उनका नाम है रोशन लाल विश्वकर्मा, जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि गांव में मेरे दादाजी भैया लाल किसानी के साथ साथ लोहारी का काम भी किया करते थे। उनके छोटे बेटे धनीराम के यहाँ 1967 की 8 मार्च को जन्म हुआ। बड़े पिताजी भी लोहारी का काम किया करते थे। दोनों के बीच 18 एकड़ असिंचित जमीन थी। दादाजी के निधन के बाद उन्हें 9 एकड़ जमीन मिली। पारंपरिक खेती से जैसे तैसे घर चलता था। बहनों की तो कम उम्र में ही शादी हो गई थी। 8वीं पास करके गांव से 4 किलोमीटर दूर आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी को खेती में सहयोग देता, गाय बैल चराता। आगे बढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर के कॉलेज में दाखिला लिया। 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से खेती के काम में जुट गया। और आगे वो बताते हैं कि 1990 में मेरी शादी कमला बाई से हो गई। आय बढ़ाने के लिए मैं खेती में नए प्रयोग करने लगा। स्प्रिंकलर सेट, छोटा ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब चीजों को खरीद लिया। मोटर वाइंडिंग का काम भी सीख लिया। काम अच्छा लगा। कृषि यंत्र रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। 3 साल के बाद दुकान बंद करके जबलपुर में कार रिपेयरिंग का काम भी सीखा। इधर उधर भटक कर पिताजी से मशवरा लेकर गन्ने की खेती में नवाचारों में लग गया। अब तो आमदनी बढ़ानी ही थी, लेकिन आमदनी बढ़ी कैसे ये दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा और बात करूंगा किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा बताते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं कई तरह की जुगाड़ों में जुट गया था। 1999 में निश्चित समय में सिंचाई के लिए टाइमर विद ऑटो स्विच का निर्माण किया। इसके बाद आलू की तरह गन्ने की सिर्फ आंख निकालकर खेत में लगाने का परीक्षण किया। एक साल में स्वस्थ पौध तैयार हो गई। पूरे राज्य में इसे लगाने के लिए यंत्र बनाने की प्रेरणा मिली। और अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 में हाथ से चलने वाली शुगर केन बर्ड चिपर मशीन की मार्केटिंग शुरू की। इसका पेटेंट भी जल्दी मिल गया। करीब 2000 मशीनें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, ब्राजील यानी इन देशों और गन्ना उत्पादक प्रदेशों में गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है रोशन लाल विश्वकर्मा ने। लेकिन इनसे जुड़ी और भी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को प्रेरित कर सकती हैं। वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गन्ने की आंखें निकालने का यंत्र तैयार किया था। अब आप कहेंगे कि गन्ने की आंखें? अरे भाई, जो आप देखते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनको गन्ने की आंखें कहते हैं। उन्हीं आंखों को निकालने के लिए रोशन लाल विश्वकर्मा ने एक यंत्र ईजाद कर दिया। 3 किलो की ये मशीन 1600 रुपए की है और इस यंत्र से गन्ने की चंद्राकार आकार की 250 से लेकर 300 आंख प्रति घंटे निकाल ली जाती है और निकाली गई आंख से पॉली बैग में पौधे तैयार करके उन्हें सीधे खेत में लगा दिया जाता है और जो बचे हुए गन्ने होते हैं उनका उपयोग गुड़ शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यंत्र में गन्ने की मोटाई के मुताबिक समायोजन व्यवस्था है। यंत्र में स्प्रिंग और लंबा हैंडल होने से थकान कम होती है और वो बताते हैं कि इस यंत्र के लिए मुझे 2009 में NIF का प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, रोशन लाल ने कृषि क्षेत्र में कुछ अलग काम करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और अपने काम से लोगों को प्रेरित भी किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। दोस्तों किसान वैज्ञानिक रोशनलाल विश्वकर्मा कहते हैं कि अनवरत जारी हैं कृषि में नवाचार। वो कहते हैं कि 2010 में मैंने पांव से चलने वाली मशीन बनाई थी। वो प्रति घंटे गन्ने की 500 से 600 आंखें निकाला करती थी, लेकिन 2014 में पावर ऑपरेटेड मशीन बनाई और 80 किलोग्राम की ये मशीन एक घंटे में 2000 आंखें निकालती है और मेरे जरिए बनाई गई मोटर ऑपरेटेड शुगर बड चिपर सहसेट कटर 1 HP मोटर से चलती है। ये प्रति घंटे 1000 से 2000 आंख निकाल देती है। 1000-2000 टुकड़े प्रति घंटे काटे जा सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि काटे गए टुकड़ों में आंखें क्षतिग्रस्त नहीं होती, जबकि प्रचलित पद्धति में 10-15% तक नष्ट होती हैं और अन्य कृषि यंत्र शुगर केन लीफ स्ट्रीफर शुगर केन बगास ड्रायर यानी कि इन सब को भी विकसित किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। दोस्तों, आज बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार, और जो गन्ना होता है उसकी जो आंखें होती हैं उसके लिए एक मशीन तैयार कर ली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनका कहना है कि भूसे से सानी बनाने की मशीन, डॉग ट्रीटमेंट बॉक्स, ग्रामीणों की रोजमर्रा सामग्री की सही तुलाई का वितरण के लिए सप्लाई यंत्र, मॉडिफाइड हैंड व्हील हो, पैडी मार्कर, एंटी लॉक और गाजर घास की कटाई के लिए भी यंत्र बनाए हैं। और आगे बड़े ही उत्साहित होकर के वो बताते हैं कि मैंने पावर इंजन से चलित गोबर से गमले बनाने वाली मशीन का आविष्कार भी किया है। गोबर से बने गमलों में पौधों को पूरे पोषक तत्व देने की उर्वरा शक्ति होती है, और प्लास्टिक या सीमेंट के गमलों में पौधा अंदर से सिकुड़ता चला।

जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों वो ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी ताकत है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। पहले मैं गांव के लोगों से बात नहीं कर पाता था, अब रोजाना 8 से 10 प्रदेशों के लोगों से मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल पर बातचीत बहुत आराम से कर लेता हूं। और कई प्रदेशों के लोग गांव में घर तक तकनीक देखने आते हैं। मैं भी हर साल कई बड़ी कृषि गोष्ठियों में जाता हूं और बहुत कुछ सीखकर वापस आता हूं। तो दोस्तों इस तरह का अंदाज है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिसने कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो तो उसको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी तो किया गया होगा। उन सम्मानों की बात होगी, उन पुरस्कारों की बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। बातें तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन अब बारी है उनके सम्मानों की। तो वो अपने सम्मानों की बात खुद अपनी जबानी बताते हैं और कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों के लिए विकसित यंत्रों के लिए 2005 में पहली बार ग्वालियर में सम्मानित किया गया और 2010 में ICAR ने जोन 7 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्रदान किया और 2012 में 10 लाख रुपए सम्मान राशि का राष्ट्रीय नबार्ड अवार्ड भी मिला। 2015 में 1 लाख रुपए सम्मान राशि का NIF का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में मिला और 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय और भाकिसन ने उदयपुर में खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। तो इस तरह से बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हीं के बारे में कुछ और भी बातें हैं, बल्कि उनका एक संदेश है सभी किसान भाइयों के लिए। अब वो संदेश क्या है कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली हैं रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। अब जाते जाते उनकी तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए एक संदेश है। वो कहते हैं कि उन्नत तकनीक अपनाकर ही समय अनुसार खेती करनी चाहिए। खेती में ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता और सम्मान है। इससे खुद का, गांव का, देश का फायदा होता है। अगर किसान मन में ठान ले कि उसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसान वैज्ञानिक जैसा सम्मान पाना है तो ये संभव है। मेरे अलावा देश के बहुत सारे किसान ऐसा कर चुके हैं और आज सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग ले एक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे। इस

हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, फील गुड, फील लाइव। शो बहुत खास है, हर बार आपको नई जानकारी मिलती है, एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं, एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें। केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती, उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आए हूँ लेकर के एक और शो, तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं, ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शंस हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें, स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे, तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं, दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई, जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा, दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

सूरज के जर्रे जमीन पे मिले तो एक और आसमां मैं जमीन पे बिछा दूं, एक और

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फ्री, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन ईजी थिंग, है ना। तो उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूँ आरजे सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहां यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव। Thank you.

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वांट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूं, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूं कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूं। तो जार ने यहां पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं भी बचाना चाहता हूं, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शंस अपने बूम पर आ रहे थे, यूपीआई बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए, यार तुम ना एसआईपी किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने तो पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी एसआईपी हो जाएगी, वो इंसान

इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि है 100 रुपए में हो सकता है. एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को. सो इन फाउंडर्स ने खुद से सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, यहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए. एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में. इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार्स या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार. डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन. एंड सो अमेजिंग यार, आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी. तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी. पावर ऑफ इनोवेशन. लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ.

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है, मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखी हुए हैं. आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन के रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया है. स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है, एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है, एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिवली डीपली इन्वॉल्व थे. तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं. सो ये एक कोई स्ट्रेट स्टोरी नहीं हो सकती है. ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के, मुश्किलों के बाद, काफ़ी सारे हालातों के बाद जाकर के एक ऐसे मुकाम पर ये पहुंचे जिसके बाद इनको जो है फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में भी इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस कंपनी जार. तो ये कहानी है मिसबाह अशरफ की. सेकेंड को फाउंडर इज निश्चय जी, ठीक है. निश्चय ने एक कन्वेंशनल रूट फॉलो किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, देन बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट था उसके थ्रू. उसके बाद फिर कुछ सालों तक काम किया, उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, लेकिन उसके पहले मल्टीपल डोमेन्स इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है. प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें, आईटी एंड कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ठीक है, लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है, जैसे कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है. तो ये हैं जी दो लोग. एक है मिसबाह जो प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, स्टार्टअप ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने अनुभव लिया अच्छा खासा, अपने परिवार की दिक्कतों को भी देखा और फिर बाकी परिवारों को दिक्कतों को देख करके उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा. दूसरे हैं निश्चय, प्रोसेस फोकस्ड, ऑपरेशनल थिंकर. ऐसे करके ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्टार्टअप है इतना पावरफुल बन पाया. That's how it works. लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक. आप बताइए आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर. 8017810078 पे फिलहाल मजा लीजिए गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए, शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितना आपने केस स्टडी सुनी है, जितना आपने पूरी इस कंपनी को समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल्ड नहीं है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, माइक्रो सेविंग थ्रू ऑटोमेशन। अगर किसी इंसान ने 98 रुपीज पे किए हैं रिचार्ज के लिए, तो वहां पर जार ये कर सकता है कि 2 रुपए ऑटोमेटिकली काट ले, उस फिगर को राउंड अप कर दिया और 2 रुपए डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में डाल दिया। अब सोचिए कितना इजी आ रही है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर आपको किसी कंपनी का रिचार्ज करना है और आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, तो 2-3 रुपए तो वो भी अपनी फीस लेता है। एग्जैक्टली यहां पर एक कंपनी बोल रही है कि काम करो, 2 रुपए हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना ही ईजी है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है भाई, लेकिन बेयरली नोटिस होता है। बट कितना बड़ा, कितना इंटरेस्टिंग मूव है। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी। सो फार अबाउट दिस, आई मीन देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग यूएसपी आई हैव एवर हर्ड ऑफ। या मैंने कभी इस शो में बताई होगी कि ड्राइवर से थोड़ी बात करते हैं। इंडिया का इमोशनल कनेक्शन विद गोल्ड, आपको पता है बहुत अच्छे से, गोल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी प्लस कल्चर। हमारे परिवारों में इसलिए गोल्ड को ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि इंडियंस जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जार को ये साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, लो एंट्री बैरियर। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर 500 रुपए 1000 रुपए आपको लेकर के आने होते हैं। जार बोलता 10 रुपए ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, लाओ भाई 10 रुपए लाओ, 15 रुपए लाओ। कितना इजी एंट्री पॉइंट मिल गया कंज्यूमर को। उसको थर्ड पॉइंट आता है यूपीआई इकोसिस्टम ग्रोथ। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया, बट अगर वो ग्रो ना करता तो डेफिनेटली ये कंपनी स्ट्रगल कर रही होती, और इस कंपनी के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही होती। लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यूपीआई ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को पॉसिबल कर दिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिला डेफिनेटली। दैट इज अनदर की ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिकल वाइब। फ्लॉलेस नोट पर अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जार के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जार एक बहुत प्यारी सी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और किस तरीके से एक आदत को इन्होंने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लेसन हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए कि इस कंपनी ने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बट लोगों को ऑलरेडी पता था कि उन्हें सेव करना चाहिए। जार ने सिंपली उस ऑब्स्टेकल को, उस फ्रिक्शन को हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया जो उनके अंदर था, जो उनको रोक रहा था। अगला पॉइंट है कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टार्टअप जो है वो हर बार उसको बड़ा बनाने के लिए नए बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स कुछ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रीडिजाइन करना होता है। ऊबर ने टैक्सीज इन्वेंट नहीं करी थी, जोमैटो ने फूड इन्वेंट नहीं किया था, सिमिलरली जार ने सेविंग्स इन्वेंट नहीं करी, आदत बदली, बैरियर्स को हटाया, एक्सेसिबिलिटी दे दी, एंट्री बैरियर को हटा दिया। सो दीज आर द थिंग्स जिसका फल जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का नाम है जार। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। तो भी देखिए आज अब इस शो को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। जार की स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए। हर स्टार्टअप को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं करना होता है बाबू मोशाए, कभी कभी एक स्टार्टअप सिर्फ एक आदत को समझने से स्टार्ट हो सकता है। तो छोटा सा सवाल उठा कि लोग पैसे बचाना क्यों नहीं शुरू कर पाते। उस सवाल ने एक डिजिटल पिगी बैंक बना दिया जिसका नाम दिया गया जार। और शायद जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन छोटी छोटी आदतों से एक दिन फर्क जरूर आता है। फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज में लागू होता है। थ्योरी है, आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप एक दिन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बस आपको छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाने की आदतें, सोने की आदतें, तो वो जो छोटी छोटी आदतें आपके अंदर चेंज ला रही होंगी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी होगी जो भी आपने ख्वाब देखा है उस तरफ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। आज आपको शो कैसा लगा मुझे बताइए जरा 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कुछ स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, किसी बड़े मूवमेंट का वेट मत करिए। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए एंड सिंपल गो फॉर इट। चलता हूं, दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: पद कभी कभी।
1: रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम करते हैं ढेर सारी बातें और आज एक बहुत ही खास दिन है और ख़ास मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं और आज हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करती हूं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले और वो है महिलाओं की सेहत के बारे में। हर एज बहुत ज़्यादा, देखिए जो हमारी उम्र होती है ना, हर उम्र का पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये होता है कि हम उस पड़ाव पर ध्यान देना भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, हमें सोचते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, हमें सोचते हैं कि जब तक कुछ हमें हो नहीं जाता या फिर कोई बीमारी हमें अपने जकड़ नहीं लेती तब तक हम कोई दवा नहीं लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, बदलाव नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हमें लगता है कि काश पहले। तो ये जो काश है, ये काश आप इस काश में मत जिए बल्कि आप आज में जिए, और जब आप आज में जीने लगेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। और महिलाओं की सेहत के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर उषा प्रियंपदा जी हाँ, जो कि एक देखिए गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से मैम आज जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: डॉक्टर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे यही रहेगा कि अगर हम महिलाओं की सेहत के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बताइए वुमेन्स हेल्थ को लाइफ के हर स्टेज पर अलग अलग नज़रिए से क्यों देखना चाहिए, क्या रीज़न है और क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये?
2: देखिए, अगर किसी एक घर के लिए हम बात करते हैं तो अगर उसकी फीमेल ही सही स्वस्थ नहीं होगी तो वो घर के लिए आगे कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बेटी कोई भी है, शुरुआत करते हैं एक महिला से। महिला जो घर का सारा एक नींव रखती है, महिला है जो आपके घर के लिए आपके लिए सब कुछ देखेगी। अगर वही स्वस्थ नहीं है तो आप क्या उम्मीद कर दें कि आपका घर कैसे चलेगा?
1: बिल्कुल,
2: आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, आपकी देखभाल कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसलिए अपनी फीमेल को, अपनी वाइफ को, मदर को प्रायोरिटाइज करिए, उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, वो बहुत जरूरी है। उनकी कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए फीमेल्स कभी भी प्रॉब्लम्स को लेके आगे नहीं आती हैं। 99% तो यही देखा गया है कि वो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। वो आपका ध्यान रखेंगी, आपके घर का रखेंगी, बच्चों का रखेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स तो वो अंदर ही रख लेती हैं, बताएंगी भी नहीं। इसलिए सबसे अच्छी चीज जो आप उनको दे सकते हैं, जैसे बात हो रही है कि एक एनुअल हेल्थ पैकेज जरूर दीजिए जिसमें उनका एक एक्सटेंसिव चेकअप होना चाहिए और ज़रूरी है कि उसमें ब्रेस्ट और जो पैप स्मेयर की हम बात करते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, स्क्रीनिंग होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए उस पैकेज में।
1: डॉक्टर, ये तो बात रही उस पैकेज की, हम जैसे कि आपने बताया आजकल हम कई सारे गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, कभी भी वुमेंस डे आता है या फिर कुछ भी आता है, मदर्स डे आता है, तो हम ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पहले स्टेज की। सबसे पहले जब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जब सबसे पहला पीरियड जो आता है बच्ची का, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले ना बहुत डरा सा लगता है या फिर समझ नहीं आता है क्या हुआ और दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मम्मी ने पहले से एक बार बस गाइड किया होता है कि ऐसा कुछ होगा, थोड़ी बहुत बुक्स हमने पढ़ी हैं उसमें ऐसा होगा, लेकिन जब एक्चुअल में होता है तब बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो पेन हो रहा है, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप इस चीज़ को कैसे समझाएंगे और लोगों के लिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
2: देखिए, बॉडी में पीरियड्स आने के पहले भी बड़े सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। साइंस में या चलो गायनी में अगर हम बात करते हैं तो पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं और उसके पहले हेयर्स निकलते हैं एक्जिला में, साइड्स में या नीचे वाले एरिया में। मदर्स को ये होना चाहिए या इवन फादर्स भी कर सकते हैं, हम मदर्स की ही क्यों बात करते हैं, भाई बच्चा या बच्ची तो दोनों का ही है।
1: बिल्कुल,
2: तो दोनों को, बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि ठीक है ये अब आपकी एडोलसेंस एज आ गई है तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे बड़े सारे चेंजेस आएंगे, तो देखिए ये ऐसे होता है, ये चेंज ऐसा होता है। पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, पहली बात तो उसको यही एक्सप्लेन करना है, या ऐसी कोई चीज जिसमें वो छुआछूत हो जाए, अभी भी कई घरों में ये प्रैक्टिस होता है, तो वो चीज को ध्यान रखिए, बच्चे को एजुकेट करिए कि पीरियड्स है, रेगुलर है, सबको होता है, साफ सफाई रखनी होती है। पहले जमाने में मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी अगर मैं नहा लेती थी, मुझे ये बोला जाता था कि तुमने नहा लिया है तो अब तुम समझ लो तुम्हारे को बैक एक जिंदगी भर रहेगी, ये सब गलत है उस टाइम पे, बिकॉज सी ब्लड स्टेनिंग होती है बॉडी में। एक तो साफ रखिए अपने आप को, कंटिन्यूसली पैड्स चेंज करते रहिए अगर आप पैड्स यूज कर रहे हैं, हर 4 से 6 घंटे में पैड्स यूज करती हैं। आज जो बहुत अच्छी चीज कह लीजिए, आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स भी अवेलेबल है, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल सेव हमें करना है, आप जा सकते हैं, बट फिर मेंस्ट्रुअल कप्स के साथ में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उसकी साफ सफाई कैसे रखनी है, आप यूज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड नो। ठीक है, पैंटीज आती हैं आजकल, पीरियड पैंटीज आती हैं, मुझे तो लगता है कि वो तो बहुत ही अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कुछ करना ही नहीं है, आप पहनो और उसको रिमूव करके हटा दो। बच्चों के लिए जो स्टेनिंग होती है या पैड्स को एडजस्ट करने का प्रॉब्लम होता है, वो छोटे बच्चे आजकल एक्चुअली बच्चों को पीरियड्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हमने अपनी क्लिनिक्स में देखा है कि बच्चे 8-8, 9-9 साल के हैं, वो पीरियड्स उनको आने लग रहे हैं, ये सारा हार्मोनल चेंजेस है या एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से है, बट ये चीज़ें अगर हैं तो बच्चों को हमें एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखना जरूरी है,
3: बिल्कुल
2: ये तो है ही है फीमेल के पार्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है कि हमें अपने लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि भाई किसी भी फीमेल को अगर किसी तरह की कोई भी इश्यूज है तो बच्चों को चढ़ाना नहीं है, ये हमें ही अपने लड़कों को समझाना है, वहीं पे हम आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं।
3: बिल्कुल डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि एक और चीज से बच्चे बड़े परेशान रहते हैं और वो है डिस्चार्ज, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होना ही बहुत अलग है, क्योंकि एक बार तो हो गया कि चलिए हमने पीरियड्स को हमने देख लिया कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो आया और वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि अब वाइड डिस्चार्ज की बात करें तो कुछ लोग इसे डर भी जाते हैं और कुछ इसलिए बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, तो कब तक इसे नॉर्मल लेना चाहिए और कब ये चिंता वाली बात हो जाती है कि अब ये खतरे की घंटी है, समझ जाइए।
2: हमारे जो पुराने लोग थे ना, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो क्या करते थे, उन्होंने ये दिमाग में डाला कि ये जो सफेद पानी आता है ना, ये आपकी हड्डियां घुल के बाहर आ रही हैं, वो इसलिए डराते थे क्योंकि फीमेल्स वैसे तो चेकअप कराने जाएंगी नहीं, तो ये डर के ही जाएंगी। अब आते हैं वाइट डिस्चार्ज पे, जैसे हमसे साक्षी बात कर रही है, देखिए वाइट डिस्चार्ज एक साइकिल में नॉर्मल होती है, जब आपको पीरियड्स होते हैं 5 से 6 दिन तो आपको पीरियड्स होते हैं, उसके बाद 1-2 दिन आपका ड्राई होता है, ड्राई पीरियड बोलते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे जो डिस्चार्ज आता है बहुत पतला होता है, एंड 14th डे ऑलमोस्ट जब आपकी ओवुलेशन होती है, अंडा बनता है, उस टाइम पे आप अगर वो डिस्चार्ज का एक तार बनाना चाहोगे तो तार बनता है, इसको एक स्पिन बर्केट फिनोमिनन भी कहा जाता है, वो नॉर्मल चीज होती है, ठीक है, उसके बाद वो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी थिक होने लगती है, एंड पीरियड्स से हफ्ता पहले वो बंद हो जाता है, तो ये एक पैटर्न होता है, सबको होता है, अगर वो डिस्चार्ज नहीं होगा तो आप ये समझिए वो एरिया आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, चिपक जाएगा, भाई जो मैरिड है या जो सेक्सुअली एक्टिव है, हाउ दे आर गोइंग टू डू इंटरकोर्स, वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। अब आते हैं कि नॉर्मल को एबनॉर्मल से कैसे डेविए, हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तरीका ये एक्सेसिव, जैसे हमने जो डेज बात करी है उसमें तो आएगा ही डिस्चार्ज, बट उसके अलावा आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, इचिंग है, फाउल स्मेल है, ये इचिंग और फाउल स्मेल, ये दो चीजें साथ में अगर हैं तो ये डिस्चार्ज अनहेल्दी है, और प्लीज ये काम मत करिएगा कि कभी आपने अगर ट्रीटमेंट लिया है वही पर्चा निकाला चले गए फिर दुकान से दवाई खा ली। इसी के चलते रिसेंटली हम लोग एक पहले बहुत जबरदस्त मेडिसिन यूज करते थे, अब हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट बिल्कुल ही कोई इफेक्ट ही नहीं आता, हमको अब चेंज ही करना पड़ा, मेडिसिन ही चेंज करनी पड़ी है।
3: बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा अब इस स्टेज से हम आगे चलते हैं, अब आती है प्रेगनेंसी की स्टेज आ गई, तो इसमें होता है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो उनको समझ नहीं आती है कि कब एक राइट टाइम है और कब उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है या फिर बिल्कुल ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए. क्योंकि हमें बस ये लगता है कि फीमेल बॉडी है और हम थोड़ा सा ऐसे लीनियंट हो जाते हैं लेके, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी का ख्याल रखना, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे?
2: देखिए प्रेगनेंसी, अब तो खैर रिसेंटली तो हमने बहुत अर्ली मैरिजेस कम देखी हैं कि कम उम्र में शादी हो गई. मैरिजेस आजकल रादर थोड़ी डिले ही होके हो रही हैं, ठीक है. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक, अर्ली मैरिजेस बहुत नहीं होनी चाहिए, या अर्ली प्रेगनेंसीज या टीनेज प्रेगनेंसीज ठीक नहीं होती है. उसमें अनीमिया का रिस्क होता है, बच्चों को ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. बाकी नॉर्मल एज ग्रुप में जब आप प्रेगनेंसी हो रही है तो एक, बहुत एक्सेसिव वेट गेन मत करिए, वो हेल्दी नहीं होता. प्रेगनेंसी में 10 टू 11 केजीज का वेट गेन इज अलाउड, दैट टू अगर आपका बीएमआई ठीक ठाक है, नॉर्मल रेंज में. ओवरवेट या ओबीज लोगों को हम वही 5 या 6 केजीज ही फिर बोलते हैं कि आप गेन करिए. अगर बीएमआई ठीक ठाक है तो 10 टू 11 केजीज गेन करिए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. रेगुलर विजिट जरूर करने हैं, रेगुलर वैक्सीनेशंस करनी है, स्कैन्स जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो 2-3 बहुत जरूरी होते हैं. लेवल 2 बोलते हैं हम लोग जो 5th मंथ पे कराते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है 3 मंथ्स के एंड पे एक स्कैन, जिसमें अगर बच्चे में कहीं कोई पैदाइशी नुक्स होती है तो वो सबसे पहले हम पिक करते हैं एट द एंड ऑफ 3rd मंथ. उसी टाइम पे ब्लड टेस्ट भी एक होता है जो कि हमें बताता है कि बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल फैकल्टी के बारे में अगर कहीं कुछ डाउटफुल होता है तो वो हमें टेस्ट पिक करके बताता है. एंड दैट इज द टाइम वेयर वी कैन डिसाइड कि हमें आगे करना क्या है.
3: बिल्कुल डॉक्टर, डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम जो केयर होती है और मेंटल हेल्थ को लेकर कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में बात करना और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, उस बारे में बताएं.
2: देखिए डिलीवरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आती है फैमिली का, ठीक है. आज की डेट में भी हम लोग जैसे डिलीवरी कराते हैं, हम तो पेशेंट को यही बोलते हैं कि दस कंसिडर इट टू बी अ नॉर्मल थिंग, ठीक है. उसका हाय तौबा नहीं मचाना है. आज भी कई घरों में खाने को नहीं दिया जाता है, नहाने नहीं दिया जाता है टिल 6 डेज, छठी के बाद नहाना है. खाने में सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी दलिया, पेट आपका अभी कच्चा है, आंतें कच्ची हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है. देखिए पोस्टमार्टम पीरियड में जब माँ दूध पिला रही है, दूध कहाँ से बनेगा? आप अगर खाना ही नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, पानी नहीं देते पेट फूल जाएगा. पेशेंट्स आते हैं विद सीवियर इन्फेक्शन, यूटीआई हो जाता है भयानक, उनको हमें एडमिट करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है. तो वो जो पेशेंट डिलीवर होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, वो बॉडी की रिपेयर उसकी बहुत ज़रूरी है, टिश्यू रिपेयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंजरी होती है टिश्यूज को. तो उसको उस टाइम पे बहुत अच्छा खाना देना होता है. प्रोटीन आप मैक्सिमम दीजिए, दालें दीजिए, नॉनवेज खाती है घर का बना नॉनवेज दीजिए, एग दीजिए, मतलब द डाइट हैज़ टू बी गुड. दूध कहाँ से बनेगा? माँ जो खाएगी उसी से तो दूध बनता है, हवा पानी से दूध नहीं बनता. पानी दीजिए, दूध दीजिए, खाना दीजिए. आपके बच्चे के लिए माँ ने दूध करा पिलाना है तो दूध तो बनाने के लिए खाना पड़ेगा ना.
3: बिल्कुल.
2: तो आप खाना ही नहीं दोगे तो माँ कहाँ से दूध पिलाएगी बच्चे को. तो ज़रूरी है डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसी टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने लगता है या पोस्टमार्टम ब्लूज होता है, वो बहुत खराब चीज होती है. उसमें जहां हम जैसे बात कर रहे हैं फैमिली का सपोर्ट करना पड़ता है उस टाइम पे पेशेंट की, खास करके जो फर्स्ट टाइम डिलीवर होते हैं, वो बहुत बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, या मान लो रात रात भर जगना पड़ता है, बच्चा अब कुछ भी कर लो दिन भर सोएगा रात में उठेगा, उनका नॉर्मल पैटर्न होता है, उनके लिए कोई अबनॉर्मल नहीं है, हमारे लिए अबनॉर्मल होता है बिकॉज हमारी बॉडी वैसी नहीं बनी होती है. हमको रात में सोने की आदत है पर पूरी पूरी रात 4-4, 5-5 घंटे आप जग रहे हो, वो इरिटेबिलिटी होती है मदर को, बहुत चिड़चिड़ापन आने लगता है, खाना नहीं मिल रहा है, उसकी अलग प्रॉब्लम है, देन शी इज़ ब्लीडिंग ऑल्सो, चलता ही वो नॉर्मल है. तो ये सारी चीज़ें माँ को मानसिक तौर पे बहुत तंग करती है. उस टाइम पे कुछ नहीं, पेशेंस रखिए. यहाँ पे पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो फादर है, जो न्यूली, अब जैसे न्यू मदर है तो न्यू फादर भी ऑब्वियसली उसके लिए सब कुछ नया है, उसको बहुत ज़रूरी है अपनी वाइफ को सपोर्ट करना. ठीक है मदर, अब ऑब्वियसली थोड़ा एज तो हो जाता है सबके मदर्स का, तो भाई अगर आप यंग हो आप सपोर्ट करो अपनी वाइफ को. कुछ नहीं थोड़ी देर बैठिए, उसको खाना ला के दीजिए, जब वो दिन में सोने के लिए दीजिए उसको, भाई बच्चे को उठ उठ के हर दो घंटे से फीड कराना पड़ता है, वो नॉर्मल चीज़ है। तो आप एटलीस्ट उस बीच में उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके खाने का ध्यान रखिए, थोड़ा TLC टेंडर लव केयर यही देना होता है पार्टनर को, थोड़ा समझिए उसकी प्रॉब्लम को। भाई उसके शरीर में बहुत चेंजेस हैं, आपको तो चेंजेस ठीक है, आप इमोशनली आपको आप भी जाते हैं गुजरते हैं चीज़ों से, बट एक फीमेल को फिजिकल मेंटल बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस उसको सपोर्ट करिए, खाना अच्छा दीजिए, नहलाइए, साफ रखिए, उसको आपके बच्चे को हैंडल करना है, आप

0: नोइंग ही नहीं ना, मतलब हम ताउम्र तो हम ब्लीड नहीं करते रह सकते, तो उसके लिए वर्क करिए, उसके लिए अपनी डाइट का देखिए, अपनी एक्सरसाइज का देखिए, वो जरूरी चीज है. वरना पीरियड्स अगर स्कैंटी होते होते होते बंद हो जाए वो बेस्ट है. दूसरा जो दूसरा इसका अगर हम फेस पे जाते हैं जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीड करते हैं, वो तंग करने वाली चीज है. उस एज में कोई भी दवाई या कोई भी हार्मोन पीरियड रोकने के लिए या पीरियड आने के लिए नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो एज में हार्मोन्स आपको बहुत तंग करते हैं. That's not good and that needs to be investigated. तो अगर excessive bleeding है तो जो हम लोग सलाह देते हैं कि ठीक है पहले मेडिसिन ट्राई करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, कई लोगों को रसौली भी निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट देन एंड देयर डिसाइड होता है. कभी कभी हमें कुछ भी नहीं मिलता, उस केसेस में भी हमें DNC करके देखना पड़ता है कि भाई क्या हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि हमें मेडिसिन क्या देनी है. ऐसे मत खाइए कोई भी दवाई, एड देख ली, TV में देख लिया, दोस्त ने खाई थी, रिलेटिव ने खाई थी, ये काम मत करिए प्लीज.
1: बिल्कुल डॉक्टर, अब बात करते हैं हमारे एक आखिरी स्टेज की और वो है मेनोपॉज का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं. ज़्यादातर होता है कि अब इसके बाद होता है कि अब सब ठीक ही हो गया, अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए मेनोपॉज में बहुत ज़रूरी होता है, आपको यही एक टाइम है जब आपको अपने पर डबल ध्यान देना होता है, बिकॉज अब बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे. अभी तक आपकी जो ओवरीज जब आप पीरियड आते रहते हैं आपको बचा के रखती हैं, आपके हार्ट को, आपकी बोन्स को. अब आपकी ऑस्टिपीनिया जल्दी सेटअप हो गई. ऑस्टिपीनिया मतलब बोन्स आपकी वीक होना शुरू होती हैं. तो इस स्टेज पे एक्सरसाइज ज़रूर करें. बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं कि अब हो गया हमारा काम ख़त्म. नहीं, अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, डाइट की. एक्सेसिव फैट, कार्ब्स ये सब नहीं लेना चाहिए. बैलेंस रखें और कार्ब्स और फैट जितना कम हो उतना लें. प्रोटीन्स खाएं, जम के खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें. खाने की मनाही कुछ नहीं होती है, बट ध्यान रखें क्वांटिटी कितना खा रहे हैं. फिट रहें. आजकल तो हम लोग फिट एट 40 बोलते हैं, अब तो हम बोलते हैं फिट एट 60. अपने आप को हेल्दी रखिए भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आप बनने वाले हो, तो फिट नहीं रहोगे तो कैसे मस्त रहोगे? आगे अपनी जनरेशन भी तो देखनी है.
1: डॉक्टर, क्या हॉट फ्लैशेस आने, क्या ये नॉर्मल है?
0: नहीं, हॉट फ्लैशेस नॉर्मल नहीं होते हैं, बट सबसे पहले हम हॉट फ्लैशेस के लिए आपको चेंजेस अपने में बोलते हैं. कई लोगों को चयास होती है, हर 2 घंटे में चाय पीने की आदत होती है, कॉफ़ी पीने की आदत होती है, वो गलत होता है. कैफीन को सबसे पहले रोकना है, ठीक है? तो यू हैव टू लिमिट दी क्वांटिटी जितना आप ले रहे हैं. दूसरा, एक्सरसाइज. तीसरा, हम लोग आपको बोलते हैं ये टोफू खाने के लिए बोला जाता है. टोफू पनीर के जैसे ही होता है, तो डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए उसको. लौंग बहुत हेल्प करता है. एक या 2 लौंग डेली का खाना शुरू करिए. जब आप तड़का लगाते हैं तो कई घरों में जीरे का या मेथी का लगता है, उसकी बजाय राई का लगाना शुरू करिए. दिस रियली हेल्प्स, बहुत हेल्प करता है. हर सब्जी में हल्दी ज़रूर डालिए, दिस हेल्प्स, ठीक है? और अगर इससे भी हेल्प नहीं मिलती है, आप नहीं परेशान हो, होता है हॉट फ्लैशेस बहुत तंग करता है, रात में एकदम से उठते हैं पसीना आता है, एकदम से शिवरिंग होने लगती है, फिर हम आपको मेडिसिंस भी देते हैं. वी हैव मेडिसिंस, वो हेल्प करती हैं आपको, बट ऐसे मत लीजिएगा. हार्मोन्स नहीं होती हैं वो एक्चुअली.
1: जी डॉक्टर, ये सारी जानकारी आज आपने हमें दी है ज़रूर, और मैं बस आपसे जानना चाहूँगी 5 टिप्स ऐसी जो आप हमारे सभी लिसनर्स को, जो हमारी महिलाएं हैं जो वो सुन रही हैं, जो आप उन्हें देना चाहेंगी आज.
0: सबसे पहले, अगर घर में डॉटर का जन्म होता है तो उसको सेलिब्रेट करिए. उनकी एडोलेसेंस में उनको अच्छे से एजुकेट करिए, चेंजेस के बारे में बताइए, मेंसेस के बारे में बताइए. खुद अगर प्रेग्नेंट हैं, या घर में मान लीजिए आप मेनोपॉज एज में हैं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, बेटी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखिए, सही डाइट दीजिए, टैबू से बचिए, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए. चौथा, मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज में जो चेंजेस हैं उसको समझिए, कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से सलाह लें. और 5वां, अपना एनुअल हेल्थ चेकअप ना भूलें, ज़रूर कराएं.
1: बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी जानकारी दी. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती
0: हूं. थैंक यू साक्षी, थैंक यू.
1: चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत. आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानवरत्न 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया.
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये

0: दिल चल जल्दी से रेडियो सुने।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आई हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यू। तो आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मार्फत 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो अपने आप में बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं। हर बार हम यहाँ पर एक एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं जो अपनी लाइफ की ओवरऑल जर्नी से बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। आज के हमारे मेहमान है मिस्टर अभिषेक शर्मा। अभिषेक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। अभिषेक पहले रेडियो मानव रचना के साथ काम कर चुके हैं, नाउ ही इज डूइंग रियली गुड, आगे बढ़े अपने लाइफ में और कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया। पहले यहाँ पर ऑडियो इंजीनियरिंग करते थे, अब बहुत सारे डोमेन्स उन्होंने और एक्सप्लोर करे हैं। तो प्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जो उनकी डोमेन में फॉल करती हैं उनकी बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे अभिषेक का। अभिषेक स्वागत है आपका।
2: हेलो हेलो सागर भाई, कैसे हो?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ भाई।
1: अभिषेक थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, क्या आपका डोमेन है, प्रोफाइल क्या है, एक्सपर्टीज क्या है आपकी, ताकि हमारे लिसनर्स को पता लगे आपके बारे में।
2: सो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 7 साल से अपने मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग अपने, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, सो मैंने बीएससी आईटी किया था मानव रचना से, और फिर उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया था, मैं कोडिंग करता था माइक्रोसॉफ्ट में, 1 साल मैंने पूरा जॉब किया। फिर मेरे को अंदर से फील हुआ क्या मेरे को कुछ ऐसा अलग हटके करना चाहिए जो मेरा मन कह रहा है करने को। तो फिर मैंने 1 साल अपनी पढ़ाई करी दोबारा से, मैंने पीजी डिप्लोमा किया मानव रचना से पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में। देन मैं रेडियो मानव रचना में इंटर्न लगा था, जहाँ पर मैं सारी साउंड एडिटिंग रेडियो में करता था, वीडियो एडिटिंग करता था, फोटोज वगैरह क्लिक करता था, वीडियो शूट पे जाता था, ओबीज लेता था, फिर कुछ महीनों के लिए आरजे भी बना शाम के शो का। सो ऐसे करके मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम सीखा, और फिर अच्छे से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ से मूव किया अपना करियर। वहाँ पर मैंने गाना.com के लिए काम किया था, गाना ऐप का मैं AI, जो गाना ऐप का जो UI था वो मैं डिजाइन करता था, वीडियोज वगैरह शूट एंड एडिट करता था। देन ऐसे करते करते फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट है रेडियो मिर्ची, उसमें मैं प्रोड्यूसर लगा। सो उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे उनका मैं सारा कंटेंट डिजाइन करता था, शूट से लेके एडिट तक, कि क्या कंटेंट होना चाहिए। आइडिएशन पे बैठता था आर्टिस्ट के साथ, मिर्ची मुर्गा काफी फेमस हुआ करता था उस टाइम पे, सो उसके आइडिएशन में मैं रहता था, और उसमें जितने वॉइस ओवर्स थे उसमें मैं हेल्प करता था। देन एडिटिंग पार्ट तो हमेशा रहा है मेरा करना, शूट भी मैंने वहाँ पे सीखा। मैंने वैसे देखा जाए सागर भाई, मैंने वैसे सीखा नहीं काम, लेकिन मैं जॉब के साथ साथ ही सीखता चला गया काम। अब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो मानव रचना में जब मैं था रेडियो में, उस टाइम पर मेरे को काफी सीखने को मिला, भले ही मैं इंटर्नशिप पे फिर जॉब से कन्वर्ट हुआ, बट मैंने काम वहीं से सीखना स्टार्ट किया। सो ऐसे करते करते मेरे को जॉब मिलती चली गई, मैं ट्राई करता चला गया और मेरा एक्सपीरियंस गेन होता गया मेरा, और मैं काम सीखता गया। उसके बाद फिर मैं भाई इंडिया टुडे आज तक में 2.5 साल काम किया, उस पर मैं प्रोड्यूसर था। उसमें क्या कहते हैं, जितने भी इनकी वेब सीरीज होती थी, स्मॉल वेब सीरीज जो इनकी OTT पे जाती थी, उसमें शूट करता था, एडिट करता था। उसमें फिर मैं डायरेक्शन में भी ऐड हो गया था, उसमें कंटेंट में डायरेक्ट करता था जो भी शूट होता था, और स्पॉन्सर्स वीडियो होती थी, वीडियो ब्रांड की वीडियोज होती थी, एंड काफी कॉन्सर्ट्स होते थे, कॉन्सर्ट्स का पूरा वीडियो प्रोडक्शन काम संभालता था। सो मेरी प्रोफाइल धीरे धीरे करके पूरी प्रोडक्शन वाली ही बन गई, जिसमें मैं प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का सारा जो भी टास्क होता है वो मैं मैनेज करता था। पहले मैं खुद करता था, देन फिर मेरे को टीम अलॉट हुई, फिर मैं टीम के साथ करने लग गया। सो ऐसे कर करके मेरे को आगे करियर में ग्रोथ मिली, और करेंटली मैं अभी NDTV में काम करता हूँ। सो NDTV में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर अपॉइंट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर मेरा काम बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, टीवी शोज भी हैं, और क्या कहते हैं जो सोशल मीडिया के कंटेंट होते हैं, रील्स वगैरह वो भी हैं। सो अब मैं सारा आइडिएशन पार्ट संभालता हूँ और सारा प्रोडक्शन संभालता हूँ विद माय टीम। सो भाई मेरा ये करियर ग्राफ रहा है पूरा, बट मानव रचना का मेरा बहुत बड़ा हाथ है पूरे करियर ग्रोथ में।
1: जी बहुत ही सुंदर। तो अभी तक हमने अभिषेक से बात करी है, अभिषेक ने अपने शब्दों में खुद बताया कि उन्होंने कैसे कैसे करते करते चीजें सीखी हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर हमें समझ में आती है कि आप बैठ करके घर पे थ्योरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो जीवन में, आपको करते करते चीजें समझ में आती है, क्या रखना है, क्या निकालना है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये बाद में फिगर आउट होता है। आपको काम करते रहना चाहिए, आपको फील्ड में बने रहना होगा, ये अभी तक अभिषेक की यात्रा से हमने सीखा है। फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे प्रोडक्शन की, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सपर्टीज की बात करेंगे, काम कैसे शुरू होता है, जॉब में क्या क्या चीजें हैं, कैसे जॉब में एंटर किया जाता है, तमाम चीजें, आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ और उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जो म्यूजिकल वाइब अभी आपने सुनी वो आपको मजा आया, आपको शो पसंद आ रहा है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, अपने शब्दों में बता चुके हैं आपको कैसे उनकी यात्रा रही, कैसे उन्होंने रेडियो से लेकर के न्यूज़, फिर उसके बाद कमर्शियल रेडियो, देन उसके बाद वेब सीरीज, OTT, सोशल मीडिया, प्रोडक्शन, सब कुछ उन्होंने संभाला। आइए एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं अपने शो को और अभिषेक से फर्दर हम डिकोड करते हुए जानना चाहेंगे। यहाँ पर अभिषेक, प्रोडक्शन के बारे में बताइए। व्हेन यू आर सेइंग प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में फॉल करते हैं, थोड़ा अच्छे से हमारे लिसनर्स को पता लगे कि एग्जैक्टली जो ये वर्ड सुनते हैं हम लोग प्रोडक्शन, ये होता क्या है।
1: सो सागर भाई, मैं अगर प्रोडक्शन को डिवाइड करूं तो इसके तीन पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं प्री प्रोडक्शन से। सो प्री प्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, हमारे पास कोई भी चीज होती है, पहले आइडिया होता है कि आइडिया को कैसे डेवलप करना है। आइडिया के डेवलपमेंट में हम बैठते हैं, अगर आपके पास टीम है तो आप टीम के साथ बैठोगे, अगर आपको खुद पे एक आइडिया है तो आप उसको पूरा एक्सटेंड करके पूरा एक ड्राफ्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम फिर उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, देन स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद हम लोग उसके स्टोरी बोर्डिंग बैठते हैं, फिर शूट प्लान करते हैं कहाँ पर शूट होगा, कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, आउटडोर है, इनडोर है। देन उसके बाद हम एक रेफरेंसेज लेते हैं कि हमारा कंटेंट किस ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है कंटेंट उसकी तरह लगेगा, सो हम रेफरेंस वहां से ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग के लिए कि पूरा हमने डिजाइन कर लिया प्रोडक्शन, फिर हम उसके शेड्यूलिंग में बैठते हैं कि कब कैसे और किस टाइम करना है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी देखनी होती है, इक्विपमेंट्स भी देखने होते हैं, लॉजिस्टिक्स भी देखने होते हैं, मैन पावर भी देखना होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम सब उसको शेड्यूल करते हैं। देन हम बजट देखते हैं कि बजट का क्या रहेगा, बेसिक बजट क्या है, एक्सटेंड कितना हो सकता है, हमारे फाइनेंसिस कैसे हैं, कोई अलग से इसमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई क्या कहते हैं कोई पार्टनर है, सो सारा जो मनी रिलेटेड इशू होता है वो इसके अंदर आता है। फिर हम लोकेशन के लिए जाते हैं, रेकी करते हैं कि जो भी हमारा पूरा ड्राफ्ट बनाए हम किस लोकेशन में जाके सूटेबल, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ शूट कर सकते हैं, वहाँ की परमिशन लेना, ये सब उसमें आता है। देन हम फिर करते हैं कास्टिंग, जिसमें हम लोगों के ऑडिशंस लेते हैं, हम पूरी कास्टिंग बिठाते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पॉट बॉयज होंगे, कितने DOPs होंगे, कितने एक्ट्रेस होंगे, एक्ट्रेसेस होंगे, साइड एक्टर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक पूरी कास्टिंग होती है। और ये सारा जो पार्ट होता है सारा प्री प्रोडक्शन में आता है। और अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं कि हमको कैमरा कैसे चाहिए, जिसमें हम सिनेमाटोग्राफी के ऐड करते हैं मूवीज के लिए, जिसमें हम DOPs और कैमरा इक्विपमेंट्स, लाइटिंग की बात करते हैं, सो कैमरा किस टाइप के होने चाहिए, किस टाइप की उनके लेंसेज चाहिए, फ्रेम रेट कैसा रहेगा, रेजोल्यूशन क्या रहेगा, और ISO लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और क्या क्या मूवमेंट रहनी है, कैसे ट्राइपॉड्स यूज होने हैं, डॉली शॉट है, ट्राइपॉड पे है, या फिर क्या कहते हैं आपका ड्रोन शॉट है, टॉप एंगल शॉट है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं हम इक्विपमेंट्स में उसको लेते हैं कैमरे के लिए। फिर मेन पार्ट होता है जो अब तक मैंने अपने करियर में देखा है कि अगर आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, आपने क्या फोन शूट किया हो, अगर आपका ऑडियो खराब है या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है या फिर कुछ भी ग्लिच है, तो वो कंटेंट बेकार है आपका, लोग उसको देखना पसंद ही नहीं करेंगे, अगर उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा सही से, अगर ऑडियो की क्वालिटी बहुत बेकार है। सो इसलिए हम माइक्रोफोन जितने भी होते हैं हम उसको देखते हैं किस क्वालिटी का है, कितना उसमें नॉइस कैंसिलेशन है, सो वो बहुत मैटर करता है प्री प्रोडक्शन में। सो ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा टॉप नॉच रहनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी का ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा, लेकिन ऑडियो प्रोडक्शन आपके हमेशा HD हाई क्वालिटी में ही रहनी चाहिए। और फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है कि वो कौन कर रहा है, उसमें क्या टैलेंट रहेगा डायरेक्शन का, जो वर्किंग कल्चर होता है सेट पे वो कैसा रहेगा, वो सब हम डिजाइन करते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में आपका ये होता है कि आपके पास सारी रॉ फुटेजेस आ गई, जितना भी आपने शूट किया A to Z कंटेंट वो आपके पास एक रॉ फुटेज में आ गया, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ एक कॉपी बनाई और उसको सीधा प्रोडक्शन टेबल पे भेज देते हैं एडिट के लिए। तो आपको 2 से 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए आपके सारे रॉ कंटेंट की, क्योंकि बहुत पैसा लगा होता है, बहुत मेहनत होती है लोगों की, काफी सारे स्टाफ के मेंबर काम करते हैं, अगर वो इधर उधर हो जाता है कंटेंट सो आपका सारा काम खराब। तो इसलिए बेटर है कि आप उसका बैकअप लेके रखें, क्लाउड पे भी लेके रखें, और फिजिकल फॉर्म में आप किसी हार्ड ड्राइव में भी 1 से 2 कॉपी बना के रखें। फिर हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, तो उसमें एडिटिंग पे जाता है आपका, जितने भी इसमें फंडामेंटल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के वो करते हैं, एडिटिंग का एक वर्क फ्लो बनाते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा रहेगा, रफ कट कैसा रहेगा। सो एडिटिंग में जो एडिटर होता है और साथ में जो डायरेक्टर होता है वो साथ में बैठ के काम करते हैं, मोस्टली डायरेक्टर नहीं बैठते हैं, बस एडिटर को ब्रीफ देके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर को ऑब्वियसली बैठना चाहिए, क्योंकि उसका एक विजन होता है कि मेरे को अपनी मूवी या मेरे को अपनी सीरीज या मेरे को अपना टीवी शो ऐसा दिखाना है ऑडियंस को. सो एक वो उसका एक पीओवी रहना चाहिए एडिटर के साथ. देन कलर करेक्शन होती है कि सारा पूरी जो मूवी है, पूरा जो हमारा कंटेंट है, उसकी जो कलर करेक्शन है वो ऐसी दिखे कि कहीं पे लो लाइट कंडीशन में हमने शूट किया, कहीं पे हाई में किया है. सो उसको एक पूरा एक मीडियम फॉर्म में ला के उसको सेटल कर देते हैं, ताकि वो देखने वालों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहे और ऊपर नीचे और प्रोफेशनल भी दिखता है वो काम, अगर आपका कलर ग्रेड अच्छा होता है तो. ऑडियो मिक्सिंग ऑब्वियसली टॉप नॉच होनी चाहिए आपकी. जितना भी हमने कंटेंट शूट किया, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि हम ऑन लोकेशन ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो को, बट कुछ ऐसा होता है कि हम डब करना पड़ता है, तो डबिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. सो दैट आपको वीडियो प्रोडक्शन के साथ साथ ऑडियो प्रोडक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होती है. ऑडियो प्रोडक्शन में होता है कि कहीं कहीं पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, तो उसके लिए आपके साथ एक कंपोजर भी होना चाहिए, म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए, कि आप उसको ब्रीफ दे पाए क्या मेरे को यहाँ पे थोड़ी टेंशन क्रिएट करनी है इस वाले सीन में, तो मेरे को टाइप का म्यूजिक देना है. सो वो साथ में एडिटर के साथ ही काम होता है. VFX की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि कहीं पे मेरे को, जैसे मेरे पीछे लाल किला दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को लाल किला नहीं दिखाना है वहाँ पे, सो वो उसको रिमूव कर दिया. कोई सोचता है कि यार मेरे को लाल किले की जगह मेरे को ताजमहल दिखाना है, तो वो दिखेगा, ऐसे करके होता है. सो ये सारा जो पार्ट होता है ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है. सो धीरे धीरे आप सीखोगे करते करते, जैसे मैंने सीखा.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो बहुत बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सिंपल शब्दों में अभिषेक ने हमें यहाँ पर बताया प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है. उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये तमाम बातें आपने सुनी तो होंगी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये अभी अभी हमें अभिषेक ने बताया और उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक समझ पाए हैं. चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ आएंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ पर एज अ स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, काम कैसे मैनेज होता है, सब चीजें जानेंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ. आप लोग सुन रहे हैं इस टाइम रेडियो 107.8 FM.

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा है. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए अभिषेक के लिए तो प्लीज 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा. शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ और यहां पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं. बहुत सारी बातें अभी तक हमने करी हैं, अभिषेक के डोमेन को समझा है, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, क्या क्या चीजें होती है सब हमने जाना है. आइए लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग कि इस फील्ड में काम कैसे मिलता है. तो अभिषेक प्लीज हमें बताइए कि इस फील्ड में काम ढूंढने के लिए क्या करना होता है. अगर किसी को जॉब करनी है तो क्या करना होगा, किसी को अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा.
1: या सबसे पहले अगर आपको जॉब भी करनी है तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करिए. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज खत्म करके आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, सो आप ढूंढिए कि आपके एरिया में या फिर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस हो जो ऑलरेडी सब काम करता हो और आपको इंटर्नशिप वहाँ मिल जाए. सो आप वहाँ पे आप काम भी करोगे, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपके लिंक भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना काम उस प्रोडक्शन हाउस से करवा रहे हैं, फिर आप ही हैंडल कर रहे होंगे उनके काम को. सो दैट आपके लिंक बनते हैं, आप काम भी सीख रहे हो एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट ऑल्सो. सो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप यंग एज में हो तो आप इंटर्नशिप के लिए जाएं, साथ साथ आप पैसे भी कमाएंगे और काम भी सीखेंगे और लिंक भी बनेंगे आगे चल के. और अगर आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, सो आप एक अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं. मान लो आपने किसी ABC कंपनी में एक साल के लिए काम किया, सो आप उसका एक पूरा कैटलॉग अपने पास रखें, जो भी आपने वहाँ पे काम किया है उसका एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसका एक पूरा कैटलॉग बनाएं. जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे जॉब सर्च के टाइम पे वहाँ पे आप उसको शो करिए. और जरूरी नहीं है, लोग ये गलती करते हैं कि यार मेरे पास वही काम है जो मैंने कंपनी में किया है. आपके पास कैमरा है, नहीं है तो आप रेंट कर सकते हैं, दोस्त से ले लिया, फोन है, मोबाइल है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप अपना खुद को कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा शूट करिए, एडिट करिए और वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कैटलॉग में. ये नहीं कि आप सिर्फ कंपनी का ही काम दिखा रहे हो, आप अपना काम भी दिखा रहे हो. सो ये आप दिखाते हैं तो आपके पास काफी हाई चांस रहते हैं कि आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में लग जाते हैं. और कोई अगर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप खुद का एक कैटलॉग डिजाइन करिए, खुद का एक आइडिया क्रिएट करें, कंटेंट शूट करिए, एडिट करिए और उसको ऐसे ट्रीट करिए कि ये आपकी फिल्म है. उसकी तरह आप उसको शूट करके आप अपने कैटलॉग में ऐड करिए और फिर आप जितने प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रांड है जिनका इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी रीच है, उनको रील्स बनानी है अपनी शूट के लिए, वो ढूंढते हैं लोगों को, आप उनको पिच करिए, उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए और उनकी मेल आईडी पे कनेक्ट करिए और अपना कैटलॉग सेंड करिए अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ और अपने जो भी चार्जेस होते हैं वो मिनिमल रखिए, ना कि हायर साइड, क्योंकि आपका काम देख के दूसरा बंदा भी आएगा. भले आपने पहले प्रोजेक्ट में पैसे कम लिए हों लेकिन पहले प्रोजेक्ट से काम आपका आगे बढ़ेगा और फिर दूसरा क्लाइंट उसको देख के अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ. तो ऐसे आप धीरे धीरे नोट बाय नोट कनेक्ट होते चल जाएंगे और आपका करियर बन जाएगा इसमें.
0: जी जी जी बहुत उम्दा. एक और चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में. सोशल मीडिया का प्रोडक्शन भी एक प्रोडक्शन होता है. बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी इंसान को अपने सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे प्रोडक्शन प्लान करे वो एक बार और बता दीजिए.
1: तो सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना कंटेंट आगे पहुंचाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका पेज लोग आपको क्या करते हुए देखना चाहते हैं और आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं. पहले आप ये जानिए कि आपकी ऑडियंस क्या है. जब आपको पता पड़ जाए कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ये एज ग्रुप के लोग मेरे कॉन्टेंट ज्यादा देख रहे हैं, सो आप उसी के अराउंड अपने कॉन्टेंट को एनहांस कर दीजिए, उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, उसके उसके जो कॉन्टेंट के अंदर है थोड़ा डेप्थ लिया है ताकि वो रिलेटेबल इतना हो जाए कि लोग या तो सेव करें उस कंटेंट को या फिर वो रीशेयर करें. रीशेयर से क्या होता है कि और रीशेयर वही कंटेंट होता है जो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. जैसे कि कुछ भी 90s के कुछ भी कंटेंट है, अब जो लोग 90s के टाइम से निकलते हुए आ रहे हैं सो उनको एक नॉस्टैल्जिया वाली वैल्यू फील होगी तो वो उसको शेयर करेंगे और सेव करेंगे. अगर आपका कॉन्टेंट ज्यादा अच्छा होगा और हाई चांस ये रहते हैं कि आपका कॉन्टेंट ज्यादा अच्छा है और आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसकी शेयरेबिलिटी भी ज्यादा है तो आप ऐसे लोगों के पास तक पहुंच जाते हैं आपके कंटेंट, जो कि क्या कहते हैं बॉलीवुड के बिग प्रोडक्शन हाउसेज हो गए. सो वहां पर आप अगर आपका कंटेंट जाता है सो आपका वेल एंड गुड है, आप काफी ग्रो कर सकते हैं, आपको चांस मिलेगा वेब सीरीज में काम करने का, मूवीज में काम करने का. बट ये सबसे लेटर पार्ट होता है. स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद भी कॉन्टेंट खुद भी शूट करें, कुछ भी करें, शेयरेबिलिटी लाने के लिए आप ऐसा कॉन्टेंट यूज करिए कि जिसमें लोगों को या तो कुछ सीखने को मिले या किसी को सिखाने के लिए मिले, यही कंटेंट होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा उसमें पर्सनल टच हो जिससे लोग फील करें कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ये शायद मैं ही हूँ, ये मेरी ही कहानी है, ऐसा तो मैं ही करता हूँ, ऐसा तो वो करता है, तब जाके आप कहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अभिषेक ने बताया कि शेयरेबिलिटी के ऊपर आपको काम करना चाहिए कि लोग उससे रिलेट करें, रिलेटेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का, क्योंकि अगर लोग रिलेट करेंगे तो ही उसको शेयर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अभिषेक, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने आप पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: सागर भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेज लाइफ को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रखें, कॉलेज लाइफ में आप काफी कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कॉलेज टाइम में ही आप कंटेंट बनाकर भी जॉब से पहले, कॉलेज खत्म होने से पहले आप अपना करियर बूम कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने कंटेंट की जर्नी को भी स्टार्ट जरूर करें कॉलेज में। हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटेंट की तरफ झुक गए सारा टाइम या फिर पढ़ाई की तरफ, मिड में रहना चाहिए, दोनों तरफ अच्छा करें, और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच अभिषेक, इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, शुक्रिया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। अभिषेक सर ने बात करी, अभिषेक शर्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें पूरा प्रोसेस बताया कैसे एग्जैक्टली काम करता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सोशल मीडिया पे कैसे काम होता है, कैसे वायरल होती हैं चीजें, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, कैसे अपना नाम कमा सकते हो, करियर कैसे बना सकते हो, बहुत कुछ आपने जाना। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी एपिसोड को आप सुनना चाहते हैं तो हमारी आई रेडियो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, रेडियो मानवश्ना की, वहां पर आपको सागर नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, वॉइस ऑफ यूथ फीचरिंग अभिषेक शर्मा नाम से एक फाइल होगी, आप उसको सुन सकते हैं। बार बार बार बार आप सुनेंगे, इन सवालों के जवाब आपको बार बार बार बार मिलते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर साइन अप करने का, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और वक्त हुआ है आप ही के बारे में कुछ खास बातें करने का। बदलती दुनिया और दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो हुई है अब तक वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम सब जुड़ गए हैं। कुछ साल पहले हमारे घर में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था। जब बजता था तो बच्चे खास तौर पर भागते थे उस फोन को उठाने के लिए। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, और साथ ही हुआ करते थे टेलीविजन। धीरे धीरे समय बदला, जगह ले ली कंप्यूटर्स ने, कंप्यूटर्स के साथ बदलाव आए तो आ गया फोन। जी हाँ, फोन, वो भी सेल फोन जो आपकी जेब में समा जाता है। और ये फोन अब आपका टीवी भी बन चुका है, आपका कंप्यूटर भी बन चुका है, और फोन तो है ही, लेकिन इसके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आज जिस चीज से हमें डर लगता है वो है अपराध, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी हाँ, साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम आपके फोन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, 5 से 50 हजार या फिर 1.5 लाख तक की कीमत का भी अवेलेबल है बाजार में, और हर किसी के हाथ में है। जितनी आबादी उतने ही फोन कनेक्शंस, लेकिन इन फोन कनेक्शंस के जरिए बढ़ते अपराधों ने हर किसी की नींद खराब कर रखी है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार जी, ACP साइबर क्राइम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: जी, थैंक यू।
1: सबसे पहले सर, मैं जानना चाहती हूँ, हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे दर्शकों को और साथ ही रेडियो पर अपने श्रोताओं को आज साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहते हैं
2: जी।
1: लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, और हमारी जिंदगियों को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है आज की तारीख में।
2: साइबर क्राइम को आप अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे अपराध जो साइबर के माध्यम से होते हैं, फोन, लैपटॉप, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आपके फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से आपको चोट पहुंचाई जाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, तो ऐसे सभी अपराध साइबर क्राइम में आते हैं
1: जी। यानी हम जो फोन इस्तेमाल करें, हम जो लैपटॉप का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर्स हमारे घरों में हैं, उनके थ्रू जो अपराध हो रहे हैं और हमारी जिंदगियों को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं
2: जी।
1: अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर इसका यही देखा कि फाइनेंशियली आपको इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पैसों पर इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या साइबर अपराधियों का कोई और उद्देश्य भी होता है?
2: जी देखिए, फाइनेंशियल के अलावा आपका पर्सनल डाटा वो चुरा लेते हैं
1: जी,
2: आपकी पर्सनल फोटोज आपको डिफेम करने के लिए यूज हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं इससे ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा परिवार भी खतरे में आ सकता है
1: जी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं
2: जी,
1: डेटा हैक करना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल, और वो डेटा आगे सेल किया जाता है, तो वो कंपनीज अपना जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अलग चीज हो जाती है। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, और ये मैं चाहूंगी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताएं, कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं जो सबसे ज्यादा आजकल चलन में है, और कौन से ऐसे हैं जो हुआ करते थे या फिर भी आगे भी कुछ पॉसिबिलिटी है उनके होने की?
2: देखिए, सबसे पहले जब साइबर क्राइम हुआ था तो सिंपल आपके पिन नंबर से और आपके अकाउंट नंबर से पैसे एक्सेस होने शुरू हुए थे
1: जी।
2: उसके बाद बैंकों ने सेफ्टी बढ़ाई और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दी। उसमें दो स्तर पर जो है ना आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की जाती है
1: जी।
2: और उसके लिए आपको पिन नंबर के साथ साथ आपके पास एक OTP भी आता है। तो उस OTP को लिखने के लिए उसको आपसे संपर्क करना पड़ता है
1: जी,
2: हर तरीके से। तो वो फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी उनको वो OTP चाहिए
1: जी।
2: वो आपको बहका के, फुसला के कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, हम आपकी KYC पूरी कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है, या आपका जो फोन नंबर है वो बंद होने वाला है, उसकी KYC कराइए, उसके लिए आपके फोन पे OTP आया वो बता दीजिए। तो किसी भी तरह से आपसे OTP लेंगे, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना ओटीपी शेयर ना करें जब तक कि आपने कोई ऐसा प्रोसेस शुरू ना कर रखा।
1: जी जी,
2: रैंडमली आपके फोन पे कोई कॉल आती है और वो ये कहता है कि जी आपके फोन की हमें केवाईसी करनी है या आपके अकाउंट की केवाईसी करनी है, और वो आपसे ये कहता है कि भाई हम एक लिंक भेज रहे हैं वो क्लिक करिए, या हम एक ओटीपी भेज रहे हैं वो हमें ओटीपी बता दे, तो ऐसा कतई ना करिए, उनकी बातों पे यकीन मत करिए। जब तक आपने बैंक के किसी व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपको फोन नहीं कर रहा है, कभी भी बैंक आपसे फोन पे ओटीपी या इस तरह के यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगते।
1: यानी पासवर्ड्स कभी भी कोई बैंक नहीं मांगता।
2: दूसरा फ्रॉड आजकल चला हुआ है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है घर बैठे पैसे कमाए, सस्ते छोटे पैसे लगा के मोटा मुनाफा कमाए। उसमें क्या करते हैं कि आपको ये कहते हैं कि हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, वो कई गुना हो जाएगा। वो आपको एक टेलीग्राम पेज पे ले जाते हैं और शुरू में आपसे बात करेंगे फिर टेलीग्राम पेज पे ले जाएंगे। कई फ्रॉड इस तरह के हैं, आपको शुरू में प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल भी देते हैं ताकि आपको उन पे यकीन हो जाए। जब आपको छोटा प्रॉफिट दे देंगे आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप उसमें बड़ा इन्वेस्ट कर दोगे।
1: बिल्कुल,
2: कई बार आपका प्रॉफिट वो दिखाते रहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो गया, लेकिन वो ये कहेंगे निकालने से पहले आपको इतने चार्जेस जमा कराने पड़ेंगे, इतना और खेलिए आप, इतना स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करिए। वो आपको सिर्फ पेज पे दिखाते रहेंगे, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होगी। और जिस दिन आप उनको फोर्स करोगे कि हमारा पैसा वापस दो, तो वो अपने फोन नंबर, वो टेलीग्राम पेज, वो सब कुछ आपका बंद कर देंगे।
1: ओके, तो इस तरह के फ्रॉड कर देंगे और अपना अकाउंट जो है वो आपसे मतलब आप रीच नहीं कर पाएंगे।
2: जी, तीसरा फ्रॉड आजकल इंश्योरेंस के नाम पे चल रहा है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा उनके पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो आपको कॉल करते हैं कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप इतने पैसे और सबमिट करा दें तो आपको इतने का प्रॉफिट और हो जाएगा।
1: ओके,
2: तो वो आपको पॉलिसी का अकाउंट ना देके कोई और अकाउंट देते हैं।
1: ओके,
2: आप यकीन करके उसमें पॉलिसी के पैसे जमा करा देते हो, लेकिन उसका उस पॉलिसी से कोई संपर्क नहीं होता, सिर्फ वो आपके डेटा से आपको एक्सेस करते हैं, फोन पे आपको बात करते हैं और आप उनके दिए हुए अकाउंट में पैसा जमा करा।
1: बिल्कुल,
2: और आजकल एक नई चलन की बात जो चली हुई है डिजिटल अरेस्ट, हर जगह इसकी बात चल रही है। तो डिजिटल अरेस्ट में आपके डेटा से ही आपको मूर्ख बनाया जाता है कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, फोन में वीडियो कॉल होगी आपकी, वीडियो कॉल में ये दिखाया जाएगा कोई वकील बोल रहा है या कोई जज साहब बोल रहे हैं या कोई पुलिस से कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है या कोई आईजी बोल रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है। और वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल करता है कि ये हो गया है, वो हो गया है, आपका एक पार्सल था उसमें एनडीपीएस मिला है, ड्रग्स मिली है, आपने ऐसा अपराध किया है, तो आप डर जाते हो, आपका एक पार्सल आने वाला था, हमने उसमें खोला, उसमें ये पैसा मिला है। तो वो उसको बिल्कुल ऐसे डरा के उसका दिमाग ब्लॉक कर देते हैं कि वो कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं रहता। फिर नेक्स्ट जो सामने वाला बंदा है जो कमांड करता है फिर वो उस हिसाब से डील करने लग जाता है।
1: डर जाता है
2: आप इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ तब जाके आपको हम रिलीज करेंगे, ये बेल बॉन्ड है या और कुछ है, टेक्निकल टर्म में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं।
1: ओके, लेकिन सर ये भी जानना चाहूंगी आपसे, डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो चुका है आज की तारीख में, फरीदाबाद शहर की बात करें तो हर हफ्ते या हर महीने में कहूंगी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोगों ने लाखों रुपए तक अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर दी, अपनी गाड़ियां तक सेल कर दी हैं। सो डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो रहा है, फोन पर सरकार के मैसेजेस भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसी कमी हो रही है, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज?
2: देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ को हर इंसान तक पहुंचने में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं लेकिन हम इन बातों से अवेयर नहीं होते कि भाई उसके लोग मिसयूज़ कितना कर सकते हैं, आपके साथ उसके मार्फत कितना मतलब धोखा हो सकता है, कितना फाइनेंशियल ठगी हो सकती है और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आप देखते हैं जैसे ही हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो होम मिनिस्ट्री ने एक कॉलर ट्यून बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो हर लेवल पे हम हर स्तर के बच्चे को, बुजुर्ग को, मीडियम एज को, फीमेल्स को, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और जो एक कॉमन एरिया है वहाँ पे जाके भी लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे अभी सूरजकुंड मेला लगा था हमने, बहुत सारे लोगों को जितने वहाँ आए सबको अवेयर किया। हमारा एक फरीदाबाद पुलिस में ट्रैफिक ताऊ करके है
1: जी, जी।
2: वो जो 1930 हमारी हेल्पलाइन है, हमने उसकी पब्लिसिटी की है, सबको हम बता रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम अवेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इस चीज से दूरी बनाए हुए,
1: उनको नहीं पता,
2: उनको नहीं पता है, इसलिए वो उस चीज का शिकार हो रहे हैं। जबकि नेट पे कई सारे पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके अवेयरनेस ले सकते हो, लेकिन बस वही बात है कि जब तक हम खुद से इस चीज को पहल नहीं करेंगे,
1: हाँ।
2: तब तक हम इस चीज के बारे में जागरूक नहीं हो सकते
1: जी।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ।
1: सर, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा मात्रा में फंस रहे हैं?
2: अभी प्रेजेंट स्टेज में तो इन्वेस्टमेंट का ही चल रहा है, जो स्टॉक मार्केट के नाम पे
1: थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको डबल प्रॉफिट देंगे।
2: सबसे ज्यादा केस एट प्रेजेंट ही नहीं क्या आ रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट क्या आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से जब से डिजिटल युग जो है ना और तेजी से बढ़ा है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो ऑनलाइन हम ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो उस चीज की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कोरोना से पहले हार्ड मनी चलती थी, कैश चलता था।
1: बिल्कुल।
2: आजकल हर कोई फोन पे, पेटीएम, हर कोई यूज करता है, हर रेडी वाला, हर आम आदमी, मजदूर, हर कोई यूज करने लग गया। तो अब वो बंदे जो इतना पैसा जो हम डिजिटल युग में यूज कर रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में जो यूज किया जा रहा है, फिर उसमें अपराध होने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग हर जगह स्कैन कर लेते हैं अमाउंट देने के लिए, स्कैनर लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ हमने ये भी सुना है कि ऐसे स्कैन करके आपका अपना अकाउंट भी खाली हो जाता है अगर कोई स्कैनर ऐसा आ गया तो सामने, क्या ऐसा भी पॉसिबल है?
2: नहीं, देखिए ऐसा है, स्कैन में ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या और कुछ नहीं देते। स्कैन करके जैसे जितना अमाउंट आपने फीड किया, जब तक आपके फोन में कोई ऐसा ऐप नहीं है जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख पाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड फोन हैं, हम उसमें जितनी भी एप्स डाउनलोड करते हैं, तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमें हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है।
1: बिल्कुल।
2: आपके कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन अलाउ करने के नहीं है, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जब आप उसको बिना पढ़े लिखे हर चीज से एग्री करोगे तो वो जो ऐप है फिर उन सब चीजों का एक्सेस है उसके पास, आपके कॉन्टैक्ट का भी है, आपकी गैलरी का भी है, आपकी गैलरी में पासबुक भी होती है,
1: बिल्कुल,
2: चेक की भी फोटोकॉपी होती है।
1: बिल्कुल।
2: कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, उसकी भी फोटो खींच के रख लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो सारी चीजें उनके पास एक्सेस हो गया, तो उनके लिए बड़ा इजी है। दूसरी बात ये है कि पासवर्ड हम बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि जो हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े।
1: बिल्कुल।
2: 1, 2, 3, 4 मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरी शादी की डेट ऑफ बर्थ,
1: मतलब कुछ
2: शादी की डेट, हाँ। जो हमारी कॉमन चीजें हैं, तो उन कॉमन चीजों को अगर आपका फोन एक्सेस होता है इजीली, उनको वो सारी चीजें पता लग जाती है।
1: बिल्कुल।
2: आपकी मार्कशीट है तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी शादी की डेट की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या और कुछ है, वो सेलिब्रेशन कर रखा तो वो भी उसमें डेट है, तो उनके लिए बड़ा इजी होता है पासवर्ड क्रैक करना।
1: सर, एक और टर्म हमने सुनी है, फिशिंग एंड विशिंग। ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आम इंसान को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगी आज आप हमारे श्रोताओं को बताएं, समझाएं कि ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली क्या हैं।
2: देखिए, फिशिंग जैसे कि मछली पकड़ी जाती है, उसी की सिमिलर टर्म है ये। कांटा फेंका जाता है किसी को फंसाने के लिए,
1: पूरा जाल बिछाया जाता
2: है, कि आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे या कोई ऐसा लुभावना चीज भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करवाएंगे, ये सारा फिशिंग में आता है। और विशिंग होता है कि जब आपको मैसेज, मेल एटसेट्रा ना करके आपको कॉल से लोग चीट करने की कोशिश करें, कॉल करेंगे कि भाई आपकी ये पॉलिसी चल रही है या आपको इतने पैसे के इतने कर देंगे, इस तरह की सारे फ्रॉड जो है ना वो विशिंग में आते हैं।
1: ओके। यानी मतलब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और दोनों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को फंसा कर उससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना है।
2: बिल्कुल।
1: बात करते हैं सर सोशल मीडिया पर हो रहे बहुत सारे अपराधों की, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़्यादा युवा दिखते हैं और एक्स पर जो है ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या कोई सीनियर लोग दिखाई देते हैं, या फिर कहें कि थोड़े जो एक अलग जो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जर्नलिज्म या इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं एलीट क्लास जो है वो एक्स पर है, लेकिन बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर्स वो सब इंस्टाग्राम पर हैं। और इंस्टाग्राम पर एक सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि शॉपिंग भी हो रही है
2: जी,
1: फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, कुछ आप बात करें कि आपको एक फ़ोन ख़रीदना है तो आपके पास 10 नोटिफिकेशंस और 10 नए एड्स और मैसेजेस आ जाते हैं कि आप यहाँ से फ़ोन ख़रीदें, इसका प्राइस ऐसा है, इस ऐप पे ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। सो इसमें युवा बहुत ज़्यादा फंस जाता है
2: जी,
1: तो कैसे उनको बचाया जाए?
2: देखिए ऐसा है, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप भी सोशल मीडिया ही है, टेलीग्राम, ये सारे वो स्टेज हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को साइबर वर्ल्ड में जानते हैं फिजिकली ना जानते हुए।
1: जी जी।
2: तो इसमें फाइनेंशियल और ब्लैकमेलिंग दोनों तरह के ऑफेंस होते हैं। पहले हम फाइनेंशियल पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि भाई एक चीज है, कंपनी की चीज है और उस पर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र एक रुपए में खरीदें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके लिए कुछ नहीं, आप हमारे पेज को फॉलो करें और ये लिंक पे जाके अपनी जानकारी दें, अपना एड्रेस भरें। जब उसमें एड्रेस भरते हैं तो उसमें फिर वो आपसे आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो है ना CVV नंबर और उसका डिटेल पूछता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: पूछने के बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई सबमिट करें, आपके फोन पे OTP आएगा, वो OTP बताएं।
1: ओ जी।
2: तो इस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फ्रॉड हैं, लेकिन जो फ्रॉड हैं वो इस तरीके से करते हैं।
1: जी।
2: तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से किसी को शेयर ना करें। आपका कार्ड नंबर है, ATM कार्ड नंबर या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है, उसका CVV नंबर, अपना पिन नंबर, इस तरह से किसी भी अननोन पेज पे जाके उसको फिल ना करें।
1: जी। और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, यंगस्टर्स जो होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स खास तौर पर से, जब डिस्काउंट मिलता है चीज़ों पर, गर्ल्स को बैग्स या कपड़ों पे डिस्काउंट मिल रहा है, बॉयज़ को कुछ गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कुछ ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से।
2: जी,
1: और ये जो फिशिंग कह सकते हैं वो यहाँ पर
2: सक्सेसफुल होती है।
1: जी।
2: उसके बाद दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन बंदे की एक्सेप्ट की, हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आता है फीमेल्स को। जो लड़कियां हैं वो उन पे इतना यकीन कर बैठती हैं कि कुछ पर्सनल फोटोज या कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे शेयर कर देती हैं, फिर वो उन्हीं फ़ोटो का फ़ायदा उठा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता है।
1: ओके।
2: और उसी के तहत उनके मदर फादर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज करके और वो फाइनेंशियल फ्रॉड फिर करते हैं।
1: ओके।
2: तो किसी भी ऐसे अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें और उससे नजदीकियां ना बढ़ाएं जब तक आप उसको पर्सनल रूप से नहीं जानते।
1: जी बिल्कुल।
2: और अपने अकाउंट को पूरी तरह से पर्सनल रखें, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को एक्सेप्ट ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इन्फ्लुएंसर बनने की जो एक भीड़ लगी हुई है आजकल कि लाखों में फॉलोअर्स होने चाहिए, हमारा जो चाहे तो हमारा चैनल है, चाहे हमारा अकाउंट है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, वो सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपराध जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
2: बिल्कुल। और अगर आप कोई ऐसा पेज यूज़ भी करते हैं तो उसकी लिमिटेशन जानिए आप, उसमें किसी से इतनी नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, उस पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, फैमिली की फोटो शेयर करें तो उसमें उनका एक्सेस उन्हीं दोस्तों के पास हो जिनको आप पर्सनली जानते हैं, हर किसी के लिए वो नहीं होने चाहिए। तो उससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर वो व्यक्ति देख सकता है जो आपकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में है।
1: जी बिल्कुल। और यानी वो आप स्टॉक कर सकते हैं इजीली किसी को।
2: एक टर्म है, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में किसी को जब हम पीछा करते हैं तो IPC में अपराध कवर होता है कि किसी फीमेल को ऐसे पीछा नहीं किया जा सकता, उसी तरह से साइबर वर्ल्ड में जब किसी का पीछा करते हैं तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता
1: है। और ये अपराध है।
2: ये अपराध है। इसी तरह से फीमेल को जब कोई साइबर वर्ल्ड में पीछा करता है तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आपने किसी बंदे के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और आप फिर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको इंस्टाग्राम जिस आईडी पे वो दोस्त है आपको उस पे मैसेज करेगा, आपने उस पे ब्लॉक कर दिया, फिर वो आपके फोन पे फोन करेगा, आपने फोन नहीं उठाया, फिर वो आपके व्हाट्सएप मैसेज करेगा, फिर आपने व्हाट्सएप नहीं उठाया या उसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो कंटिन्यू इस तरह से आपको पीछा कर रहा है तो वो एक अपराध है, वो साइबर स्टॉकिंग में कवर होता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं।
1: ओके। यानी अगर कोई व्यक्ति, खास तौर पर से मैं लड़कियों को और लेडीज को कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पे बार बार आपको मैसेज करके तंग कर रहा है और फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देती हैं उसको और फिर वो आपके अपने फोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आपको परेशान कर रहा है, तो ये साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है और एक अपराध है जिसकी कंप्लेंट आप इजिली कर सकते हैं।
2: जी। इसके अलावा एक और टर्म है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। जो व्यक्ति, जैसे बुली होता है एक दबंग टाइप का व्यक्ति, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको परेशान करता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये दबंग है और ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। इसी तरह से जो ये साइबर स्टॉकिंग है ये मेल के अगेंस्ट भी हो सकती है।
1: ओके। यानी पुरुषों को भी ऐसे दबाया जा सकता है।
2: जी जी, वो जैसे बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो आपको पर्सनल लोन देती हैं ऑनलाइन, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भारी होता है। वो क्या करते हैं कि आपसे जब आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके कॉन्टेक्ट उनके पास कॉपी हो जाते हैं और आप उनसे लोन लेते हो ऑनलाइन, फिर आप उनका भर भी देते हो, हाई रेट से भर देते हो, लेकिन फिर वो आपसे और पैसे की डिमांड करते हैं,
1: मतलब वो खत्म ही नहीं होता।
2: हाँ, तो जब आप उनको मना करते हो कि भाई मैं आपके पूरे पैसे दे चुका फिर भी आप क्यों मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो अगर आप नहीं देते हो तो वो उन कॉन्टेक्ट्स पे आपको डिफेम करना शुरू कर देते हैं, आपके सभी रिश्तेदारों में दोस्तों में मैसेज शुरू कर देते हैं कि इसने मुझसे लोन लिया था ये दे नहीं रहा है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो वो भी एक तरह का अपराध।
1: बिल्कुल, ऐसे केसेस काफी हाईलाइट भी हुए हैं हाल ही में। यानी पुराने जमाने में जो हम फिल्मों में देखा करते थे कि जमींदारी में आपने जो चीज है अपनी गिरवी रख दी है और आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं, वो चीज आजकल साइबर वर्ल्ड में भी होने लगी है। सर, वाईफाई पर काम करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम मॉल में भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, यहाँ तक कि स्टेशन पर और बस स्टॉप पर भी अब वाईफाई की फैसिलिटी शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्शन पूछते हैं। अब वाईफाई पर काम करते हुए बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के बिना शायद मुझे लगता है आधा घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इसमें क्या ध्यान रखें?
2: जैसे जब हम वाईफाई से किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो हमारा फोन उससे कनेक्ट होता है और फोन से जुड़ी हुई कई बार चीजें जिन पे हमने एक्सेस नहीं लिया हुआ, मतलब लिमिट नहीं लगाई हुई, तो वो उनके पास वो चीजें चली जाती हैं। तो इसलिए हम सिंपल वाईफाई यूज ना करके वीपीएन के थ्रू ही किसी का हम वाईफाई कनेक्ट करें और कोशिश करें कि इसकी जरूरत ना पड़े, इमरजेंसी में ही
1: जो डेटा चल रहा है आपका
2: फोन के डेटा से ही हमें अपना काम करना चाहिए, या हमारे ऑफिस का जो पर्सनल हमारा वाईफाई है या घर का है वही यूज करें, बाहर से यूज ना करें। इमरजेंसी में करना भी पड़ जाता है तो वो वीपीएन के थ्रू करें, सिंपल ब्राउजर से हम उनसे ना जुड़े।
1: ओके, यानी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है।
2: जी।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। एक बहुत जरूरी चीज है सर, बच्चे बहुत ज्यादा पेरेंट्स का फोन इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से 10, 12, 14 साल तक के बच्चे जिनको अभी तक फोन का एक्सेस नहीं दिया गया है, अलग से मोबाइल फोन्स, उनको साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता। माता पिता का फोन उठाते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में माता पिता को पता भी नहीं होता है, और फिर खेलते रहते हैं, और फिर उसके बाद लाखों रुपए हार भी जाते हैं। कैसे वो ये सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा बच्चों को जरूर गाइड कीजिए।
1: देखिए, ऐसा है कि कई गेमिंग साइट ऐसी हैं कि जो कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते उनको उनका जो हीरो है उस गेम में, उसको कुछ गैजेट्स चाहिए, उसको कुछ ड्रेस चाहिए, तो वो परचेज की जाती है। तो वो बच्चे जो है ना, अपने माँ बाप को बताए बगैर जो ATM है या उनकी जो क्रेडिट कार्ड है या बैंक की जो डिटेल है, वो उसके साथ शेयर कर देते हैं। उससे ये फ्रॉड होते हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों को जब फ़ोन दें तो उनको बताएं कि बेटा इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल या कोई और चीज़, कोई गैजेट अगर आपको लेना है तो आप हमें बताओ, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट

0: मिट्टी उसमें फिल कर दो, और कोशिश ये करें कि घर के वाईफाई पे या फोन पे चाइल्ड का लॉक लगा के रखें, कि कुछ साइट ऐसी हैं जिन पे बच्चे ना जा पाए।
1: जी जी, यानी लॉक लगाना बेहद जरूरी,
0: लॉक लगाना बहुत जरूरी है।
1: प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत सारे पेरेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और बच्चे जो हैं, हमने हाल ही में देखे केसेस 14-15 साल के बच्चे हैं, लेवल्स खेलते खेलते पैसे जमा कराने लग गए, या फिर कुछ और चीज हो गई वहां पर, उनको उन्होंने ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे टारगेट्स देने शुरू कर दिए। सो ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, आजकल तो स्कूलों में भी इसमें काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, हमारी टीम जाती है स्कूलों में, जो खासकर यंगस्टर हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बच्चे हैं, वो ज्यादा शिकार होते हैं इन चीजों के, क्योंकि वो नए नए गैजेट चलाना सीखते हैं, और घर वालों की नजर में भी ये होता है, क्योंकि बच्चा ट्यूशन पे भी जाता है, उनको फोन देना भी जरूरी है। आजकल तो आप देखते हैं टैब वैब, जितनी ऑनलाइन क्लासेज भी होने लगी खासकर कोरोना के बाद, जो मैं पहले ही बता चुका आपको, तो इन चीजों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता, देने पड़ेंगे, मजबूरी है आज के टाइम में, लेकिन हमें उनको देने के साथ साथ उनकी जिम्मेवारी भी उनको बतानी है, उनको अवेयर करना है। तो स्कूल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये ड्यूटी निभानी चाहिए, अपने बच्चों को कोई चीज हाथ में देने से पहले, जैसे बाइक देते हैं तो पहले बाइक को चलाना सिखाते हैं, आप 18 साल के हो जाओगे तब बाइक चलाओगे और बाइक के लिए लाइसेंस भी बनवाओगे, तो इसी तरह से अगर कोई फोन दे रहे हैं तो उसके ये बताना चाहिए कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है।
1: जी जी जी सर, अब ये साइबर अपराध किसी के साथ हो जाता है और वो व्यक्ति अचानक से समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया, वो पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज कराने, कई बार वो सहम भी जाता है कि वहाँ जाकर मुझे बताना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ कुछ, वो मेरी रिपोर्ट दर्ज करें ना करें, या फिर घर वालों को बताएंगे तो घबरा जाते हैं लोग, इस वजह से बदनामी से भी कुछ लोग डरते हैं, खासतौर पर से डिजिटल अरेस्ट की जैसे हमने बात करी। सो सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी साइबर क्राइम होता है तो कहाँ कॉल करना है, कैसे कंप्लेंट करनी है?
0: देखिए, अब आपको कहीं नहीं जाना है, अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 की एक हेल्पलाइन है, जो कि सेंट्रल लेवल से पूरे इंडिया में वर्क करती है। तो सिंपल सा आपको उस पर कॉल करना है, और जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, और उतनी ही जल्दी आरोपी तक हम पहुंच सकते हैं।
1: जी,
0: सपोज करिए अभी आपके साथ कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो आप तुरंत, आपको कुछ नहीं करना, 1930 पे कॉल करें।
1: ओके।
0: वो जो जानकारी मांगते हैं उनको प्रोवाइड कराएं। उससे क्या होता है कि जो पैसा आपके अकाउंट से गया है, होता क्या है कि जैसे पैसा आपके अकाउंट से कहीं सेकंड अकाउंट में जाता है, उससे थर्ड में जाता है, उससे फोर्थ में जाता है।
1: ओके।
0: तो इस प्रोसेस में उनका थोड़ा सा टाइम लगता है।
1: ओके।
0: तो हम जितना जल्दी उस क्राइम को रिपोर्ट करेंगे 1930 पे, 1930 में एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, एक पूरी बैकअप टीम है, वो उस पैसे को वहीं फ्रीज कर देती है, उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है ऑटोमेटिक।
1: okay. जी,
0: तो जैसे ही वो फोन कॉल हुई, वो पैसा फर्स्ट अकाउंट में या सेकंड अकाउंट में है, वो वहीं फ्रीज हो जाएगा,
1: यानी आगे वो बट नहीं पाएगा,
0: बट नहीं पाएगा, ना उसकी ट्रांजेक्शन हो पाएगी, उस अकाउंट की जमा करना और निकालना दोनों तरह से वो फ्रीज कर दिया जाता है।
1: ओके।
0: तो वो पैसा आपका फ्रीज हो गया। उसके बाद वो जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, वो आपका जो जुरिडिक्शन है, जहां आप रहते हो, जहां से आपने कॉल की है, उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली।
1: ओके।
0: फिर वो पुलिस स्टेशन उस पर काम करता है, वो पुलिस स्टेशन आपसे संपर्क करेगा फोन करके, और फिर आपके पैसे आपको वापस करवाए जाएंगे।
1: ओके।
0: अगर आपने वो कॉल करने में देरी कर दी, 1930 को कॉल करने में देरी कर दी, तो वो उतने ही आगे अकाउंटों में चला जाएगा, और हो सकता है कि जो चीटिंग करने वाला है वो पैसे को विड्रॉ भी कर ले।
1: जी जी।
0: फिर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराने का सिर्फ इतना फायदा होगा कि हम आरोपियों को पकड़ तो सकते हैं, कोशिश भी करेंगे कि पैसा आपका रिकवर हो जाए, लेकिन वो अकाउंट में फ्रीज नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक ट्रांजेक्शन के लिए ये भी हो सकता है कि हम 15-20 अकाउंट फ्रीज कर दें, क्योंकि वो मल्टी लेवल में जाता है अकाउंटों में, एक अकाउंट से 10 अकाउंट में चला गया, 10 से फिर 15 में चला गया, तो वो सारे अकाउंट उसी तरह से फ्रीज कर दिए जाते।
1: जी, बहुत सारे युवाओं को सर लालच दिया जाता है कि आप हमारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए और हम आपको उसके बेस पे कमीशन देते रहेंगे। क्या ये अकाउंट्स जो यंगस्टर्स को, कॉलेज और स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, जो 18 साल से बड़े जिनके अपने अकाउंट्स हैं, उनको जो ये लालच दिया जाता है, क्या ये इसी पैसे को ट्रांसफर करने के लिए होता है?
0: बिल्कुल, ये एक नए तरह का मतलब फ्रॉड है। अगर चीटर अपने अकाउंट को यूज करेंगे तो डायरेक्ट लायबिलिटी उन पे है, वो फंस जाएंगे। वो क्या करते हैं कि किसी से रेंट आउट करते हैं उसका अकाउंट, कि भाई आपका अकाउंट भी हम खुलवाएंगे और आपको 10,000 रुपए भी देंगे, आप ये अकाउंट हमें दे दीजिए। फिर उस अकाउंट का एक्सेस वो चीटर संभालते हैं। कल को जो फ्रॉड अमाउंट है या जो चीट मनी है वो उस अकाउंट में आती है, तो वो जिसने वो अकाउंट बेचा है वो भी उतना ही भागीदार है जितना जिसने ये अकाउंट उसमें यूज किया। तो हम उसको भी अरेस्ट करते हैं और उसकी जिंदगी उस 10,000 रुपए के ऊपर खराब हो जाती है। तो सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना अकाउंट खुलवा के किसी अननोन बंदे को सिर्फ थोड़े से लालच में ना बेचें, उससे आपका भी करियर खराब होगा और किसी न किसी को उस अकाउंट के मार्फत चीट किया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब फ्री में कहीं से पैसे आते हैं ना तो वो फ्री में नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है।
0: साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्री नहीं है। इवन आपको नेट एक्सेस करने के लिए 1 GB डाटा फ्री दे रहे हैं तो उसके बदले में भी कुछ ना कुछ आपसे ले रहे हैं। तो ध्यान रखें कि साइबर में कुछ भी फ्री नहीं है और ना कुछ फ्री लेने की आदत डालें।
1: जी बिल्कुल, यानी फ्री की जो आदत है ना उस आदत से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सर, क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स दी जाती हैं आम इंसान को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जिससे कि उनको ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां मिल सकें और वो खुद को और बाकी लोगों को बचा सकें?
0: जी, पोर्टल हैं हमारे बहुत सारे, उन पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर दोस्त करके भी है।
1: जी जी,
0: तो अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, आप उस पे लॉगिन करेंगे तो उस पे बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आप जान के अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं। गूगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता, आप उससे काम की चीजें भी सर्च कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी विस्तार से थोड़ा सा आप सर हमें साइबर दोस्त के बारे में भी जरूर बताएं और क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं आपकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लोगों तक किस तरीके से जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं?
0: देखिए, एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है तो इस पोर्टल को हम जगह जगह बता भी रहे हैं। आप इस पोर्टल को खोलिए, इस पे अपने आप को रजिस्टर करिए और इस पे जो नवीनतम जितने भी फ्रॉड हैं या जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी आपको उस पे पढ़ने को मिलेंगी।
1: जी,
0: और आपको अपना अकाउंट किस तरह से बचाना है, किस तरह से साइबर के प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, उसको खोलिए और उससे अपने आप को अवेयर करिए।
1: जी, और एक और पोर्टल है संचार साथी, ये भी बहुत काम का है, इसके बारे में भी हमें जरूर।
0: ये भी इसी तरह का है, मतलब अलग अलग लेवल्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं, आप इन सब पे अपने बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या साइबर वर्ल्ड का जो भी है उस पे सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। आप एक बार देखिए, गूगल पे जाके इनको सर्च करिए तो ये मिलेंगे आपको और आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करके इससे जानकारी लेके और अपने आप को अवेयर कर सकते हैं।
1: जी, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जिनसे बहुत जगह कुछ जो लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत किया जाता है या फिर दंगे भड़काए जाते हैं या फिर लोगों में कुछ पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, उसको रोकें कैसे, उसको समझें कैसे? क्योंकि हम बहुत सारे बुजुर्गों के साथ जब कभी बैठते हैं या फिर बच्चों के साथ बैठते हैं तो व्हाट्सएप पे आई हुई जो न्यूज़ होती है ना, उनको लगता है यही एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। किसी ने अगर कोई एक पिक्चर बना के उसमें किसी चैनल का एक फेक लोगो लगा के भेज दिया तो लोगों को लगता है ये सच है।
0: जी,
1: इस चीज से कैसे बचे, क्योंकि ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
0: देखिए, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, उनका एक ही मकसद होता है कि पर डे हमें 1.5 GB या 1 GB मिला है वो शाम तक हमें खत्म करना है।
1: जी,
0: इस आदत से बचिए। जो भी चीज आपके पास आती है उन सब को फॉरवर्ड करना वो अपनी ड्यूटी समझते हैं बगैर सोचे समझे, इस तरह के आचरण से आप बचें। पहले आपके पास जो मैसेज आता है वो पढ़िए ध्यान से, उसकी पुष्टि जब तक आपको नहीं हो जाती उस चीज को आगे मत बढ़ाइए। जब भी कहीं दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो एक मैसेज बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया जाता है लोगों को, जो चीज एक छोटी सी थी उसको बेवजह सांप्रदायिक रूप देके उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए और जो मैसेज हमारे पास आते हैं पहले उसको पढ़ें समझें। अगर आपको पुष्टि हो जाती है ये है तो भी अगर उससे कोई सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, अपने तक सीमित रखें और सरकार को शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
1: जी बिल्कुल,
0: जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार वहाँ का नेट एक्सेस बंद कर देती है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि लोग जो है ना बेकार की चीजें, बेकार के भ्रामक संदेश एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, ताकि सरकार वहाँ पे अमन शांति लॉ एंड ऑर्डर दोबारा कायम कर सके। तो एक साइबर उसमें ये जो क्रांति आई है उसमें ये एक हमारा मतलब फेलियर भी है कि हम बगैर चीजों को जाने परखे फॉरवर्ड कर देते हैं और हमारी अमन शांति भाईचारा उस चीज से बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी वजह से कई बार कोई लड़की हुई, कोई मतलब विक्टिम हुई, उसकी जानकारी भी हमें ऐसे नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के साथ।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कई बार होता है कि भाई वो घटना हुई नहीं होती लेकिन वो फॉरवर्ड होने लग जाती है और लड़की की फोटो के साथ होने लग जाती है,
1: वो बहुत खतरनाक होता है।
0: कई बार आप देखते हैं कि फेसबुक पे ऐसे भद्दे कमेंट हो जाते हैं कि भाई किसी लड़की की फोटो लगा के उसके नीचे फोन नंबर लिख दिया जाता है कि आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो ये करेगी वो करेगी, बड़े बुरे कमेंट होते हैं। तो इमेजिन करिए जिस लड़की का वो फोटो है आपके फॉरवर्ड करने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से उस लड़की के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह का काम ना करिए और साइबर के यूजेस पे जाइए, मिस यूजेस पे मत जाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई अपराध आप देख रहे हैं या हो रहा है तो 1930 पे कॉल करना सबसे सटीक तरीका है इस परेशानी को रोकने के लिए और इस अपराध को कंट्रोल करने के लिए।
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी आपने बहुत सरल शब्दों में दी किस तरीके से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक आम इंसान को भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है, जगह जगह पर आपको कॉलर ट्यून्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, पोर्टल्स के जरिए जागरूक कर रही है, अखबारों में हर रोज़ खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जान रहे हैं कि साइबर अपराध कितना बढ़ रहा है और इसे कैसे रोका जाए। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो इसे जल्दी रोका जा सकेगा और आपके आसपास रहने वाले लोग इस परेशानी से बच पाएंगे और उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो इमेज है, जो उनकी मानसिकता है, जो भी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ करना चाह रहे हैं उस पर कहीं कुछ लगाम ना लगे ना, इसलिए आपको जरूर साइबर अपराध को रोकने के लिए खुद को जागरूक करना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। और अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद कर रहे हैं और इसे किसी के साथ भी साझा करना चाहते हैं तो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो मानव रचना 107.8, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां हैं ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
0: जसमीत जी, सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, कहाँ और कैसे का ये है कि थोड़ा एक्स एंड बिट्स है। 2016-17 में मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता। एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंडलॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों है। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें इंडिया काफी नाम आगे है और हीट में भी हम बहुत आगे हैं। तो जो एक्चुअली फील करता था मैं, एंड जब देखा कि लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो देखता कि लोग मीटिंग्स करते हैं इंटेलेक्चुअली साउंड करने के लिए ना, कप ऑफ टीज एंड इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, एनवायरमेंटल समिट्स, वहाँ बातें होती हैं, हाँ बहुत गर्मी है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वर्ड बोलते हैं, तो जस्ट साउंड इंटेलेक्चुअल, बट द मोमेंट द कप ऑफ टी, द डिनर, द लंच इज ओवर, या मे बी वो समिट इज ओवर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का तो उतना पता नहीं दिखा मुझे। तो सारा कुछ मिला के मुझे लगा कि शायद मे बी इंटेंशन की बात तो एक तरफ है, मे बी शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किधर करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के पास चले जाता हूँ। एंड बच्चों से जब मैंने बातें की कि भी स्कूल के बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण के बारे में, किसान के बारे में, भी किसान के आम अगर पेड़ लगा दें, तो बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो नीम के पेड़, जामुन के पेड़, तो बच्चे कहते भी नो, ठीक है पेड़, बट नीम जामुन इज नॉट देयर सब्जेक्ट। एंड जब मुझे बताना पड़ा उनको कि डिफॉरेस्टेशन में आम के पेड़ भी कट रहे हैं और आम का भी आने वाले दिनों में आपके प्लेट पे आम कम हो सकता है, देन दे वेर वेरी कंसर्न्ड कि भी मेरे आम के साथ क्यों ऐसा खतरा हो सकता है। तो वहां से पूरा मिशन का एक जन्म हुआ कि किसान राजी था मैंगो पेड़ लगाने के लिए, वो दूसरा कोई पेड़ लगाने के लिए रेडी नहीं था अपनी जमीन पर। पर्यावरण कहता था कि मुझे एक पेड़ ऐसा दे दो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, मैंगो पेड़ इज अ पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करता है। एंड बच्चा कह रहा था कि कुछ मेरे सब्जेक्ट का लाओ तभी तो मैं एंट्री लूँ इस पूरे मिशन में, तो मैंगो इज अगेन द सब्जेक्ट। तो वहां से मैंने बातें लोगों को चालू की कि मुद्दा तो था पर्यावरण और किसान का भला करना, लेकिन सब्जेक्ट मैंने बना दिया गुठली को, एंड लोगों से कहना चालू किया भी मैंगो खाइए, गुठलियां दीजिए, मैं उसका पौधा बनाऊंगा, पौधा बना के मैं किसानों को फ्री में दे दूंगा। अब लोगों ने बोला कि सरदार पागल हो गया, भाई ये गुठलियां मांग रहा है, लोग आम मांगते हैं ये गुठलियां मांग रहा है। तो किसी ने गुठली मैन, किसी ने गुठली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने गर्बेज सिंह, अलग अलग अलग नाम दिए। वो करते करते करते गुठली मैन का सफर कोविड आ गया, कोविड तक लोग गुठलियां उतनी दे नहीं रहे थे। देन फिर सोशल मीडिया का अपना प्लस पॉइंट 2021-22 के करीब स्लोली स्टेडली सोशल मीडिया ने बस इस चीज को बहुत आगे बढ़ा दिया, एंड मोर देन 130 स्कूल्स अभी तक दे हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस, वो मेरे इस पूरे मिशन के साथ हैं, वो मुझे गुठलियां भेजते हैं, मुझे भी अपने स्कूल में बुलाते हैं। मिलिट्री इज अ पार्ट, एनसीसी इज अ पार्ट, प्रीति जिंटा इज अ पार्ट, रवि शास्त्री जी इज अ पार्ट, तो इस तरीके से मेरे पे फिर एक बस डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम ही गुटली मैन है, वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सत्येंद्र फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शूट की गई है, एंड विच हैज वन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो एज द बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म, के एक गार्बेज से कैसे इन्वायरमेंट का कुछ काम हो सकता है इन द लैंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सो यहाँ से ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं 16-17 से शुरू हुआ और अभी हम 26 में हैं।
0: वाओ, कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद बहुत ही कम शब्दों में जसमीत जी आपने अपना गुटली मैन का सफर सुनाया। सुनने में सच बताऊं बिल्कुल वैसा ही उन मीटिंग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगा, बट आई एम डैम श्योर कि ये सफर बहुत मुश्किल था। तो ये सफर कैसा था दोस्तों, ये हम जानेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज आप बिंदास भावना के साथ नहीं, आप गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ हैं, जो बहुत ही फेमस भी कहलाते हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया। जसमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, दरअसल मुझे इस प्रोसेस से लेकर जाइए ना, जहां आपके पास बहुत सारे आम की गुटलियां आती है और उसके बाद वो पौधा बनकर किसानों तक जाती है, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस?
1: देखिए, ऐसा है कि ये गुटलियों का सफर जो ऐसा है कि पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसने मुझे गुटलियां नहीं दी है, चाहे दो, चाहे बीस, कोई 20,000, कोई 200, कोई 1,00,000 गुटली मुझे भेजते हैं, वो बाय पार्सल्स भेजते हैं एंड कोई बाय हैंड भी दे जाते हैं। अभी जैसे आज की डेट बात करते करते तंजानिया से किसी ने मुझे आम भेज दिए, बोलते आम खा लीजिएगा, उसकी गुटलियां आप रख लीजिएगा। सो दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड मैं उनको, जब गुटलियां मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनको अंकुरित करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन प्रोसेस में डालता हूँ एंड ये जर्मिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months। उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया से मिक्स मेरे को गुटलियां आती हैं। टोटल गुटलियां जो है किसी अलग अलग ब्रीड की हैं। तो जब भी हम किसान को कोई पेड़ देते हैं तो किसान के लिए ब्रीड जानना बहुत जरूरी है। जस्ट रैंडमली मैं कोई पौधा उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंगो का पेड़ 10 से 15 साल लेता बड़ा होने में एंड इसीलिए, इसी रीजन से किसान उसको लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। तो मैं उसको ग्राफ्टिंग जब कर देता हूँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको हैंड ओवर करता हूँ, दैट इज अ लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री विच टेक्स अराउंड 3 months, थ्री इयर्स टू ग्रो। 3 साल में वो फ्रूट देना चालू कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। प्रोसेस में काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में उनको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, मल्चिंग के बारे में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की। तो उस आदत से उनको निकालना, उस सॉइल को भी उस पूरी कंडीशन से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट रैंडमली हमने कल तक उस पैडी फार्मिंग में थे और आज हम पेड़ लगा लेंगे, वो नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस।
0: तो भाई देखिए, आज हमने ये प्रोसेस समझ लिया और एक्चुअली जब जसमीत जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी कि 10-15 साल एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर के गार्डन्स में आम के पेड़ होते थे और जब वो लगाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इन पेड़ के फलों को खाओगे। बट अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में हम वो फल खरीद कर खा रहे हैं। जसमीत जी, वाकई ये सफर और ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सारे किसानों के लिए ये आसान बना दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हैं। दोस्तों, मुझे जसमीत सिंह जी से बहुत बातें करनी है, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी यानी गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ। भाई देखिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आम खाता है, और आम आदमी भी आम खाता है और खास आदमी भी आम खाता है, और आम तो सबका फेवरेट होता है। सो जसमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लीकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और खासतौर पर हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए तो आपको पूरे विश्व में लोग सुनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसे रेप्लीकेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आपकी ही इस मुहिम को कहीं और भी आगे ले जाया जा सकता है?
1: हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने, और समहाउ पता नहीं आज मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं सुबह ही आज इसके बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये मिशन जो है मैंने डूएबल है, ये मैंने बता दिया भाई, ये डूएबल है, ये हो सकता है। नाउ अगर हमें देखिए, आज की डेट में मोर देन मतलब पता नहीं कितने करोड़ मैंगोज ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड खाए जाते हैं, और उसकी गुटलियां हम रॉट करने के लिए फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना ही ह्यूमिलेशन, इतना ही गिल्ट फील होता है। बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अपने दिमाग में ड्रामा करते हैं, कभी अर्थ डे कभी इन्वायरमेंट डे। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे जो मना रहे, दैट इज अ फार्स, कि एक दिन हम इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं जिसके कारण हम आजू बाजू जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस भरी गर्मियों में कॉर्पोरेट के मेमोज आते हैं कि आप पेड़ लगाइए। अरे पेड़ लगाइए, पेड़ जिंदा रहेगा क्या इतनी गर्मी में? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो गुठलियां हम भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं रॉट करने के लिए, उससे प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस, एंड दैट इज अगेन हीट। मतलब हमने और हीट प्रोड्यूस करने के लिए गुठलियों को रॉट करने के लिए दे दिया। तो उससे बेटर है कि आप या तो उस गुठलियों को आप पौधे बनाइए अपने एंड पे पौधे बनाकर आप किसी को वो दान कर दीजिए। एक दूसरा, आपसे नहीं हो रहा, आप किसी भी क्या बोलते हैं ना, किसी जगह पर जाके इसको रोपण कराइए गुठलियों को, वो भी नहीं हो रहा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम खाइए, कोई भी ब्रीड का आम खाइए, उसकी पल्प साफ करिए, उसको सुखाइए, 2 से 1 दिन लगता है छाव में धूप में, सुखा के 9831459390 मुझे कॉल करके कनेक्ट करिए और मुझे गुठलियां भेज दीजिए, मैं इनसे पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के किसानों को दे दूंगा। ये तो हो गया मेरा हिस्सा। अब मैं चाहता हूं कि आपके श्रोतागण सुने और इसको थोड़ा सा गौर भी करें कि मुझे ऑल इंडिया में कम से कम 100 से 200 नर्सरीज बनानी है। अगर कोई सोशल माइंड के बंदे जिनकी कुछ जमीनों पे भी थोड़ा सा होल्ड हो कोई, वो जमीनें मुझे सोशली चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिससे कि हम जैसे पंजाब में पंजाब की गुठलियां वहीं इकट्ठी करके वहीं पे लोकल किसानों को गाइड करके उनकी टीम बनाकर उनको सारा कुछ नेचुरल फार्मिंग के बताकर हम ये हैंडओवर कर दें उनको, उसी तरीके से गुजरात, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से अलग अलग जगहें। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये बहुत जल्दी रेप्लीकेट हो जाएगा। और मुझे रेप्लीकेट क्यों करना है मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में अगर हमने इंडिया को ही 2000 करोड़ पेड़ नहीं दिए तो इंडिया का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ने के पूरे आसार हैं, और 3 से 5% जीडीपी डाउन होने के पूरे आसार हैं। अब कोई बोले कि एनवायरमेंट और जीडीपी का क्या लेना देना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आज की डेट में क्लाइमेट एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट बन चुका है, कभी भी हीट वेव, कभी भी बाढ़, कभी भी कुछ, तो उससे क्रॉप साइकिल्स पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है, अचानक कहीं पे भी पानी आ जाने से डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब गरीब जो है सबसे पहले असर करेगा, क्योंकि वो गांव में है उसकी क्रॉप खराब होगी, शहर वाला गरीब भी सबसे पहले असर में आ जाएगा, मिडिल क्लास का बंदा इन्फ्लेशन की मार में आएगा, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ कैलमिटीज, सडन फोर्स मेजर कॉज जो अचानक से फ्लड आ गया उसको, तो उस जो फंड उनका रीएलोकेट हुआ जो सही जगह पर जाना था, उसके कारण जो जीडीपी पे असर आना आने वाले दिनों पे वो एक असर है। एंड द रिच क्लास जो बोलता है सानू की मैनू की, मैं तो एसी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना एनवायरमेंट के साथ, ठीक है गर्म है तो गर्म है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ही तो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में, आप ही तो इंडस्ट्रिस्ट हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वर्क फोर्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, अगर साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना शूट अप करेगा, तो आज प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, और प्रोडक्टिविटी डाउन मतलब आपकी प्रॉफिट डाउन, आपकी प्रॉफिट डाउन मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क। सो थिंग इज, अगर कोई बोलता है एनवायरमेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, एवरी क्लास एवरी स्टार्टअप हैज अ कनेक्शन विद एनवायरमेंट, एंड इसको रेप्लीकेट होना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए गुटली ऑल अक्रॉस इंडिया में पाई जाती है, और हमें ऑल अक्रॉस इंडिया में पेड़ चाहिए, नॉट इन दी पॉकेट्स। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपका ऑडियंस के थ्रू ही मैं कहूँ कि मेरे को अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं इधर उधर भी कहते आया हूँ, मैं भारत सरकार को, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडियन बोर्ड्स क्लास 10 में हम अगर 10 पेड़ के लिए क्लास 10 में 3 से 5 नंबर दे दे बच्चों को, तो माँ बाप भी मिलके ये पेड़ बढ़ाएंगे। कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। नहीं मतलब अगर किसी ने मजाक में बोला तो तुम संभालोगे क्या मिनिस्ट्री, अगर ये सेवा मुझे करनी पड़ी तो ये सेवा करने को भी मैं तैयार हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। तो वहां से क्या है कि पूरे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया में ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट पूरा क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा, हम कहते हैं ना, इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया हीटेड है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। दिल्ली का पोल्यूशन हटाने से इंडिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, या चेन्नई की प्रॉब्लम इंडिया है, तो इंडिया को एज अ होल देखना पड़ेगा। सो ये आपने जैसे कहा, ये रेप्लिकेबल पूरा है, अपने अपने लेवल पे, बंदा माइक्रो लेवल पे 4 गुठलियां 5 गुठलियां, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझे दे दे, एंड स्कूल्स की गुठलियां जो है 20,000 25,000 50,000 लाख वो मुझे भेज दे। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट।
0: मैं देखो, मैंने बचपन में ना कहावत सुनी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आज मुझे उन गुठलियों के दाम नजर आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो ये गुठलियां वाकई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए पहला कदम आप सबको उठाना पड़ेगा हमारे साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ। जसमीत जी, अब एक बड़ा दिल को लगता हुआ सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, सुन तो लिया, समझ तो लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। मैं समझ पाती हूँ जब हम कोई काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे रियल टाइम चैलेंजेस बताइए कि क्या आते हैं।
1: रियल टाइम चैलेंजेस देखिए जी, सबसे पहले तो जो आया था मेरे साथ के भी मेरे पे लोगों ने बिलीव ही नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीधा ही मुझे ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक मेरे दोस्त यार मुझे

0: मतलब कहीं पे अरे गुटली गुटली होगा गुटली पता नहीं, चलो चलो चलो कमरे छोड़ के चले जाते, बात ही नहीं सुनते गुटलियां देने में, क्योंकि गुटलियां उनको हैंड ओवर करनी है, आम खा लिया गुटलियां तो फेंकने की आदत है, उस आदत से निकलना है, मुझे गुटलियां देनी है। तो ये आदत, ये पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये दिक्कत आ रही थी। करते करते कोविड तक तो मेरे हाथ में लोग गुटली देते थे, समझ लीजिए 20-25-50, वो भी दया करके कि अच्छा तू मांग रहा है रख ले। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मैंगो गुटली के एक जेनेटिक इशू है, आप अगर 1000 गुटली मुझे देंगे तो 10-15% ही गुटली अंकुरित होगी। दिस इज वन जेनेटिक इशू ऑफ मैंगो। वन सेकेंड, हमें आदत पड़ गई है अप्रैल के महीने में मैंगो खाने की। उस टाइम अभी भी आप देखिएगा कई पेड़ों में जो मैंगो है वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में आपको एकदम येलो ब्यूटीफुल मैंगो मिलेगा। ये सारा कार्बाइड का आर्टिफिशियल रैपन मैंगो है। ये आर्टिफिशियल मैंगो क्या कर रहा है, पल्प को आपके खाने लायक बना दे रहा है, लेकिन जो गुटली है वो जर्मिनेशन लायक तो बनी नहीं अभी तक, अभी भी वो कच्ची है, तो कच्ची गुटली जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो लोगों को इतना टेक्निकली तो मालूम नहीं, लोग बस बाजार में जाते हैं आम खा लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि प्लीज कार्बाइड का मैंगो मत खाइए। कार्बाइड को हटाने के लिए कितना धोना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, और लेकिन हो क्या क्या सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कैंसर के कोई रोग हो सकते हैं, आपको पेट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड ईटिंग मैंगो आउट ऑफ द साइकिल। आप थोड़ा सा वक्त देखें, जैसे अब जो टाइम आ रहा है ये टाइम मतलब मैंगो के पकने का टाइम है, तो यहाँ से मैंगो जो मिलेगा वो आर्टिफिशियल राइपन नहीं है। लेकिन अभी तक जो आप खा चुके हैं आपके पेट में, और आप कई बंदा बोलता भी होगा भाई मैंने मैंगो खाया मेरा पेट क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बाइड जो है उसके पेट को खराब कर रहा है। अब रह गया कि ये सारा कनेक्ट करना, इतनी गुटली कट्टी कहाँ से करूं, ये बड़ा चैलेंज था। तो स्कूल्स को बोलता, स्कूल्स ने भी नहीं सुना। करते करते एक दिन अपनी बिटिया को मैंने बोला कि मेरी एक रील बनाओ, एंड रील बस मैंने फ्लोट की तो वो कई बंदे उसमें से जुड़ने लगे, फोन आना चालू हुआ। वहां से करते करते करते थोड़ा सा सूथिंग आउट हुआ है। अभी तक मुझे 21 लाख गुटलियां मिली हैं। मेरा टारगेट समझ लीजिए 200 करोड़ गुटलियां का है, टारगेट मेरा 20 करोड़ पेड़ लगाने का है। अभी तक मैंने 8 लाख पेड़ जो है वितरण किए हैं अंडर ट्री का लंगर। मैं ट्री के लंगर लगाता हूं जिसमें कि मैं उसमें वितरण कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इच्छा है कि मैं 20 करोड़ पेड़ लगाऊं, क्योंकि भारत को चाहिए 2000 करोड़ पेड़, लेकिन 2000 करोड़ का टारगेट लेना एज ए इम्प्रैक्टिकल, बिना मतलब की बेवकूफ वाली बातें करनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उसको पहले के एक स्टेप को लेके करें, एंड अगर ये रेप्लीकेट हो गया, मेरी बात किसी ने सही बंदे ने सुन ली, या मेरे को एक कोई सही पावरफुल पोजिशन मिल गई, तो उसको आराम से मैं उसको रेप्लीकेट कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। और स्कूल में अगर ये चालू हो गया तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। सो दिक्कतें नाम की थी, दिक्कतें जैसे मेरी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि भाई क्या आम के घर घर में गुटली गुटली पूरी बदबू फैल गई, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, दोस्तों यारों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विजन मेरे अंदर क्लियर थी। तो उससे यू नो जिन्होंने 2-4 बंदे जो साथ चले थे स्टार्टिंग में वो छोड़ गए, बोलते नहीं नहीं ये मतलब पता नहीं कचरा उठाता है, कहाँ कहाँ कचरा क्या करेगा। तो सारा कुछ मिला के दोज वेर हिकअप्स, लेकिन मैं उन हिकअप्स को ना ज्यादा आप दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहता। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, अमृतसर से वो कैलकटा आई, मेरे फादर 30 थे, शी वॉज जस्ट क्लास 8 पास, सिर्फ गुरमुखी जानती थी। कैलकटा आके उन्होंने हिंदी बंगला इंग्लिश सीखी, क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, एक स्कूल की स्थापना की। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। सो मैं उस माँ का बेटा हूँ, एंड देन शी डाइड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन डिजीज बाय द एज ऑफ 54। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने क्या ना कोई लिमिट देखी नहीं, जब मुझे लगता था कि और नहीं पढ़ेगी और पढ़ूंगी, जब मुझे लगता था कि और कुछ नहीं करूंगी मैं स्कूल की स्थापना करूंगी। तो एक लिमिटलेस सा पन मेरे अंदर है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ठीक है सी, कोई भी मिशन में अगर चैलेंज नहीं रहेगा, पागलपंथी नहीं रहेगी, तो किस बात का मिशन है वो? अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है, हिकअप्स ही नहीं है, तो वो मिशन मतलब कैसे बनेगा? वो तो फिर कोई बिजनेस है, वो तो कोई धंधा है, उसमें भी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं।
1: भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से जसमीत जी आपने समझाया है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने का जो कहना चाहिए सेटिस्फैक्शन है वो भी नहीं आएगा। एंड आज जसमीत जी एक सफर लेकर चल रहे हैं जहां ये कह रहे हैं भाई मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है 2000 करोड़ पेड़ों का, लेकिन भाई अगर रियल टाइम की हम बात करें तो हम इसे सच कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है, आप और मैं, हम सब एक साथ आ जाएं और हम अपना अपना शेयर ले लें, तो शायद हम इस पूरी सच्चाई को एक रियल सच बना सकते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बस करिएगा सिर्फ इस गाने का इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रहता 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ, जो कि गुटली मैन ऑफ इंडिया हैं। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे बताइए कि कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो आपके साथ, चाहे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपके इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
1: देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि खुले हाथ से आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप मेरी पोस्ट को आगे बढ़ाइए जितनी दूर तक। आप अगर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज देख रहे हैं जितनी दूर तक भेज दीजिए। जैसे आप मीडिया जगत में है तो मैं सारे मीडिया जगत को कहूंगा कि हर मीडिया जगत अगर हर लैंग्वेज में इसको मतलब रिले करे, आगे एयर करे, तो बहुत जल्दी ये बात आएंगी। एंड लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले वो बुकियां मुझे दे सकते हैं। उनको और भी आगे बढ़ना है तो मैंने जैसे बताया, उनके पास अगर कोई लैंड है, कोई अगर उनके पास सोशल बैंड ऑफ माइंड है, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक नर्सरी बनाना, नर्सरी कन्वर्ट करके मैं उस इलाके को कवर करना चाहूंगा। उसके बाद अगर कोई स्कूल ओनर सुन रहा है अगर, तो मैं चाहूंगा स्कूल ओनर को कि मुझे अपने स्कूल में मुझे बुलाइए, मैं इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं और गुटली मिशन के साथ बनिए। अगर मिलिट्री है, एनसीसी कैडेट्स हैं, गवर्नमेंटल डिप्लोमेट्स हैं, तो अपनी अपनी पावर्स के साथ हर बंदा जुड़ सकता है। मैं तो किसी से कह रहा हूं कि जो कचरा आप फेंक दे रहे हो वो कचरा मुझे दे दो, बस साफ सुथरा करके गुटली को, अगर ब्लैक हो गई तो मुझे मत भेजिए सफेद करके, क्योंकि ब्लैक गुटली फंगस लग गई, सफेद गुटली जो है वो जर्मिनेट होगी। तो मेरे साथ जुड़ना इज अ वेरी इजी टास्क। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सफर नहीं है। मेरा नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9831459390। मुझे कॉल करिए एंड बस हम जुड़ जाए, एक सेकंड की तो बात है।
0: वाकई जसमीत जी, आपके साथ अब हमारे सभी लिसनर्स जुड़ गए हैं और आपके इस इनिशिएटिव में वो हाथ मिलाने वाले हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी को?
1: बस जाते जाते मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि एलपीजी के सिलेंडर्स की लाइनें और उसकी सिस्टम्स, उसकी तकलीफें तो शायद हम थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं और कब खत्म होगी मैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा है कि ये जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए दो बातें बोलूंगा। किसी को लग रहा है ना कि अगर इन्फ्लेशन जो होता है वो मॉनेटरी होता है, तो मैं आने वाले दिन में बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वायरमेंटल भी है। जैसे कि हमारे कानों में जाता होगा कि 150 रुपए का शायद डॉलर हो जाएगा, तो रुपए पे प्रेशर कौन देगा? रुपए पे प्रेशर जिसने जो देना देगा, इन्वायरमेंट भी देगा। इन्वायरमेंट के अपने प्रेशर्स उस पे आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आज अगर हम स्पेकुलेटिव क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा दुविधा देने वाला है। वन सेकेंड, एलपीजी के साथ ही वापस बोलता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर पे हमने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं ये बात उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि एलपीजी से तो 1000 आदमी का खाना बन सकता है, खिचड़ी बन जाएगी, एलपीजी का काम हो गया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है एक हाथ में है, माँ बाबू जी, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, उस टाइम में वो सेल्फिश पना सॉल्व किसके साथ करेंगे? पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? जिसके पास इसका आंसर हो मुझे जरूर कॉल करें 9831459390 पे कि हाँ, इस सेल्फिश पने को ना मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बस ये मेरा एक लास्ट लोगों को कहना है, नहीं तो खाइए गुटिया मुझे भेज दीजिए।
0: कितना आसान है, आई मीन एज सिंपल एज दैट। आम खाइए, गुटलियां गुटली मैन को भेज दीजिए और वो आपकी गुटलियों को पेड़ बना के वापस आप ही के देश में, आप ही के पर्यावरण में भेज रहे हैं, फिर और आम खाइए। सो जरूरी ये है कि आप इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली फायदा है। तहे दिल से धन्यवाद जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि अब हम आपके मिशन का एक हिस्सा है। जरूर जरूर जरूर।
1: देखिए, ये पूरा पर्यावरण का काम मैं कर रहा हूँ किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि किसान के बारे में मुझे क्यों सोचना है, मैं तो सिटी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूं कि इंडिया एज अ कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ जनता जो है वो रूरल इकोनॉमी पे बिलोंग करती है। एंड हमारे शहर में जो वेजिटेबल और फ्रूट आप खा रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ विलेज, नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो दिमाग में ये बंदे बात रखें कि किसान का कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में।
0: वाकई दोस्तों, अगर हम आज अपनी प्लेट में खाना देख रहे हैं और जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप हेल्दी कहते हैं ना, अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो आ कहां से रहा है? तो अगर इस खाने को आप खाना चाहते हैं, यू वांट टू लिव हैप्पीली, तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन्स की नहीं लेकिन किसानों की जरूरत होगी। तो ये अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच जसमीत जी हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: Gagan Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है. मैं हूं प्रांका और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में जहां आपसे ढेर सारी बातें मैं करती हूं और पूरे 3 बजे तक यानी कि 1 से 3 का ये प्रोग्राम है. 2 घंटे जहां आपके साथ बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए गाने भी तो ज़रूरी है ना, है ना. तो मैं गाने भी आपको सुनाती हूँ और साथ ही आपकी फरमाइश है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और बस ऐसे ही आप अपना प्यार रेडियो मानव रचना को ऐसे ही देते रहें और खूब सारे मैसेज करते रहें. हमारा नंबर है 8010781078. इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. कोई बात आपको शेयर करनी है, कोई गाना आपको सुनना है, गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें झट से व्हाट्सएप कर दें या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं. अब मैं आ चुकी हूँ तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आते ही मैं आपको एंटरटेन करने के लिए सुनाती हूँ एक गाना. तो भाई ये गाना जो है ना बड़ा ही खूबसूरत है, चलिए एंजॉय करते हैं. उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ. रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं. मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

ये मेरी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांकार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज के दिन क्या होने वाला है, तो आज मैं आपको हैक्स बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सैटरडे मैं आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। या तो कोई ना कोई होता है जिनसे मैं बात करती हूँ, इंटरव्यू लेते हैं हम उनका, या फिर हम हैक्स पर बात करते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स, हैक्स जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो यस, आज भी मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिससे वाकई में काम ना केवल आसान होगा बल्कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें जो कि किचन से जुड़ी हैं, आपके ब्यूटी हैक्स से जुड़ी हुई हैं, जिससे आप हम चाहते हैं कि बहुत कम चीज़ों में हमारा काम हो जाए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा भी यूज़ ना हो और हमें जो चाहिए उसका रिजल्ट भी 100% आए। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, या फिर मनी सेविंग हैक्स, ट्रैवलिंग हैक्स और भी बहुत कुछ तो आज के प्रोग्राम में होने वाला है। और कुछ मैसेज भी है मेरे पास में, इनको भी हम लेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, घर का काम हर दिन चलता रहता है, घर का पूरा काम, घर साफ करना, कभी खाना बनाना, कभी चीज़ों को ठीक करना, तो कभी उनकी सफाई। ये काम देखने में भले ही आसान लगे कि हाँ ये तो झट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये काम जितना देखने में आसान लगता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत वक्त लग जाती है और मेहनत ऊपर से, है ना। तो ये सारे काम निपटाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, यानी कि अगर पूरा घर अच्छे से देखने लगे तो पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है, तो इतना टाइम जो है वो लग जाता है। और यही वजह है कि घर संभालने वाले लोग जो है ना हमेशा ऐसी तरकीबें खोजते रहते हैं जिससे उनका समय बच जाए और काम भी हल्का हो ना, जो समय की बचत के साथ साथ एक होता है ना कि काम इजी हो तो मूड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि थोड़ा वक्त हमें हमारे लिए भी मिल जाता है। आजकल की तेज़ ज़िंदगी में ना हर मिनट की कीमत होती है, और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को समझदारी से करने की आदत जो है ना वो बड़े बदलाव लेकर के आ सकती है। और फिर चाहे आपके किचन से जुड़ा है, आपके वॉशरूम से चीज़ें जुड़ी हैं, या किसी भी चीज़ से, अगर उन चीज़ों में हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे काम को आसान कर दे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो बस यही सोच करके मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे हैक्स लेकर के आती हूँ। अब जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ किचन हैक्स, जो कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किचन का ही होता है। किचन में आपको अगर लगता है कि सिर्फ खाना ही तो बनता है, तो खाने के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। किचन को साफ करना, बर्तन क्लीन करना, उसका प्लेटफॉर्म क्लीन करना,

यहाँ तक कि पूरी किचन को क्लीन रखना, बिकॉज वहाँ पर हम अपना खाना बना रहे हैं, राइट? अगर वो हम ज़रा सा भी गंदा रखेंगे तो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो घर को संभालता है, उसकी देखभाल करता है ना, उनसे पूछो कि कितना वक्त लग जाता है, और ख़ास तौर से किचन में। तो हमेशा से हमारी ये खोज रहती है कि क्यों ना किचन को लेके कुछ चीज़ें पता चलती रहे, जिससे यू नो थोड़ा काम आसान हो जाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स, जो कि अक्सर मैं आपके लिए किचन पर ज़्यादातर बात करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब देखिए, किचन में वैसे तो कई सारे काम हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो कि यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब भी यूज़ होती है और वो यूज़ में ना आ पाए तो गुस्सा आ जाता है, और वो है किचन में रखी कैंची, जिसको हम कोई पेपर को कट करने में, या पॉलीथीन को कट करने में, या दूध की थैली को कट करने में, या और भी बहुत सारे कामों को करने में हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इसकी जो धार है वो कम हो जाती है, अब यूज़ करते करते धार कम हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि फिर जब यूज़ करने के लिए आते हैं तो वो यूज़ में नहीं आ पाती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे इसकी धार बनी रहे? तो देखिए, आप अगर इसकी धार बनाना चाहते हैं ना, तो जो फॉइल पेपर होता है उसको 3 से 4 बार आप फोल्ड कर लो। फोल्ड करके आप उस कैंची से काटो। फॉइल पेपर जो होता है एल्युमिनियम का, आप उसको 3 से 4 या 5 लेयर बना के उससे उस पर आप कैंची चलाओ, उस कैंची से आप उसको काटो, और जैसे जैसे आप काटोगे ना उसकी धार बहुत अच्छी होती जाएगी, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करना, तो ये वापस से इस्तेमाल में हो जाएगी। तो हर हफ्ते मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, और वैसे भी जब हमारे पास समय होता है थोड़ा, और हम ऐसी चीज़ें कर ही लेते हैं थोड़ा फन में, है ना, इसलिए आप जब भी फ्री हो तो कैंची में धार लगा ही लीजिएगा, क्योंकि घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग हैक। अब चलिए आपको सुनाती हूँ एक बेहद खूबसूरत सा गाना। रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, क्योंकि हैक्स बता रही हूँ आपको, बड़े ही ज़बरदस्त हैक्स हैं। और कुछ पहले मैं किचन हैक्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज किचन का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि सारा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन किचन का अगर काम हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से, हाँ, कुछ हैक्स के मदद से अगर हम काम कर लें तो कितना बढ़िया हो जाए, है ना। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि किचन के हैक्स आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्च जो है, वैसे तो कई सारी चीज़ें जो बड़ी नाजुक होती है और ख़राब हो जाती है, उसमें से एक हरी मिर्च है। अच्छा, हरी मिर्च और धनिया, धनिया को भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया भी बहुत नाजुक होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम हरी मिर्च को लेके बात करते हैं। हरी मिर्च क्योंकि जल्दी गलने लगती है ना, फ्रिज में रखा तो नमी पकड़ने लगती है और इस वजह से वो गलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरी मिर्च लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसमें आप हरी मिर्च रख रहे हैं उसमें आप एक या तो टूथपिक रख दें एक दो, या फिर आप कुछ चावल के दाने रखते हैं, तो इससे क्या होगा, वो नमी सोख लेते हैं और हरी मिर्च ज़्यादा समय तक हरी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, गलेगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ में रखें लेकिन वो या तो सूख जाता है या गल जाता है, सही से नहीं रह पाता है ना, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका धनिया जो कि फ्रिज में है और आप उसे लंबे टाइम तक हरा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको करना है एक बर्तन में या छोटे से गिलास होता है उसमें आप पानी ले लीजिए और धनिया को उसमें रख दीजिए, यानी कि पत्ते ऊपर की तरफ और उसके जो डंडे हैं वो नीचे की तरफ, जैसे हम फूलों को पॉट में रखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। तो बस ऐसे आप करके जब आप फ्रिज में रखोगे कि धनिया के पत्ते ऊपर की तरफ है और गिलास के अंदर उसमें उसके तने हैं, तो लंबे टाइम तक वो हरा रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि धनिया को, हरी मिर्च को आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उतना ही लाएं जितना 3-4 दिन में आप ख़त्म कर लें, बिकॉज इसका एक टेस्ट होता है, और समय के साथ साथ अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो वो टेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ी चीज़ों का स्वाद जो है खाने में वो ज़्यादा अच्छा बनाता है खाने को, तो कोशिश करें कि आप ताज़ी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज हम हैक्स के बारे में कई सारी बातें कर रहे हैं। चलिए एक हैक आपको और बताती हूं और वो है बाथरूम से जुड़ा हुआ हैक, बिकॉज बाथरूम में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हैक्स हमें चाहिए होता है। अब जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कई सारे लोग इसको फेस करते होंगे और वो है साबुन का गल जाना, है ना। अच्छा मुझे बताना, हाँ अगर आप में से किसी को सोप्स का बड़ा शौक है तो मुझे बताना, बिकॉज मुझे बहुत शौक है। नई नई तरह के मार्केट में जितने भी सोप्स होते हैं ना, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों एक बड़ा ही अलग सा क्रेज है उनको लेकर के, कि जो भी कलरफुल सोप्स होते हैं और अच्छे अच्छे सोप होते हैं जिनकी शेप अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से सोप बने, तो बड़ा शौक होता है कई लोगों को उसको कलेक्ट करने का। लेकिन दिक्कत पता क्या आती है कि हम बड़े प्यार से बड़े इच्छा से हम वो सोप लाते तो हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं तो वो गीले होकर गलने लगते हैं। अब कुछ ऐसा ट्रिक चाहिए होता है कि हम उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद में साबुन गले भी नहीं और आराम से वो सूख जाए कहीं पर, मतलब सही रहे। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है बाथरूम या रसोई में रखा साबुन कई बार गीला होकर गलने लगता है, तो इसके लिए किसी छोटे डिब्बे में कुछ रबर बैंड्स लगाकर साबुन को ऊपर रखें, यानी कि नीचे रबर बैंड्स हैं और ऊपर में साबुन है। इससे साबुन ना तो गलेगा और ना ही ख़राब होगा और इसकी खुशबू भी बनी रहेगी। जैसे सोप्स होते हैं ना, समय के साथ खुशबू कम हो जाती है उसकी, तो वो नहीं होगा। तो ये आसान सा ट्रिक मुझे लगता है कि काम आने वाला है और ये तो हर कोई कर सकता है। तो आप करके मुझे बताना कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको कई सारे स्मार्ट हैक्स बता रही हूं। अच्छा, एक आपको हैक बताती हूं, और ये हैक जुड़ा है किचन से। किचन में कई सारे काम, तो मुझे लगता है कि अब आप जो स्मार्ट टिप्स हैं, हैक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ जो कि बहुत ही काम का होता है। अच्छा, लहसुन जो है ये खाने के टेस्ट को बढ़ाता है ना, लेकिन आप कितने टाइम तक लहसुन को ताज़ा रख पाते हैं? मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, जिस वजह से वो ख़राब होने लगता है या फंगस लगने लगती है। तो अगर ऐसा ही होता है कि लहसुन आप रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने लगता है, फंगस लगने लगती है, तो लहसुन छील कर रख देने से, वो जल्दी ख़राब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप इसे डिब्बे में रखें, यानी किसी भी आप डिब्बे में रखें, और उसके नीचे थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर अगर आप डाल देते हैं, तो बिना फ्रिज में रखे भी कई दिनों तक जो लहसुन है वो ताज़ा रहेगा। और लहसुन को वैसे भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, आप इसको भारी रखिए, लेकिन अगर आप उसमें मैदा डाल देते हैं या कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम तक लहसुन बहुत सही रहेगा। और

रखें और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को फेंक देते हैं, बट इसके जो रोल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इसको सजा करके, यानी कि इसमें फूल पत्ती का डिज़ाइन दे करके आप इसमें कुछ कुछ रख सकते हैं, या ये आपके बहुत काम में आएगा और मैं बताऊंगी कैसे। और चलिए, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस प्रोग्राम में। आपके पास कोई हैक है जिसे आपने पढ़ा या कहीं से सुना और अब आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और काफी सारे हैक्स मैं आपको बता रही हूं आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि किस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के जो वो रोल्स हैं वो जब खाली हो जाते हैं तो हम अक्सर फेंक देते हैं। एक तो वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और अगर कभी हम ऐसे सोचते भी हैं कि इसका हम कुछ कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम रखने के बाद फिर इसे फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए, हर कमरे में पर्दे लगे होते हैं ना, लेकिन जब उन्हें खोलते हैं तो उनका ऊपरी हिस्सा अक्सर उलझा या बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस परेशानी से बचने के लिए पुराने रैपिंग रोल्स, जैसे जो एल्युमिनियम फॉइल या आपके जो रोल्स होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तो आप उसमें इनका इस्तेमाल करें। जी हाँ, इन रोल्स को पर्दे के रिंग्स के बीच में अगर आप फंसा देंगे तो एक तो शेप बहुत अच्छा आएगा, बहुत सुंदर लगेंगे, एक वो गोल सी शेप आएगी पर्दों में और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्दे लगेंगे। और इससे पर्दे फिक्स रहेंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, उलझेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। अगर कोई आता है आपके घर में, रिश्तेदार, कोई मेहमान, तो वो देख कर आपके पर्दों की तारीफ ज़रूर करेगा, क्योंकि जब वो रोल्स आप लगाओगे और उससे जब पर्दों में शेप आएगी ना, वो बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो आप ऐसे ही स्मार्ट हैक्स के लिए प्रियंका को कांटेक्ट करें, उसे मैसेज करें, और कोई हैक आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताएं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और देखिए भाई, किचन के बारे में तो कई सारी बातें हमने कर ली, मैंने बहुत सारे हैक्स आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पैसे बचा लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और ऐसे में पैसों की बचत बहुत ज़रूरी है। तो अब जो देखो मेन खर्चे हैं वो तो होने ही हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बीच हम क्या करें कि उसमें से भी अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो मज़ा ही आ जाए ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ जो कि बड़ी कमाल की है, जो पता है हमें भी नहीं पता होता कि हमसे गलती हो रही होती है, लेकिन हम अगर इसे समझ लें तो हम इस गलती से बच सकते हैं। पता है क्या, जब भी हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहली हम, अगर हमारे पास ऑनलाइन का कोई ऐसा रोल नहीं है, राइट, मतलब मान लीजिए कि हमें ऑनलाइन नहीं करना है, हमें कैश में पे करना है, और कैश पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो बस अब आपको कैश वहाँ नहीं देखना है, आपको कैश देखना है अपने घर में। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से 3 या 4,000 आप घर में निकाल के चले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं, राइट। तो अब आप 10,000 तक की तो एटलीस्ट शॉपिंग करेंगे ना, 10 भी नहीं तो आप 7-8 तक तो जाएंगे ही। अब वो वाली चीज़ें भी हम कभी कभी ले आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पसंद आ गया और हमें पता है हमारे वॉलेट में पैसे हैं तो बस हमने ले लिया। अब सोचो अगर हम पहले से ही घर में पैसे रख के आ गए हैं और हमारे पास अब सिर्फ 4 या 5,000 रुपए हैं, तो अब हमें पता है कि भाई 4-5 से ऊपर तो नहीं बढ़ पाएंगे, आप कैश में पेमेंट करनी है ना, तो इसके लिए फिर हम उतना ही खर्च करेंगे। और यही हैक है, यही करना है आपको कि आपको पैसे सिर्फ आधे लेके जाने हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए, अब देखो अगर 8-10 हज़ार की चीज़ घर में आनी है तो अगर आप छोड़ के जाओगे तो फिर तो वापस आना पड़ेगा आपको पैसे लेने के लिए है ना। लेकिन अगर आप छोटी मोटी चीज़ें लेने जा रहे हैं लेकिन आपको पता है, आप अपनी आदत से वाकिफ हैं कि मैं थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर लेती हूँ, तो उसके लिए तो फिर यही तरीका सबसे बेस्ट है, करके देखिए मज़ा आ जाएगा। और मेरे जैसे, क्योंकि मैं कई बार, ज़्यादा नहीं बट हाँ मैं कई बार खर्चा काफ़ी कर लेती हूँ, तो मेरे जैसी जो लड़कियाँ हैं ना, इनफैक्ट लड़के भी, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है हो जाता है। तो आप इस तरह से बचत कर सकते हैं अपने पैसों की। और भी पता है बहुत सारे तरीके जिससे आप बच सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका। और आज मैं आपको, क्योंकि सैटरडे है, काफ़ी सारे हैक्स आपको बता रही हूँ। तो अब एक चीज़ बताती हूँ, अब आपको शॉपिंग करने जाना है तो किस तरह से वॉलेट का ध्यान आपको पहले ही रख लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वाकई में बहुत स्मार्ट है कि, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, ज़रूरत हमें, अब मान लीजिए हमारे वॉलेट में थे 10,000 रुपये, लेकिन अब हमने उसमें से 5,000 निकाल दिए और 5,000 हमारे पास में रह गए। लेकिन मतलब जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ मान लीजिए स्टोर से कुछ ख़रीदने जाते हैं, हमारी ज़रूरत 3 की भी नहीं होती, यानी 3,000 से भी अंदर का सामान आता है, लेकिन हम बहुत सारी फालतू की चीज़ें ले आते हैं। अब उससे कैसे बचना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चीज़, आप अकेले जाएं। अगर आप किसी दूसरे के साथ में जाएंगे तो शौकिया तौर पर चीज़ें आ ही जाती हैं, और पता है फिर घर आके समझ में आता है, अरे हम तो डाइट पे थे, हमें तो ये मीठा नहीं खाना, हमें ये बाहर का नहीं खाना, हमें ये पैकेट फूड नहीं खाना है, क्यों ले आए हम इसे। फिर मन मार के घर में रखना पड़ता है। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, ले तो आते हैं लेकिन फिर उसे रखे रखे एक्सपायर कर देते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है, या फिर मन मार के खाना पड़ता है। अब आप सोचो कितनी कैलोरीज आप अपने अंदर ले रहे हैं, राइट? तो आपको बस यही सोचना है, ये घर आकर नहीं सोचना है, ये वहीं सोचना है कि अगर हम ये लेके गए तो हम ये खा नहीं पाएंगे। बस अपने अंदर का जो वो जो अवतार है ना, जो आप देखना चाहते हैं कुछ समय बाद जब आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेंगे, बस वो अवतार आपको जगाना है और आपको उसी वक्त ध्यान रखना है। कितनी बचत पता तभी हो जाएगी, क्योंकि जब हम सामान कुछ लेने जाते हैं ना, सामान ज़्यादा नहीं होता लेकिन ऊपर की चीज़ें जो कि फास्ट फूड है या पैकेज वाला जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से खर्चा भी होता है और काम का भी नहीं होता वो सामान। इसलिए आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे जाते वक्त तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर जाएं तो आप अकेले ही जाएं, क्योंकि अकेले आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे, राइट? और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ जिसको खाने पीने का बड़ा शौक है, तो बस फिर आप, फिर ये हैक आपके लिए नहीं है। इसलिए आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फॉलो करें, डेफिनेटली ये सब पॉसिबल हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में भाई कई सारे हैक्स मैंने आपको बताए और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत काम की है, मतलब आप इसके लिए ना मुझे थैंक यू बोलोगे। और वो पता ही क्या है, वो है समय की बचत कैसे करें, है ना। आई नो आप ये जानना चाहते हैं बिकॉज ये आपका नहीं हर किसी का सवाल है कि समय की बचत कैसे करें। अब देखिए समय की बचत के लिए ना आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ से कौन सा समय निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है बिकॉज हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें अगर 10 मिनट लगने हैं तो हम उसमें 15-20 मिनट लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको देर से करते हैं, नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते और एक ही तरीके से काम करते जाते हैं और जहाँ हमें 10 मिनट लगने हैं वहाँ हम 15-20 मिनट लगा देते हैं। तो थोड़ा सा बस गौर कीजिए इन सारी चीज़ों पर, पूरे दिन में काफ़ी कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप ऑफिस जाते हैं और बहुत बिजी रहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ और ख़ास तौर पे अपने लिए अगर आप वक्त निकालना चाहते हैं तो रात में ही आधे से ज़्यादा तैयारी करके आप सोएं। जैसे कि आप अपने जो कल पहनने के लिए कपड़े हैं वो आप निकाल करके इस्त्री कर लीजिए अच्छे से साफ, जो भी आपको करना है जैसे आपको अपने हील्स क्लीन करने हैं या शूज़ क्लीन करने हैं वो भी आप रात में करके रखें, कपड़ों पर इस्त्री करके रखें। और भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप सुबह कंप्लीट करने वाले हैं वो आप रात में ही कर दीजिए। बच्चे हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी आप रात में ही प्रेस वगैरह कर दें अच्छे से, उसको इस्त्री करके रखें। तो आधे से ज़्यादा काम अगर आप रात में ही

लेते हैं, तो यकीन मानिए सुबह आपका काफी टाइम बच जाएगा और वो टाइम आप खुद को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली चीज अगर सब कर लें तो एक सही मैनेजमेंट जो होता है टाइम का, काम का, वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे बताना हाँ कि जो हैक्स मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे लगते हैं, और उसमें से कोई भी ऐसा हैक जो आपको पसंद है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रियंका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. भाई आज के प्रोग्राम में काफ़ी सारे हैक्स पर मैंने आपसे बात की, बहुत कुछ आपको बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. लेकिन पता है एक उम्मीद मैं ये भी करती हूँ कि आप मुझसे बातें शेयर करो. अब जैसे आज के प्रोग्राम में मैंने हैक्स पर बात की तो आई होप आपके पास भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई हैक या कोई किस्सा कहानी. तो आप बिल्कुल कीजिए. मैं नंबर आपको बता देती हूँ 8010781078. ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप कर दीजिए या टेक्स्ट कर सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ मेरे चलने का वक्त हो गया है. और हाँ, चलते चलते एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमेशा ना लाइफ में खुश रहें, हमेशा जिंदगी में छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उस पर तवज्जो दें, क्योंकि ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ रही है. आगे बढ़ने के साथ साथ अगर इनको खुशियों से जिया जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है. तो बस इसी बात के साथ, इसी खूबसूरत लाइन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शायर की कि जब वो अपने शेर लोगों को सुनाता है तो लोग वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। नाम है राहत इंदौरी। देखिए दोस्तों, राहत इंदौरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम राहत इंदौरी नहीं बल्कि राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम था रफतुल्ला कुरैशी और माँ का नाम मकबूल उन्निसा बेगम। और इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी देवास और इंदौर के नूतन स्कूल में हुई थी। इसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 सालों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और एक पत्रिका थी जिसका नाम था शाखें, उसमें 10 सालों तक संपादन भी किया था और सालों साल वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने दो शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनको एक बेटी शिबली और दो बेटे जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी की थी अंजुम रहबर से, जो कि ये बात है 1988 की। दोस्तों, अंजुम से उनको एक बेटा हुआ और कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहत इंदौरी कैसे बने शायर। हुआ क्या दोस्तों, राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड जो होता है ना, उस पर लिखने का काम किया करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लिया करते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर कर दिया था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की थी। अब राहत इंदौरी की इच्छा को जान निसार अख्तर ने कितनी तवज्जो दी, इसके बारे में भी बात होगी। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर। मुझे

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक बार राहत इंदौरी की जानिसार अख्तर से मुलाकात हो गई। जानिसार अख्तर यानी कि जावेद अख्तर साहब के पिताजी, उनसे मुलाकात हुई और मैं भी शायर बनना चाहता हूँ ये इच्छा उन्होंने उनके सामने जाहिर कर दी। तब अख्तर साहब ने कहा था कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जम कर चलती थी। इसी के साथ उनके और भी बहुत सारे कलाम हैं, आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम कि जिसने अपने शेरो शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने देश भारत में ही नहीं, बल्कि वो जिस देश में भी जाया करते थे और अपनी शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया करते थे। उनकी शायरी कहने का जो अंदाज है, वो अंदाज ही लोगों को इतना अच्छा लगता था कि उनके दीवाने हो जाया करते थे। और राहत इंदौरी की बात चली है।

तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के कह सकते हैं कि वट वृक्ष की तरह थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत इंदौरी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था। कहते थे कि शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। वो कहते थे कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं। ऐसा कहना था राहत इंदौरी का, ऐसा जज्बा था उनके भीतर अपने देश भारत के लिए। और भारत के लिए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर लिखे हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है, उनकी अपनी पसंद के मुताबिक, उनकी रुचि के मुताबिक। बात चल रही है शायर की, और शायर हैं राहत इंदौरी। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि वो अपने फन को, अपने टैलेंट को इतना निखार ले कि लोगों के बीच जब वो जाए तो लोग उसकी शायरी से या जो भी कला वो जानता है उस कला से अपना बना लें। राहत इंदौरी के अंदर ये जादू वाकई में था कि किस तरह से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, किस तरह से उनके जैसा बनकर उन्हीं की बात उनको कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो राहत इंदौरी के साथ थी। शायरी लिखने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने व्यवसायिक स्तर पर पेंटिंग करना शुरू भी कर दिया था। वो भारतीय सिनेमा के जो पोस्टर होते हैं ना, और जो बैनर होते हैं, उनको बनाने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं, वो किताबों के जो कवर होते हैं ना, उन कवर को भी डिजाइन किया करते थे। उनके गीतों को 11 से भी ज्यादा भारतीय सिनेमा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उसी फहरिस्त में नाम आता है मुन्ना भाई MBBS का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वो अपनी शायरी की नज्मों को एक खास शैली में पेश किया करते थे। उनकी जो पहचान थी ना, वो पहचान भी सबसे अलग थी। राहत इंदौरी की जिंदगी के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही है राहत इंदौरी की। चित्रकारी में भी काफी नाम अर्जित किया था राहत साहब ने। राहत इंदौरी की दो बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत साहब को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर इंदौर में मात्र 10 साल की उम्र से ही एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में उनका नाम हो गया था। अपनी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना के चलते वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। एक दौर वो भी था जब ग्राहकों को राहत के जरिए चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी कबूल था। तो इस तरह का दौर था हमारे आज के शायर राहत इंदौरी का। लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ और भी बातें जुड़ी हैं, आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: नहीं है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। अब उनको शेर पढ़ने का इतना शौक था कि वो चाहते थे कि जो मेरा कलाम है मैं लोगों को सुनाऊं, और इसीलिए उनके अंदर ये बात पैदा होती थी कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा, ये सवाल उनके जहन में आता था। राहत साहब पर लिखी डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब, जिसका शीर्षक है मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा। इस किताब में एक किस्से का जिक्र है कि राहत साहब इंदौर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे जब वो 9वीं क्लास में हुआ करते थे। तो उनके स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की जो ड्यूटी थी वो शायरों के वेलकम में लगी थी। वहां जब जानिसार अख्तर आए तो राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए और कहा कि साहब मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर जानिसार अख्तर साहब बोले कि भाई देखिए, पहले कम से कम आपको 5000 शेर याद होना चाहिए। तब राहत साहब फौरन बोले कि अरे साहब, इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। अब राहत इंदौरी की इस बात को सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने क्या कहा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में और किस्सा चल रहा था कि एक बार जानिसार अख्तर साहब से जब राहत साहब की मुलाकात हुई तो राहत साहब ने कहा कि मैं भी शेर बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो जानिसार अख्तर साहब ने कहा इसके लिए आपको कम से कम 5000 शेर ज़बानी याद होने चाहिए बरखुरदार। तो राहत साहब ने कहा कि साहब इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। ये बात सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने कहा तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा ही होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर साहब ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा और मिसरा कुछ यूं था, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ ही आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके।
4: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज यहां पर हर बार हर एक एपिसोड में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है कशिश। कशिश से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बिकॉज अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, काउंसलिंग सेशंस लेती हैं बच्चों के। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी, स्पेशली हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। इसको हम दो एस्पेक्ट में कवर करेंगे, हमारा माइंड काम कैसे करता है जितना इनको पता है बताएंगे। दूसरा हम ये कवर करेंगे कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना है, वट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। बट लेट्स वेलकम कशिश। स्वागत है कशिश आपका।
5: थैंक यू सो मच।
4: थोड़ा सा बताइए अपने डोमेन के बारे में, क्या करते हो आप?
5: सो बेसिकली आई हैव डन बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें अपने बिहेवियर के बारे में और हाउ अ ह्यूमन माइंड्स वर्क, आप वो जानते हो, बहुत हेल्प करता है आपको ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनली अवेयर ही नहीं होते अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ इस्केप करते रहते हैं। एंड वो सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक टाइम आता है जब वो जितनी सारी चीज़ें आपके अंदर बॉटल अप हो गई है, तो जब वो फूटती है और उसके बाद जब आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, और जब वो फूटती है तो वो सिर्फ आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो उन सब के ऊपर फूटती है। तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ तक कभी पहुँचे, और हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पहुँचने से पहले हम बहुत पहले उस चीज़ को रोक दें, उस पर काम करें। तो उस पर काम हम ऐसे ही कर सकते हैं जब हम अवेयर होंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, मतलब व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। बेसिकली जब हमें पता है कि हम इस एक्शन के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप चाहे बाद में किसी को भी ब्लेम कर लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था, वो था, वो था, तो कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हो तो आप कुछ ऐसा करोगे ही नहीं जो कि आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि अरे मैंने ये क्यों करा। अगर आप कॉन्शियस होते तो आप वो चीज़ करते ही नहीं, पर आप कॉन्शियस नहीं थे एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर एक्शंस, दैट्स व्हाई यू डिड इट।
4: So basically the study of your behavior, we can call it applied psychology, right?
5: Yes. Applied psychology में basically हम बहुत सारे practicals करते हैं, practical, not, it's not just theoretical, practicals भी होता है। तो जैसे there is a personality test, draw a personality test, when you are given a sheet of paper and you are asked to draw a boy. तो मेरे साथ जब मेरा एक क्लाइंट था, सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने उसको पेपर दिया था और उस टाइम पे ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो उसने इतनी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी फिगर ड्रॉ करी थी बॉय की। तो जितनी छोटी आपकी फिगर होती है उतनी कम आपकी सेल्फ वर्थ होती है जो आप उस टाइम पे अपने आप को देख रहे होते हो कि मेरी बस इतनी ही वर्थ है। अगर आप बहुत बड़ी इमेज ड्रॉ करते हो, इट मीन्स दैट येस You think that you are worthy, but अगर आप जितनी छोटी इमेज ड्रॉ करते हो तो आपकी वर्थ उतनी ही कम होती है अपनी नज़रों में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉ पर्सनैलिटी टेस्ट।
4: अरे बाप रे, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है, मेरे को जाके वापस अपनी सारी ड्राइंग्स देखनी पड़ेंगी कि मैंने कब क्या बनाया है और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था। सो अमेजिंग, सो इंटरेस्टिंग। इफ आई मे आस्क यू, व्हाट वाज द थॉट That triggered you to pursue this? क्यों ये choose किया कि मेरे को psychology में जाना है?
5: Right. So when I was in school, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे और मेरी family में भी मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें share कर पाऊँ। And I always searched for a friend and for love. तो मुझे वहाँ पर लगा कि maybe I should enjoy my own company, मुझे अपनी own company enjoy करने के लिए क्या करना पड़ेगा। So when I was in 11th, there was this subject psychology, और उनके उसमें option था that you can either choose sociology or psychology। तो psychology choose करने में मेरा कोई interest नहीं था पहले, and I wanted कि मैं sociology ही opt करूँ, but उसमें बहुत कम बच्चे थे तो फिर वो subject ही cancel out हो गया और मुझे psychology choose करनी पड़ी forcefully। तो जब मैंने वो साइकोलॉजी चूज करी तो उसमें एक टर्म थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इफ यू नो अबाउट इट, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो डॉटर होती है उसको अपने फादर के लिए मतलब वो चाहती है कि वो फादर के साथ एक फैमिली बिल्ड करे, तो ये हर किसी के साथ होता है. तो वो सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैंने बहुत कनेक्ट करा साइकोलॉजी से, सब्जेक्ट से. तो मुझे ये था कि ये जब साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी 11th 12th की, तो मैं इसको परस्यू करूँ, मैं इसके बारे में और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता था जो चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ती थी, बिहेवियरली जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. इसलिए मैंने उसको परस्यू करा कि मे बी आई शुड चूज दिस. इसलिए मैंने 3 साल अपने दिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी 3 सालों में, क्रिमिनल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एक जो सीरियल किलर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, वो क्यों करता है, कहाँ से आती है वो चीज़ें, एंड एवरीथिंग, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड आई वुड से कि अगर आपको खुद के बारे में जानना है और आपको अगर ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपको लोगों के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए. और बहुत सारी बुक्स भी है, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास पढ़ने के लिए. अगर आप डिग्री भी नहीं कर सकते तो भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, देर आर मेनी बुक्स. आप ओशो को पढ़ना स्टार्ट करिए. एक्चुअली ओशो आपको बताएंगे कि कैसे यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस एंड हाउ योर एक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप आगे कहाँ जाएंगे इसके बाद.
4: आई एम कन्विंस्ड. ऑलराइट, अंडरस्टैंड. लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कशिश से हम आगे बात करेंगे. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कवर, बट वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. आई एम आरजे सागर.

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए, कशिश के लिए, तो प्लीज 8010781078 पर जरूर अपनी बात पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे और कशिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साइकोलॉजी को समझने की बात हो रही है। कशिश, मैं दो तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहूंगा। फर्स्ट इज एज अ स्किल, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं समझना चाहता हूँ, इन जनरल हमें अगर साइकोलॉजी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं जानना चाहता हूँ जितना आपके बारे में हो सकता है मैक्सिमम, सो कैसे हम लोग पता करें। स्पेशली इसमें एक एस्पेक्ट होता है कि जब आप किसी इंसान से मिल रहे हो या डेट के लिए जा रहे हो या शादी के लिए बात चल रही है आपकी, किसी लड़का या लड़की को आप देखने जा रहे हो, सो यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड कि मैं ये चीज़ें जो मुझे ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे पता लगे कि हम दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं है, या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, लाइक दिस।
1: ट्रू। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्लेस अ वेरी बिग रोल। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ, तो आप वो बिल्ड ही नहीं कर पाओगे कनेक्शन, और आप उसको फॉरवर्ड भी नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो एक इंसान से, वो आपकी बात सुन भी रहा है, वो एक गुड लिसनर है भी या नहीं। अगर वो गुड लिसनर नहीं है और सिर्फ वो मैं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, तो ड्रॉप इट राइट देयर बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चलाना है, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आप बोल रहे हो और दूसरे वाला सुन रहा है, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट लाइक कि सिर्फ दूसरे वाला ही बोल रहा है और आप ही सुन रहे हो। बोथ वेज होना चाहिए, आप भी बोलो, वो भी बोले, आप भी सुनो और वो भी सुने। तो अगर ये चीज़ सबसे पहली होती है कि अगर ये इसमें आप टिक कर पा रहे हो, तो इट्स वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आप देखो कि वो जो इंसान है उसके पैटर्न्स क्या है, वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, और आप कुछ ऐसा उससे इंसिडेंट शेयर करो जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो और आप जैसे उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और जैसे वो इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप कहीं पर मैच कर रहे हो, आपके थॉट्स कहीं पर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ इस सिचुएशन में ये इंसान भी नॉट 100%, अगर वो 70% भी वैसा सोच पा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपके पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो आप फुटबॉल नहीं बन सकते दूसरे के ओपिनियन के लिए। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन, राइट? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप समझाओ, एंड एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सोचो कि सिर्फ आपकी बात ऊपर है और आप दूसरे को सप्रेस करते रहो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं चलेंगे आपकी चीज़ें। तो सबसे पहले दूसरे को बोलने के पहले आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि क्या आप इतने एडजस्टिंग और एक्सेप्टिंग हो सकते हो इस इंसान को लेकर। इफ़ येस, इट इज़ गुड, और तभी चीजें चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
0: यू शुड नो द पैटर्न्स, यू शुड कम्युनिकेट। सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, क्या चीजें हैं जो टाइम बीइंग हमारे सामने खोलती हैं लेयर्स, या जो हमें खोलनी चाहिए एटलीस्ट इंसान के बारे में और अच्छे से जानने के लिए, कि सामने से सब झूठ बोलते हैं।
1: ट्रू।
0: सो व्हेनेवर यू मीट समवन, मे बी अ कॉलीग, मैनेजर, आपको फर्स्ट टाइम ही लगेगा बहुत अच्छा इंसान है, हर आदमी अपना बेस्ट लेके आता है, बट How can we maximize that thing to peel off the layers?
1: Right. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप मिलो उस इंसान से। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें सब प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। किसी ऐसी सिचुएशन में रहो जिसमें कि आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, आप दूसरे इंसान के पास भी फ़ोन नहीं है, आपके पास भी फ़ोन नहीं है, आप सिर्फ आप दो लोग हो, बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फंसे पड़े हो एक जगह पर, आप वहाँ पर देखो कि तब वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या वो पेशेंट है उस टाइम पर, क्या वो आपके साथ है, या फिर वो भी चिड़चिड़ा चुका है और वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, रेस्टलेस हो रहा है अगर वो, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये इंसान ऐसे एक्ट करेगा। अगर वो उस टाइम पे भी पेशेंट है और वो इफ़ ही इज़ देयर विद यू और वो समझ पा रहा है और वो काम कर पा रहा है आपको उस सिचुएशन में, तो वहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि इंसान ऐसा ही रहेगा अगर कोई आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। पर अगर वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बौखला गया है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो नाउ अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये इंसान आगे भी ऐसे करेगा। और दूसरा कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो चार मीटिंग्स में आप नहीं समझ सकते किसी को। लोग बहुत आजकल प्रटेंड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू प्रटेंड, और फेक करना भी बहुत ईजी हो गया आजकल। तो एक्सट्रीम्स पहले जानो इंसान के, कोई ऐसी सिचुएशन लाओ जिसमें आप ऐसा सामने वाले को प्रवोक भी कर सकते हो कि वो गुस्सा करे, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या पैटर्न है, कितना गुस्सा कर सकता है। अगर वो उस टाइम पे गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो आगे भी नहीं सुनेगा आपकी बात उसका, क्योंकि पैटर्न ही ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हो जाता है, और वो उसके अपने थॉट्स इतने ओवरपावरिंग होते हैं कि वो दूसरे इंसान को कंसिडर ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो आप देखो ऐसी सिचुएशंस में एंड अप करो जहाँ पर आपको इंसान को जानने का मौका मिले। जितने आपके पास फालतू क्वेश्चंस है, नो मैटर कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, आप पूछो। अगर आपको वो दे रहा है आंसर, पेशेंटली दे रहा है, कामली दे रहा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो सुनेगा आपकी बात, और वो समझना भी चाहेगा और आपको समझाना भी चाहेगा। पर अगर वो आपको ऐसे लेट डाउन कर रहा है कि अरे क्या फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो इररेलेवेंट है, तो फिर आप समझो ये बात कि उसके लिए मैटर नहीं करता आपके थॉट्स और आपके जो क्वेश्चंस है वो। अगर आपको किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो इंसान जैसा भी है, आप उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो अगर कोई इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, चाहे आपके कितने भी बेवकूफ़ क्वेश्चंस और इररेलेवेंट क्वेश्चंस है, अगर वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को एक्सेप्ट, और अगर वो आपको ये बोल रहा है कि अरे तुम ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो बहुत फालतू बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इट डजंट मैटर आप बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो या फिर आप बहुत समझदारी वाली बातें पूछ रहे हो। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, और आपको अपने पार्टनर से वो क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वो पूछना है, और उसका काम है उसको आंसर करना। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला आंसर ना दे, बट अगर वो सिर्फ उसको सुन रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, और आपको वो आंसर दे रहा है, तो वो भी एक अचीवमेंट है।
0: सो अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कशिश ने इस चीज़ को। मैं रिएट्रेट करना चाहूँगा इसको कि अगर आपके पास कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव दैट एबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स, और ये चीज़ कभी जाननी नहीं चाहिए। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं एक बहुत फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, उनका इंटरव्यू ले रहा था एक बार। सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैं अपने बचपन में अपने माँ बाप से, बाकी लोगों से पूछता था कि मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को क्यों आता है। मतलब इससे ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, बट इट इज़ वट इट इज़, इट शोज़ कि आप क्यूरियस हो हर चीज़ को लेकर के। एंड एवरीथिंग, एवरी इन्वेंशन, एवरी सिंगल इनोवेशन, या जो भी अचीवमेंट आप दुनिया में आज देखते हो, जो भी चीज़ें आई हैं, हर चीज़ एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अगर किसी ने फ्लाइट बनाई है, पहले उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या हम लोग उड़ सकते हैं, अगर नहीं उड़ सकते तो क्यों नहीं उड़ सकते। उसके बाद जा करके फिर घूम फिर के जनरेशन वाइज चीज़ें बदली होंगी, फ्लाइट बनी, फिर इतनी सारी चीज़ें आई, फ़ोन आया आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आई, वाईफाई आपके पास आया, सब कुछ स्टार्ट हुआ एक क्वेश्चन से। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बात कशिश ने बोली यहाँ पर कि अगर आप सवाल पूछने का स्कोप आपके पास है, वहाँ पर नॉन जजमेंटली कोई इंसान आपसे सवाल पूछ सकता है, इट शोज हाउ ब्यूटीफुल दैट बॉन्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, मोस्टली पीपल दैट आर वर्किंग आउट देयर, ओवर अचीवर, इनसिक्योर, अंडर परफॉर्मर्स, दे ऑल आर इनसिक्योर एंड दे ऑल आर एंशियस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टैप इन टू दिस थिंग कि वाई आर वी सो एंशियस, क्यों हम इतने एंशियस हैं, और अगर है तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि इसका रूट कॉज क्या है। कई बार समझ नहीं आता, फॉगी होता है दिमाग कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ डीपेस्ट कुछ छुपा हुआ है वहाँ पर, उसको कैसे समझना होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी।
1: ट्रू, सो जो हमारी इनसिक्योरिटी आती है वो सबसे पहले उस डर से आती है कि हम इस चीज़ को खो सकते हैं। अगर कोई इंसान इनसिक्योर होता है किसी चीज़ को लेकर, खुद को लेकर या किसी इंसान को लेकर, तो उसके पीछे एक डर होता है, और वो डर यही होता है उसको खोने का डर। और इंसान को वो जो डर तभी आता है जब वो उसको बहुत कस के पकड़ के रखता है। तो जितना आप चीज़ों को कस के पकड़ के रखोगे, आपको उतना ही डर लगेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि लाइफ जो होती है ना उसमें आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा आपके साथ. अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर बैठेंगे, राइट? तो लाइफ इज फिल्ड विद सरप्राइजेस, बट जितना आप खुद को रिजिड और जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे उतनी ही तकलीफ आपको होगी और किसी को भी नहीं होगी. तो आई वुड से कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो, और जितना कस के आप पकड़ोगे उतना आप खुद ट्रिगर होगे, किसी को शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी इनसिक्योरिटीज़ खुद अपने आप में ही बढ़ेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा. तो इट्स बेटर दैट यू टेक लाइफ वेरी ईजी और प्रेजेंट में जीना अगर हम स्टार्ट कर दें. ऑल दो ये सब चीज़ें बोलनी बहुत आसान होती है, बट जब एप्लीकेशन की बात होती है तो हम बहुत बार फेल कर जाते हैं. बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड इफ़ वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट आई एम हियर, ये एक लूप होता है जो छूटेगा आपसे. पर जब आपको दोबारा याद आएगा, हो सकता है एक घंटे बाद याद आए, तो आप फिर से अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट आई एम हियर, फिर से वो छूटेगा, वो जो थ्रेड है वो दोबारा छूटेगा. अब दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराओ, तो जैसे जैसे आप रिमाइंड कराओगे वो जो टाइम स्पैन है वो कम होगा, और जब वो कम होगा और जब आपको पता चलेगा कि दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर हियर इन द प्रेजेंट एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, तो शायद आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाए बाय द टाइम. आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, बट हाँ, जो ज़िंदगी होती है उसमें ये नहीं होता कि सब कुछ एक रात में ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसका जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर हमेशा रहता है. बट उस अच्छा आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ. एक साधु होता है, वो बहुत तप करता है, और वो इतना तप करता है कि एक जो छोटा लड़का होता है वो ये चाहता है कि मैं बस इसकी शरण में आ जाऊँ और ये मुझे अपना ले और ये मेरा गुरु बन जाए. तो वो पहाड़ पे चढ़ता है ऊपर, इतनी मेहनत करके ऊपर जाता है उस साधु के पास, और वो उनको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ. साधु कहता है ठीक है. तो वो कहता है कि चलो ये जो पत्थर है ना इसको उठाओ, और वो नीचे चलने लगता है, पहाड़ से नीचे उतरने लगता है. साधु जो होता है वो नीचे उतरने लगता है, और वो जो लड़का होता है वो इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि खुद तो खाली हाथ चल रहा है आगे, और मुझे इतना बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया. तो अब वो उस पत्थर को लेकर नीचे चलता जाता है. तो फिर जब वो नीचे आ जाता है वो इतना थक जाता है, उसकी सांसें फूल रही होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि खुद तो खाली हाथ चल गया है और मुझे बोल दिया पत्थर उठाने के लिए. जब वो नीचे पहुँचता है तो साधु पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि ये पत्थर तुम क्यों लेकर आ रहे हो? तो वो कहता है कि आपने तो कहा था उठाने के लिए. तो साधु कहता है मैंने तो सिर्फ उठाने के लिए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसको अपने साथ नीचे लेकर आओ. तो द थिंग इज कि वो उसकी चॉइस थी कि वो उस बोझ को अपने साथ लेकर आया, इसलिए ही वो परेशान हुआ. अगर वो उसको उठाकर वहीं छोड़ देता, क्योंकि साधु ने तो नहीं कहा था कि उसको अपने साथ लेकर आओ, बट उसकी चॉइस थी कि वो साथ लेकर आया. तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो बोझ है हम छोड़ सकते हैं, जैसे हम उठाते हैं हम छोड़ भी सकते हैं, पर हम चूज़ करते हैं उसको अपने साथ कैरी करना और आगे बढ़ना उसके साथ. इसलिए ही मोस्ट ऑफ द पीपल इनसिक्योर और परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. तो इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट एट द वेरी मोमेंट. जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे और जैसे ही आप लेट गो कर दोगे, वैसे ही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. तो ट्राई करिए कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दें हम.
0: सो ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट. देयर इज अ बिगर रियलाइजेशन ऑफ दैट पार्ट कि लाइफ में जो भी चल रहा है डजंट मैटर, बट आपने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपका है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या ट्रामा है, इट ऑल गोइंग टू बी जीरो वन डे. We all are going to leave this world. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी एनजाइटी आपकी खत्म कर भी सकता है एक थॉट कि एक दिन वैसे भी जाना ही है भाई. तो इन बिटवीन ठीक है, जो आपके पास कोशिश आप करते रहो, जितने आप मैचेस खेल सकते हो खेलो, कहीं में सेंचुरी मार भी दोगे, कुछ भी नहीं मार पाओगे, बिल्कुल जीरो पे आउट हो सकते हो, इट डजंट मैटर. सो जस्ट बी इन द मोमेंट एंड ऑलवेज हैव दिस रियलाइजेशन कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्चुअली. फिलहाल आई थिंक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है, ये समझनी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील.

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग यू आर लविंग द म्यूजिकल वाइब। अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो 8010781078 पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान है कशिश। कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर किसी इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी है, डिग्री नहीं करनी है, जस्ट समझनी है हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स, हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कैसे शुरुआत की जाए?
1: राइट,
0: जस्ट गिव अस अ रोड मैप।
1: ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। देयर इज़ दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। और मैं चाहूँगी कि एक बार एफर्ट करके आप उस बुक को पढ़ें। और उसके अलावा भी देयर आर सो मैनी बुक्स जो बहुत कुछ इंसान के बारे में बताती है, उसके पैटर्न्स के बारे में बताती है। उसके अलावा डिग्री करना ज़रूरी है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतनी डेप्थ में किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं पढ़ सकते। बट हाँ, अगर आप नहीं कर सकते डिग्री, तो आप रिसर्च पेपर्स उठाइए और आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए। वहाँ पर केसेस होते हैं बहुत सारे, और उसके नीचे उन केसेस को जैसे सॉल्व करा गया है, और जो जो उसमें आंसर्स, जो हमने केस पढ़ा, जो आंसर्स अब हमें मिलने चाहिए, वो सब होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। आप वो पढ़िए, आपको आपका परसेप्शन चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अब जैसे एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि एक लड़की होती है और वो जॉइंट फैमिली में रहती है। उसके जो ताऊ जी ताई जी होते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाए। और वो जो लड़की होती है ना, उसके जो पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और ऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी उनकी होती है, तो वो हमेशा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को सप्रेस करते रहे, पूरी ज़िंदगी डोमिनेट करते रहे। बट उसके बाद जब टाइम आया अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्टैंड लेने का, तो वो नहीं ले पाए स्टैंड, और वो सारी प्रॉपर्टी जो थी उनके ताऊजी के पास चली गई। एंड शी इज़ लेफ्ट विद नथिंग, हर फादर इज़ लेफ्ट विद नथिंग। और अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो जो लड़की होती है वो पता क्या करती है, वो अपने बेड के नीचे, अपने पिलो के नीचे ब्लेड्स रखती है, और वो चुपके से कभी भी अपने आप को हार्म कर लेती है, काट लेती है, अपना हाथ काट लेती है, कुछ करती है। और फिर उसके बाद वो ऐसे दिखाती है कि मेरे ऊपर कुछ है, देर इज़ सम सुपर नेचुरल थिंग अराउंड मी विच इज़ हर्टिंग मी। ओके, तो बहुत सारे लोग उनके पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप तांत्रिक के पास जाओ और आप ये सब चीज़ें कराओ, बट एक समझदार व्यक्ति होता है जो बोलते हैं कि आप इनकी काउंसलिंग स्टार्ट करो। जब वो फर्स्ट सेशन के लिए जाती है, तब उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा सच क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती आना किसी भी सेशन के लिए, और वो अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा घुमाती है कि यही हो रहा है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है मेरे साथ। तो वो क्या करती है, इसे चुटकी बजाती है और अपनी वॉइस चेंज करती है, और एक मेल वॉइस में बोलती है कि मैं सबको मार दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, जस्ट टू डराने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब जब फोर्सफुली उसको काउंसलिंग सेशंस में भेजा जाता है, तो एक दिन ये ट्रूथ सामने आता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड अपने फादर को लेकर, कि जब अपने लिए स्टैंड लेना था तो वो नहीं ले पाए। और अगर वो एज अ गर्ल डराती तो कोई नहीं डरता, बट एज अ मेल जब उसने चूज़ करा कि मैं एज अ मेल वॉइस यूज़ करके इन सब लोगों को डराऊँ, तो वो सब डर गए। तो हियर जो मेन चीज़ थी, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो ये थी कि उसके फादर ने हमेशा उसको सप्रेस करा, और जब अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आया तो वो नहीं ले पाए, तो वो उस चीज़ में फंस गई, तो इसलिए उसने ये कार्ड पुल करा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको समझ आएंगी अगर आप ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड होगा और बहुत ग्रो करोगे आप टाइम के साथ। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, और कुछ बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने बताया, और भी है, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हो आप, एल्केमिस्ट इज़ अ वेरी नाइस बुक,
0: सो अमेजिंग। आप बिकमिंग सुपरनेचुरल पढ़ सकते हो, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बहुत खूबसूरत किताब है, आप पढ़ सकते हो द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर जो आप जरूर पढ़ें एक बार लाइफ में, एटलीस्ट आपको पता लगेगा माइंड काम कैसे करता है। अगर किसी इंसान को प्रॉपर एक काउंसलर बनना है, फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट फॉर एवरीवन. क्या ट्रेट्स होने चाहिए इंसान में कि लेट्स से कोई 12th क्लास का बच्चा इस टाइम सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को काउंसलिंग में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है मेरे को, कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे लिए सही डोमेन है, क्या ट्रेट्स क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस इंसान में?
1: सबसे पहले तो दे शुड बी अ गुड लिसनर. एक साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है सुनना. सुनाता तो वो बहुत बाद में है, पहले वो सिर्फ सुनता है और वो सिर्फ एनालाइज करता है कि सामने वाले के क्या पैटर्न्स है. तो अगर आप वहीं पर फेल हो रहे हो और अगर आपको ओके, यू कैन नॉट बी वेरी नोजी, मतलब अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो वो बहुत ट्रस्ट करके आपको बात बता रहा है और आप उस मोमेंट पे चाहे आपको कितनी भी बातें उसके बारे में पता चल रही हैं या आपको कितना भी उसके बारे में समझ आ रहा है, आप स्टिल वो बातें रख नहीं सकते उसके आगे. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें रख दी अभी इनिशियल फेज में तो वो शायद पुल बैक कर सकता है जो सामने वाला है. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट और आपको पहले पूरी तरह से उस इंसान को कम्फर्ट करना है, कम्फर्टेबल करना है अपने साथ. एंड यू शुड हैव दैट वॉर्म्थ विद इन यू कि लोग आपके साथ खुल पाए. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसे होती है कि वो सामने वाले को कम्फर्ट नहीं दे पाते और लोग उनके आगे खुल भी नहीं पाते. तो अगर इंसान आपके आगे खुल ही नहीं पाएगा तो आपका साइकोलॉजिस्ट होने का मोटिव ही ख़त्म हो गया वहाँ पर. तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, यू शुड बी वेलकमिंग आई वुड से. और सबसे बड़ी चीज़ कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए. क्योंकि अगर मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा केस आता है जिससे अगर मैं अटैच हो गई, उस इंसान से अगर मैं अटैच हो गई, तो मैं उसको कुछ हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी और मैं और फंस जाऊँगी उसके साथ. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली ही रखें और बिल्कुल भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो उस चीज़ में. तो ये बहुत ज़रूरी है. और अगर हम 12th क्लास के बच्चे की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट बनने का थॉट रैंडमली नहीं आता, हमेशा तभी आता है जब किसी इंसान के अंदर कुछ बहुत सारी बातें होती है जो वो अपने बारे में जानना चाहता है. और तो वो जो बच्चा है ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर और उसको ज़िंदगी के बारे में अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पता होगा और वो चाहता होगा और ज़्यादा अपने आप को समझना, तभी वो ये डिसीजन पर आएगा कि अब मुझे काउंसलर बनना है.
0: एटलीस्ट क्यूरियस होगा.
1: यस ऑफ कोर्स.
0: कि दिमाग काम कैसे करता है.
1: यस yes.
0: कोई इंसान सिचुएशन में खुश है, दूसरा इंसान उस सिचुएशन में उदास है, तीसरा इंसान गुस्सा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्टिंग नज़र आती हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये सिचुएशन तो सेम है लेकिन तीनों के अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो आई थिंक दैट इज़ अ राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, हाउ टू बी अ गाय और गर्ल हु कैन अर्न वेल इन दिस फील्ड.
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा तो अर्निंग नहीं होती, इवन इंटर्नशिप्स भी पेड ही होती हैं. बट अगर आप एक सब कुछ करने के बाद, जैसे अगर आपने बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली एंड देन यू आर डन विद योर एम ए एम फिल पी एच डी, देन यू कैन अर्न वेरी वेल एंड तब बहुत स्कोप होता है. बट इनिशियली भी साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है. मतलब स्कूल्स में भी देर इज़ मैंडेटरी कि आप काउंसलर होगा ही, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ देयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ देयर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एवरीथिंग, इवन इन ऑल द क्रिमिनल केसेस एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ देयर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी इज़ देयर. सो देर आर सो मैनी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स एंड इट इज़ वेरी वास्ट. But it's just that you have to stick with one subject. You cannot just hop in here and there ki thodi si sports padh li, thodi si criminal padh li, thodi si ye. You have to make up your mind ki aapko kis mein aage jana hai, jisme aap bahut zyada drawn feel kar rahe ho aur jisme aapko lag raha hai ki this is my area and I'm very passionate about it. You just choose that area. Aur although bahut interesting hai psychology, bahut interesting hai और बहुत हेल्प करती है आपको ज़िंदगी को समझने में, तो अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आपको ये डिग्रीज़ लेना बहुत मैंडेटरी है. क्योंकि सिर्फ बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी करके, एम ए साइकोलॉजी करके आपको बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी. एम फिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस मिलता है. एम फिल इज़ फॉर वन ईयर, आपको उसमें लाइसेंस मिलता है जिसमें आप ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो. अपने पेशेंट को. विदाउट एम्फिल यू कैन नॉट डू दैट. आप अपनी नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हो पेशेंट की, बट आप उसको कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट एम्फिल. तो बहुत ज़रूरी है एम्फिल करना. अगर आपको एज अ करियर काउंसलिंग को चूज़ करना है तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको बहुत सारा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे.
0: सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी ऐसी चीज़ें मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो प्लीज़ फील.
1: आई थिंक आपने सब कुछ पूछ लिया.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस. इट मींस अ लॉट टू अस एंड thank you for giving all those valuable things to us. I mean, I'm just hoping listeners ko maza aaya hoga, aapko pasand aayi hongi sari baatein, kyunki baatein hui hain jo aapki aur meri zindagi se judi hui hain. हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की पढ़ाई एक तरीके से आप कह सकते हो साइकोलॉजी है. पैटर्न्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ उसमें आता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आई वुड से कि अगर आप कोई भी एक इंसान है जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो, यू आर अ सर्वाइवर, सो यू शुड नो दिस एटलीस्ट कि दुनिया कैसे सोचती है, बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई चोर है, कोई सीरियल किलर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एथलीट हो सकता है, सबकी अपनी एक साइकोलॉजी है जिसको समझना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है. ऑलराइट, ऑन दिस नोट वक्त अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का. आई होप आपको पसंद आया होगा. चलिए फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। शो बहुत खास है, हर बार आपको नई जानकारी मिलती है, एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं, एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें। केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती, उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आए हूं लेकर के एक और शो, तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं। तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

ये सूरज के जर्रे जमीन पे मिले तो एक और आसमां में जमीन पे बिछा दूं, एक और आसमां।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड 400 बिलियन US डॉलर्स। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं आप फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव।
1: Thank you.

0: आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वांट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूं, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूं कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूं। तो जार ने यहां पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं भी बचाना चाहता हूं, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
1: सर

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपने बूम पर आ रहे थे, UPI बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, SIPs, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए, यार तुम ना SIP किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने तो पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी SIP हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि हैं 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। सो इन फाउंडर्स ने खुद से ये सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार से या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार। डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन, एंड सो अमेजिंग यार। आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया, और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

जैन फकीरों में, जैन परंपरा में इस तरह के विचार चलते हैं। हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ज्ञान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसमें चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब है जब उसकी कृपा होती, किसी इतने तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्च ही क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम पे उसकी बड़ी कृपा है, और वो मारता इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा, वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो, वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार, उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते न प्रकाश होता न कुंडलनी जगती न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता है। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया, गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लोटा प्रसन्नता में लोटा, उसने कहा तो हो गया आज तो धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल, ये ठीक धन्यवाद था 20 साल चांटे खाने के बाद, आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था, वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ, पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं बाबा मुक्तानंद होने चाहिए, नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते, मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को, फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे दे के बुलाया, और जब मैं गया तो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन, ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्या अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो, वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा, बोलो। तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है, उस फकीर ने कहा अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है, मगर ये तत्व चर्चा है। ज़ेन फकीर ये कह रहा है कि हाँ कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हाँ कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया, दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हाँ कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो ज़ेन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो, धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है, उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया, तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा, तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है, तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे, इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ साथ जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए, तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है, लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाती, वो बेचैन होने लगती, फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई,
कि वो एकदम परेशान होने लगी। एक मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इस पर बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा तुम सोचते हो, तुम्हें पहले पता चलेगा तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत, असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बात है। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा न रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता न रही क्योंकि कोई पर ही न रहा, दूसरे पर निर्भरता न रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता, किसी को मिल जाए ठीक न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता, सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा

होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना। बिखेर देता जिसको मिल जाए, फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है। और जिसका फूल खिल जाता है, चौथी बात आनंद स्वभाव है। जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है। बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है? तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूं। वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है परमात्मा के प्रति। इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा। जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां? अहंकार दुख है। अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वही आनंद आ गया। और जहां आनंद आ जाता है वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती। तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बता ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है। जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है? तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है। प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत। तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है। या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो, तो तुम पहुंच जाओगे। या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधिधर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात सांस-सांस घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा तो उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है, फिर जा सकते हो।
अगर नहीं लिखा तो बाहर ना निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहां तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया है, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दूं। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को कि जरा और, ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया? पहली तो बात, तुम शब्दों में भी शूद्र और ब्राह्मण बनाए बैठे, आदमियों में भी वर्ण बनाए, शब्दों में भी बना लिए, तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा शूद्र शब्द है, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं। रही बात शब्दों की, तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो, जितना अभिव्यंजक हो। अब चमचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो, इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो, इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है, इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है, तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है, कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचागिरी पुराना शास्त्र वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही है, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण, कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है, स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरी एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खन बाजी, लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है, या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है। जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा, अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है। अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में, तुम्हें तकलीफ हुई होगी ये मैं मानता हूं, तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है, तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है, उसे प्रज्वलित करो, बुझी बुझी है, आग नहीं है उसमें, तो तुम घबरा जाते हो, जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए। और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो, बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते, कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है।
बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता है। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछने ही मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गायें चरा लाना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम, फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता, 3 साल यही करना है तो और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो वो करो ऐसा करो, इसको वहां भेजो इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है। और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता, तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगू तो तुम अधूरे रह जाओगे। अब तुम चुन लो, तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी, तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी। तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका। सास मंदिर गई थी, घर में बहू थी। उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं, और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी। वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है। सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली? मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली? घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला के ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली? माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी। साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूं कहीं आगे जाओ। औपचारिकता पूरी कर दी, अब मैं कहती हूं कहीं और आगे जाओ। बहू कौन सी कहने वाली? औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय। औपचारिकताएं छोड़ो। यहां कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे, यहां किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीजिएट बासे, मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचा है चम्पी, मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचा है उबाचा। जीह के श्रव नहीं मात्र से कटई कलेश विकार, तेही बटरिंग व्रत की कथा सुनू क्लर्क नर नारी। हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद्र की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार,
मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले।

0: पद पाए। बटरिन व्रत की कथा को विरचित कवि बेचैन, पढ़े सुनई जे क्लर्क जन, चैन करें दिन रैन। इति श्री क्लर्को खंडे बटरिन व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय, श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिलवस्तु गए, उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए, उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढक कर आई। स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढक कर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं, लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूं, लेकिन मुंह ढक कर आई हूं, ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थिर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तू उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी। तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करें। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है, और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही, इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है, तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं, इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं, वे सारे सूत्र इसमें मौजूद हैं।

पहली बात आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती, ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था, रोग मन में था, मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था। तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता, ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता, हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती कि कान बहरे हो जाते, ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता, किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे, इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती, कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती, दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है, इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है, मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है, उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी, लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते मन में गड़ा है तो मन से भी पार।
इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी, अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता। मन तथस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो, वो लोभ बन जाएगा। तुम उसे करुणा में लगा दो, वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती, सीढ़ियां तो वही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया। तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो क्योंकि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क है, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न हैं, मौलिक रूप से भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पोंछते रहो, मिटाते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। मन से हट जाए तो शरीर तत्क्षण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है ये अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़े तो रहता है, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी।
मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी है। इससे दुकान खूब चल रही है, क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती है कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं, और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी, सौंदर्य पे उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान ज्ञान, चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इनकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तक तो कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी फिर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे ही। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते, वो बदला लेंगे। जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी, बदला तो लेंगे। कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है, उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था, वही तुम्हें गालियां देगा। तब दिल को और भी चोट लगेगी, अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है,
उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था। वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा। वो इसका बदला तो लेगा, जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना, चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते हैं, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते, क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है, लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है। स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है, इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है। लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है, उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं। और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है, वो तुम्हारी जीभ हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी, सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जनेन्द्रिय उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की है और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। ट्रेस पास हुआ, तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते हैं।
कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे। अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी, हम नहीं छू रहे और हम एक सीमा बांध के रखते। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते। एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। 12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, हाँ, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगें फैलती है। उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी। हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
2: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। Even that, let's say the belief to the truth, वो जो journey है, because it starts with the belief कि ये ज्ञान जो है वो direct परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए truth कब बन जाता, when I see the transformation in myself, then I say कि you know जो देने वाला है वो जो doctor है, he is right because I'm getting cured.
1: Right.
2: So it's a very big thing for any individual.
1: और सिस्टर शिवानी, ऐसा बहुत से लोग हम मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
2: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग द होल ज्ञान। सो दे से कि बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल ऑन विच द ज्ञान हैज वर्कड। सी, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
1: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आई हुई, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
3: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है, कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then I felt ke this is just talking about life, jo hamari zindagi hai, hum उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या यू नो इफ शी इज़ लुकिंग सो काम, मैं ऐसे बन सकती हूँ, बिकॉज यू नो हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है ना. सो आई फील के ऑल राइट, देन आई थॉट के ओके ये एक ही बार होगा. कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
1: I know. That's the biggest thing.
3: Because that is such a immediate reaction. Jab kuch garbad hota hai, the first reaction is anger, stress. Kya, you know, whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came, jahan hum volatile ho sakte hai, ya ghusa ho sakte hai, ya, you know, agitate ho jate hai, to tab क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जो हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा. जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उस खुद को लगता है कि शी इज नॉट स्क्रीमिंग तो कोई ज़रूरत है. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए, यू नो क्या हो रहा है, रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनी मोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
1: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, सो यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस व्हिच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट. शिवानी,
2: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क. You know, because I'll tell you, a lot of us watching the program, but then one is ki humne program dekha, suna, like you, bahut sare bhai bane regular bhi dekh rahe hain. But somewhere that little gap is there between program ko dekhna, sunna, parmatma se jo gyan mil raha hai, samajhna bhi, lekin to take it back to my life tomorrow. So what is it that probably inspired you to do it? And what did you do to do that, you know, to get it to work? Because otherwise, गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ़ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
1: to. What was that effort?
3: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life is, there were many things, factors going wrong in my life and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise, you know, I'm holding, jaise ret pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. Main pakad nahi pa rahi hu. You know, that I wanted to hold on to things.
1: Chizen situations hain wo.
3: Situations hain.
2: And that's what I think in this whole series that we've been doing. It's a new series. We've been talking ke jab hamara apne upar control nahi rehta hai, to jo first feeling aati hai, that is powerlessness. Ki mere control mein to kuch bhi nahi hai. Because we were trying to control other people and situations. And they are not in our control anymore. So suddenly you feel कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल. My husband is not in my control. My children have grown up now. They are not in my control. And सबसे बड़ी बात, I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And उससे एक बहुत feeling of कहें demotivation. You know, life is not enjoyable anymore when you feel कि nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into control.
3: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you, try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God and I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, to I felt that he actually held on to me and he said, okay, I'll show you the first step. चलना तुम्हें ही है लेकिन स्टेप्स मैं सिखाऊंगा. एंड वंस आई डिड दैट आई फेल नाउ आई नो माय पाथ. एंड व्हाट हैपेंस इज रिलीजन, बाकी सारे, आई एम अ मुस्लिम एंड इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. जो रिलीजियस चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड, मुझे कुछ बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल जो मेरे समझ में आए ऐसा मुझे चाहिए था जिससे मेरी जिंदगी, यू नो, हम एवरीबडी, हम जो भी यहाँ जो भी प्रोग्राम्स देख रहे, एवरीबडी वॉन्ट्स इन द न्यूक्लियर फैमिली टू बी हैप्पी. कोई ये सोचता नहीं है कि मुझे दुखी होना है. आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स दैट. एवरीबडी वांट्स जस्ट टू बी हैप्पी.
1: वेरी ट्रू. हर कोई अपने एफर्ट्स जो है वो खुश रहने के लिए ही कर रहा है.
3: यस. सो आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी. आई वांटेड माय फैमिली टू बी हैप्पी, कंटेंटेड. एंद आई फील आई एम ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी. आई फील कि जो भी मेरे हाथ से फिसला जा रहा था, फिसल गया था, जो चला गया था, वो धीरे कैसे, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो वापस वापस लौट गया. इट्स अ टाइड, इट वेंट एंड इट्स रिटर्निंग.
2: बट व्हाट ऑल डू यू फील, यू वांट टू शेयर व्हाट यू फील हैड गॉन आउट दैट्स कम बैक.
3: अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था बिजनेस में भी, मेरे हस्बैंड्स को लॉसेस थे, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. एंड वी वर बोथ डिप्रेस्ड, वी बोथ वर फीलिंग दैट, you know, we are good people. हमें सब लगता है, हम सब लोगों को ऐसे लगता है कि we are good people.
2: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा
3: है? हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट्स हमें क्यों मिल रही है? लेकिन now I realize that these were lessons and this was, जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls, we are happy souls, we don't have to be sad. You know, ये रोना धोना is not our life.
1: Very true. How beautiful. This is what I think.
2: This is what we've been saying every time.
1: We've been wanting people to come out and say.
2: Pain is not a part of it.
1: Yes.
3: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
1: Yeah. You know.
2: This is, you know, she's not even realized what she said, but this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority लोग हम कहते हैं कि हमने दुख नहीं दिया, हम कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन दुख लेना नहीं है. That part we didn't know. We knew this के दुख देना नहीं है. वो भी कभी कभी गलती से दे ही देते थे. लेकिन दुख ना लो. We didn't know that we had a choice there. We always thought कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो दुखी तो.
3: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, मुझे 24 hours लगता है कि the divine forces with me. वो मेरे साथ ही है. He is with me and therefore I will not do wrong and I will not be wronged. Wo hai, he is protecting me. Wo mere saath hi hai. Agar kuch something goes wrong, I feel he's teaching me something now. I never see it negatively.
2: So it becomes a very personal relationship with God.
3: Yes, I mean now I have found ke I have a mechanism for by which I can actually talk to him. I am sharing my life daily basis. Jab when I'm in meditation, that's when I'm very quiet. But uske baad I talk to him. I tell him, agar if I've done something by mistake, I've done something wrong, ya mujhse kuch, you know, wo spontaneous jo pehle ke sanskar the, wo gussa kahin kisi pe aa gaya ya kuch bhi, I will tell him ki I have, this is what I did today, but I will make sure that I will be more careful next time. So the conscious, like soul consciousness, I am in that soul consciousness. And because I'm in soul consciousness, you cannot do wrong. That's the thing.
1: See, that's like, drishti agar hamari theek rehti hai, ya hamara pura ehsaas rehta hai, to actually nothing can go wrong also. You know, ye bhi aapke par pura strong aapko ehsaas rehta hai ki kabhi kuch galat ho bhi nahi sakta.
3: Ho hi nahi sakta, yeah.
1: Bahut sundar, ab to main aapko sister Sameena bhi keh sakti
3: hoon. No,
1: because
3: Sameena
1: I feel so much a part of the family. Yeah.
3: Yes, I am. That's true. I am a part
1: of
3: the family.
1: Apne sabhi darshakon ke saath hum ye bhi share karna chahenge ki Sameena ji Bharat jo is baar aayi hain, wo apne parivar ke saath aayi aur Mount Abu gaye, Brahma Kumaris International Headquarters, wo experience kaisa raha?
3: Yeah, it was, I didn't actually, mujhe pata hi nahi tha ki मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज़ बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सारे भाई बहन हैं, यू नो, एंड इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली. जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट, इट मेक्स यू फील वेरी, यू फील लाइक एंजल्स, यू नो, फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटीफुल. आई हैड अ चांस टू डू मेडिटेशन for many hours that way, you know, and it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai, wo hum, mujhe khud nahi laga ki main, you know, 40 45 minute baith sakti hu ek bar, you know, I'm very fidgety, to aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the, you know, senior dadis jisse main mili, wo kehte hai ki ye apni personal journey hai, कोई आपको जज नहीं करने वाला है, आप जिस स्पीड से जाना चाहते जाओ, यू नो, एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था, सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी, दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम, दैट्स ऑल. आई वाज जस्ट देयर फॉर दिस कनेक्शन.
1: वंडरफुल. एंड यू फेल्ट दैट कनेक्शन?
3: यस, ऑल द टाइम व्हेन मेडिटेशन, ऑल द टाइम.
1: Acha, how about your family's response? I mean, not only your immediate family, but ab to ek kafi time baad aap apne parivar se milenge jab Mumbai gaye, that becomes more important. Ki wo jab aap keh rahe ho ki wo kehti hai acting kar rahi hai ya abhi bolegi ya abhi ye shor machane wali
3: hai. My mother doesn't say it, but she herself feels good, you know, and she herself now is toned down. Yani kya hota hai kabhi kabhi, हम जब शांत हो जाते, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, यू नो. हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा, हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
1: और दूसरी बात ये भी, वो आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं,
3: राइट,
1: यू नो, कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
3: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो, व्हाटएवर आई वांट टू से आई विल जस्ट से. आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
1: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
2: This is high self-esteem. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me, because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego, But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense yes. that now I don't care anymore, but it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. Yes. I don't need to prove anything to anybody. And that wo sirf wohi keh sakega jo andar se bhar gaya hai. You know, jab hum andar se khali hote hain, so we need to make noise. Like, lekin jab andar se bhar jate hain, now you take your time, I'll wait for you till you come to know.
4: But also ego, that's another thing.
2: Yeah.
3: We all celebrate ego, actually. We feel agar ego nahi hai to kuch nahi hai. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is. But I have no ego issues. The reason I can say this is because somebody tells me I'm an idiot. Earlier, I would immediately react. Today, it's not important because if he says I'm an idiot, it doesn't make me an idiot. They may say many things about you. They may say, you know, they may call you a failure. They may call you many, many things, you know. And that's the time, in the earlier times, it used to bother me. That, you know, it is, they're inflicting pain on me by saying
1: this
3: thing.
1: You know why it used to bother us, actually? Because somewhere deep within, we used to think we are.
3: Yeah.
2: Somewhere deep within, we didn't even know, actually. Hame pata bhi to nahi tha. I don't know myself. So, aap jo mere bare mein bologe, I'm going to take that only as the truth. And agar aapne mujhe kaha, jaise usne kaha ki aapne kaha you're a failure, suddenly I feel like a failure. Agar aapne kaha bahut acche ho, suddenly I feel very good. So then I'm just waiting for people to say nice things about me. And if somebody is not going to say very nice things,
1: everything goes down. Sameena, bahut kuch hua jo aapne apne mein parivartan kiya. Ghar parivar mein bhi definitely hona shuru hua hoga. Raaste mein ab kuch sawal, kuch baatein abhi bhi hain.
3: Now I feel that this is the way I want to go, and I want to work more because there is so much knowledge out there that I feel ke it's not enough time. I just hope that we don't run short of time. We have to, you know, get that should be in a hurry. That hume jitna gyan mil sake, yes, about us, about the divine. कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ में नहीं आता था कि वो है कहाँ. जब हम उनको बुला देते तो है नहीं. एंड नाउ वी फील नो ही इज देयर, सो नाउ वी वांट टू नो मोर अबाउट हिम. इट्स लाइक यू हैव डिस्कवर्ड अ फ्रेंड बट यू वांट टू नो मोर अबाउट.
2: दैट्स द जर्नी. That's what we try to do through this program is introduce the two.
4: Yes.
2: You know, and then after that it's each one's own journey. That's with him. Yeah. Absolutely. Yes, yes. So aapne introduction stage bhi cross ki aur relationship bhi start ho gaya hai. And now this relationship will only grow.
4: Yes.
2: Jitna aap us relationship mein time or energy invest karte hain, it's like any other relationship. Jitna time or energy aap us relationship mein invest karte hain, it will only take you further. How did this help in relationships?
3: My relationship with
2: anybody, with closest family.
3: Actually, my husband, let's talk about him. You know, the first realization that I got, you know, from one of the shows is that the fact that we are together as a couple is already predestined. कि हमें साथ में होना ही था, और हमें ये journey complete करनी है. You know, because divorces,
1: it is actually so important. But everything starts falling in place.
3: Yes.
1: First realization.
3: Because, you know, with divorces at the rate that they're going, and you know you have another alternative, okay, this doesn't work, something else will work. But on the other hand, when I feel like this is the journey that I have to complete with him, then I spoke to my husband also, and then he started watching, and we both got involved at the same time, me a little bit more than him. We both realized that if this is the journey that we have to complete, then why not make it a beautiful journey? Then why fight and end it and fight and go on with it and daily cribbings and all? Why can't he change a little and I change a little? We have to make it work in such a way that we as a family collectively can have this journey which is together and have events, have experiences that are enriching our lives.
1: And somewhere, Sameena, aapko kabhi ye lagta hai ki why you want to make him happy? Because it makes you happy.
3: Yes, it does. Yeah, now it does. Now it used to not be that way. I used to just do it because, okay, just to keep the shanti in the house. Kar lo, because nahi karenge to bahut tata tata hogi. To kar lo. Abhi lagta nahi, you know. And also if it is meant to be this way, if it is predestined.
2: आपको ये नहीं लगा कि आपका focus अब shift हो गया है, and that's what's made all the difference.
3: Yeah.
2: See, it's the same husband, the same you. Married for how many years?
3: 24
2: years. So what is that one thought which changes because of which so many changes take place? See, we've talked about so many things changed. And not that we didn't know about these changes before. ये सारी बातें कि हमें अगर किसी के लिए कुछ करना है तो खुशी से करना है बजाय कि ठीक है कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर हम दर्द क्रिएट करते हैं. आज दिन तक हम औरों के लिए करते थे, लेकिन इट वॉज मोर लाइक अ कॉम्प्रोमाइज. इसीलिए अगर आप किसी से भी पूछो कि रिलेशनशिप्स क्या हैं, तो वो कहेंगे एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, यू नो द वर्ड्स आर आल्सो ऑल वेरी निगेटेड. द सैक्रिफाइस आएगा सबसे पहले, एडजस्टमेंट आएगा, कॉम्प्रोमाइज आएगा, क्योंकि मैंने आपकी खुशी के लिए तो कर लिया, लेकिन मैंने अंदर खुद क्या एक्सपीरियंस किया, दैट वॉज पेन. Or you know, I'm not very happy with
3: resentment,
2: anger or hatred sometimes or whatever. तो उससे क्या होगा? फिर भी वो घर में खुशी नहीं होगी. भले हमने वो किया भी, and that's what happened with majority of us. कि हमने बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया. It's not that we're not adjusting. हम बहुत करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर से करते हैं. अंदर से हम अपने ही थॉट को पकड़ के बैठे हैं. तो क्या हुआ? बाहर से हमने किया, अंदर से हमें फील हो रहा है मैंने इतना किया. तो इट्स मोर लाइक सहन किया. एंड घर का वाइब्रेशन फिर भी कैसा बना? एंड देन वी से मैंने आपके लिए इतना किया, फिर भी खुश नहीं हुआ. You know, you still didn't have the happiness in the house that we were looking for, in spite of having adjusted so much and compromised so much. But here what happened was the focus shifted. And the focus was, what I feel in what happened in your case is, you stopped working on him and started working on yourself.
1: That's right. And I have to realize that. Thank you so much.
2: Oh, I'm sure. Sharing.